0: फिर बिना प्रयास के जिंदगी चलने लगती है, फिर प्रयास की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसे ही समझे कि चील आकाश में उड़ती है, जब वो बहुत ऊंचाई पे चली जाती है तो सिर्फ पंख फैला देती है और कुछ नहीं करती, फिर प्रयास नहीं करना होता। एक ऊंचाई पे जाकर के चील सिर्फ अपने पंखों को खोल देती है और बहने लगती है। ऐसे ही हमारा जीवन होना चाहिए। और समर्पण बहुत बड़ी कला है, बहुत बड़ी। और संघर्ष सदा ही अतीत और भविष्य में है। अगर संघर्ष की यात्रा हम देखें तो सदा अतीत में होती है या भविष्य में होती है, लेकिन समर्पण सदा ही वर्तमान में होता है, अभी और यही होता है। समर्पण में अतीत और भविष्य दोनों समाप्त हो जाते हैं, मात्र बचता है निखालिस वर्तमान, अभी और यही। कृष्ण जब मथुरा छोड़कर द्वारका गए, कृष्ण के आयाम में एक आयाम को यह समझे, ऐसे तो बहुआयामी व्यक्तित्व है कृष्ण, जो सारथी लेने आया था उन्हें, तो जब गोकुल छोड़कर मथुरा की तरफ जाने लगे वो, तो गोपियों को पता चला कि कृष्ण जा रहे हैं, और गोपियां भावविवल होकर रोने लगी और दौड़ती दौड़ती राधा देवी के पास पहुंच गई। बोला कि हमारी बात तो कहना सुनता नहीं है, तुम जाकर उसे मनाओ कि वो जाए नहीं यहां से। राधा जाकर के रास्ते में खड़ी हो गई जहां से कृष्ण का रथ गुजरता है मथुरा जाने के लिए। रास्ते में जैसे ही कृष्ण राधा को खड़े देखते हैं रास्ते में, फौरन रथ रुकवाते हैं। सारथी पूछता है उनसे, इनका क्या परिचय है? तो कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं कि दुनिया जब दुखी होती है, उलझन में पड़ती है, तो वो मेरे पास आती है, और मैं जब कोई उलझन में पड़ता हूं तो मैं इनके पास जाता हूं। स्त्री के प्रति इतना सम्मान ये कृष्ण के व्यक्तित्व में देखने को मिलता है।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चिंतन, हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्ज़ पर, डीआरएम चैनल 909 किलोहर्ट्ज़, एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ और मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 7:10 पर सुनिए कार्यक्रम खेती हराम वास्ते। आज जानकारी देंगे असली नकली खाद की पहचान कैसे करें। मानस कान का समय रहेगा 7:20। आज आपको सुनवाएंगे भाग संख्या 243। सुप्रभात में आज बात करेंगे सहयोग, हमारा नैतिक कर्तव्य, सादा भोजन स्वास्थ्य के लिए लाभदायक और अनुशासन का महत्व। कुछ भजनों का आनंद उठाइए। 8:45 पर कार्यक्रम होगा सुगम संगीत। 9:10 पर मरुमंगल में आज हम आपको सुनाएंगे लोक गायक धर्मपाल भारती के गाए कुछ लोकगीत। फिल्म संगीत 9:30 पर और अनुरोध गीत प्रातः 10:00। प्रातः 11:00 फिल्म संगीत और कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत 12:05 पर। सुगम संगीत आप सुन पाएंगे 12:30 पर और पीएसबी कल्चर की जानकारी देंगे कार्यक्रम खेत खलिहान में 12:50 पर। 1:05 पर महिला जगत में आज जो बात करेंगे गर्मी में ऑयली स्किन की देखभाल, ब्लड प्रेशर को कैसे करें कंट्रोल, इंडोर प्लांट बेस्ड प्यूरिफायर, गर्मी में गन्ने के जूस के फायदे। उर्दू सर्विस के प्रसारण

दोपहर 3 बजे से हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। शाम 4 बजे सुनिए कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर। शाम 5 बजे युववाणी में बात करेंगे सबका साथ सबका विकास, प्लास्टिक मुक्त भारत, मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता, फिट इंडिया मूवमेंट और आज का इतिहास। सराय की शाम 6:05 पर और चौपाल शाम 7 बजे आप सुन पाएंगे। चौपाल में आज बात करेंगे घर पर वर्मी कंपोस्ट बनाएं, एनपीके और सूक्ष्म पोषक तत्व, साथ ही साथ मौसम और बाजार भाव की जानकारी देंगे। कवि विनोद स्वामी की राजस्थानी कहानी सुनी आम पुच। कार्यक्रम एक ही फिल्म से रात्रि 8 बजे आप हमारे केंद्र से सुन पाएंगे। रात्रि 9:15 पर सुगम संगीत और कार्यक्रम कंट्री वाइड शाम रात्रि 9:30 पर। ये कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। रात्रि 10 बजे विज्ञान पत्रिका हमारे जयपुर केंद्र से रिले की जाएगी और शाम रात्रि 10:30 पर शास्त्रीय संगीत आप सुन पाएंगे। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्ज पर। संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी में समाचार थोड़ी ही देर में हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए खरीफ की 14 फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों को उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए ये फैसला किया है।
1: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 2,60,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि सूरजमुखी के बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रुपए प्रति क्विंटल, कपास के लिए 557 रुपए और तिल के लिए 500 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। मंत्रिमंडल ने कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं के लिए संवर्धन योजना को भी मंजूरी दी। ये योजना भारत के कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी से देश के करोड़ों किसानों को उपज का उचित और लाभकारी मूल्य मिलेगा। श्री मोदी ने कहा कि अहमदाबाद धोलेरा सेमी हाई स्पीड डबल लाइन परियोजना देश की रेल विकास यात्रा के लिए महत्वपूर्ण पड़ाव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि श्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे।
2: During the visit, यात्रा के दौरान

0: दोनों नेता निवेश, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, संस्कृति और आपसी जनसंपर्क समेत विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने के उपायों पर चर्चा करेंगे।
1: पीपल टू पीपल कनेक्ट।
2: ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की दो दिवसीय बैठक आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। दूसरे दिन ब्रिक्स के सदस्य और सहयोगी देश ब्रिक्स @20 लचीलेपन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण विषय पर आधारित सत्र में हिस्सा लेंगे। इसके बाद वैश्विक शासन और बहुपक्षीय प्रणाली में सुधार पर सत्र आयोजित किया जाएगा। भारत इस वर्ष ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है। असम सरकार 26 मई को विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक प्रस्तुत करेगी। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने कल अपने नए कार्यकाल की पहली मंत्रिमंडलीय बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में ये घोषणा की। विधानसभा का विशेष सत्र 21 से 26 मई तक चलेगा। इसमें नव निर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी। पश्चिम बंगाल सरकार ने आलू, प्याज, फल, सब्जियों, तिलहन, अनाज और अन्य आवश्यक उत्पादों को अन्य राज्यों में ले जाने पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं। ये प्रतिबंध पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार ने लगाए थे। इन प्रतिबंधों से आलू उत्पादक किसानों और अन्य संस्थाओं को भारी नुकसान हुआ था। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से पहले राज्य के किसानों को प्रतिबंध हटाने का आश्वासन दिया था। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में बारिश, आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में 43 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। सबसे अधिक 15 लोगों की जान भदोही जिले में गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को प्रभावित लोगों की हर संभव सहायता करने का निर्देश दिया है। केंद्र सरकार ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक प्रवीण सूद को एक वर्ष का सेवा विस्तार दे दिया है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के आधिकारिक आदेश के अनुसार मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने यह मंजूरी दी। श्री सूद का कार्यकाल 24 मई को समाप्त हो रहा था। आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 6 विकेट से हरा दिया है। कोलकाता नाइट राइडर्स ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 192 रन बनाए। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 19 ओवर और एक गेंद में 4 विकेट के नुकसान पर 194 रन बनाकर मैच जीत लिया। विराट कोहली ने 60 गेंद में नाबाद 105 रन बनाए। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। टूर्नामेंट में आज शाम 7:30 बजे धर्मशाला में पंजाब किंग्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय आज नई दिल्ली में अल्पसंख्यक कल्याण विकसित भारत के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से समावेशी विकास विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: गुड मॉर्निंग, दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय साइरा मुज्तबा। A two-day meeting of BRICS foreign ministers will begin today in New Delhi. The meeting will be chaired by External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar. BRICS foreign ministers and heads of delegation from member and partner countries will participate in the meeting. They will also call on Prime Minister Narendra Modi. Prime Minister Narendra Modi will visit Abu Dhabi tomorrow as the first stop of a five-nation tour that will take him through the UAE, the Netherlands, Sweden, Norway and Italy between Friday and 20th of this month. Secretary West in the Ministry of External Affairs, C.B. George, informed that on the first leg of his five-nation visit, Mr. Modi will meet UAE President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. He said the two leaders will exchange views on bilateral issues, in particular energy cooperation, as well as regional and international issues of mutual interest.
4: Prime Minister will begin his visit from the UAE on 15 May, where he will meet the President of the UAE, His Highness Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, and exchange views on bilateral relations, in particular energy cooperation, as well as regional and international issues of mutual interest. During the visit, both the leaders will discuss avenues to further deepen our bilateral ties in areas including trade, investment, energy, technology, culture, and people-to-people connect.
3: The Assam government will introduce the Uniform Civil Code or UCC Bill in the State Assembly on the 26th of this month. Chief Minister Hemanta Biswa Sarma made the announcement while addressing media after chairing the first cabinet meeting of his second term as Chief Minister. Mr. Sarma said, a special session of the Assam Assembly will be held from the 21st to the

0: 26th of May, during which the newly elected MLAs will take oath. With this move, Assam is set to become the third state after Uttarakhand and Gujarat to table a uniform civil code bill. The West Bengal government has lifted all restrictions on the interstate movement of potato, onion, fruits, vegetables, oil seeds, food grains and other essential products. The restrictions had been imposed by the erstwhile TMC government. On the other hand, in a significant development, the government of West Bengal decided to hand over the cases related to teachers' recruitment, municipal recruitment and cooperative services recruitment scams to the CBI. The West Bengal government has also terminated the services of all persons who were re-employed by the TMC government after their superannuation. In Uttar Pradesh, rain along with dust storm and lightning have claimed 43 lives in the past 24 hours. Chief Minister Yogi Adityanath has taken cognizance of the incidents and asked the officials to provide every possible help to the affected people. Maximum deaths have been reported from Bhadohi district, where 15 people lost their lives. More than 1,000 people are injured and admitted to different hospitals. 10 people died in Mirzapur, 9 in Fatehpur, while 5 people died in Badayun and 4 people died in Bareilly district. The government has given 1-year extension to Director of Central Bureau of Investigation or CBI, Praveen Sood. According to an official order issued by the Department of Personnel and Training, the Appointments Committee of the Cabinet gave its nod for the extension to Mr. Sood as Director of the Investigation Agency beyond the 24th of this month. U.S. President Donald Trump arrived in Beijing last evening for a 2-day summit with Chinese President Xi Jinping. Iran war, global energy crisis, trade tensions, Taiwan and artificial intelligence are likely to dominate the agenda. The summit comes at a pivotal moment for global geopolitics. While expectations for major breakthroughs remain limited, the meeting is being viewed as a critical effort to stabilize relations between the world's two countries amid rising international uncertainty. In IPL cricket, Virat Kohli created history and broke several records during Royal Challengers Bengaluru's 6-wicket victory over Kolkata Knight Riders in Raipur last night. Kohli scored an unbeaten 105 runs off 60 balls, including 11 fours and 3 sixes. It was his 9th IPL century, the most by any player in the tournament's history. During his innings, Kohli also completed 14,000 T20 runs, becoming the first Indian and the fastest player ever to reach the milestone, breaking Chris Gayle's record. He also crossed 400 runs this IPL season. Today, Punjab Kings will face Mumbai Indians in Dharamshala at 7:30 p.m. And that is the end of this news bulletin.
1: मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलो हर्ट्स पर, डीआरएम चैनल 909 किलो हर्ट्स, एफएम 100.1 मेगा हर्ट्स और मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर पर हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। प्रस्तुत कार्यक्रम खेती हराम वास्ते आज जो जानकारी देंगे, असली और नकली खाद की पहचान कैसे करें।
2: राम राम रामेश्वर भाई, राम राम।
3: राम राम मुकेश भाई, राम राम राम राम। और सुनाओ मुकेश भाई, क्या हाल चाल है?
2: बढ़िया रामेश्वर भाई, बस लाग रहे हैं खेत क्यार के काम धंधे में।
3: बढ़िया बढ़िया। और अब देखा नहीं तो अब मौसम जो है वो बदलने ला रहे है, और आपने हाड़ी की जी फसल है ना, आपने जो का भाई लोग है लगभग सामने में लाग रहे है।
2: जी बिल्कुल रामेश्वर भाई, अब आप देखने ला रहे हैं कि लगभग किसान भाई हैं जका आपकी फसलें जकी साम ली है, आगे की फसल की बीज आंत जकी बिंगी तैयारी भी शुरू कर दी है।
3: क्योंकि अब देखा नहीं तो आपने जगह कणगीज की फसल है बा लगभग कटाई हो चुकी है, लेकिन तूड़ी ताड़ी वालों तो काम धंधो नहीं मुकेश भाई, अजय की थोड़ो बहुत बाकी पड़ो है।
2: बिल्कुल रामेश्वर भाई, और वो काम धंधो तो देखो जी यही चाल तो ही रहनो है।
3: हाँ,
2: और सागे सागे रामेश्वर भाई थारकनु कई जानकारी लेनी थे, मार में श्याणा मीने खो सोचे और जानकारी थारू ही ले लिया।
3: मुकेश भाई श्याणा तो थे भी हो, लेकिन जानकारी की अगर बात पूछनी है ते पूछ सको और पूछो के पूछना चाहो।
2: रामेश्वर भाई सहसू पहला तो मैं थारसू आ बात पूछना चाहूँ कि जी आप खेती करा तो भी मैं खाद को उपयोग करा।
3: बिल्कुल।
2: और खाद का उपयोग का मां अब अपने बेरो कौन लागे नहीं कि किसी खाद असली है और किसी नकली है, तो वो आन दिना में की चर्चा में रेवे कि आ खाद तो भाई तू नकली लिया हो या

0: असली खाद है, तो बिंगी पिछाण किया करा।
1: मुकेश भाई का अब लाला दिना भी आप एज की शिकायतें हैं और एज की कमियां हैं, आप सुनी और देखी भी आपने जो किसान भाई लोग बता ला रहे हैं नकली खाद जी की है बाण ला रही है,
0: जी
1: तो इंग जी की पिछाण है नहीं बा अपन करनी जरूरी है। तो इंग पिछाण आपा किया करनी है जी, आप डीएपी जी की है बा खेत का मां बरताइया।
0: हाँ बिल्कुल, डीएपी आप लगभग फसल में उपयोग में लेवाइया।
1: मुकेश भाई जे डीएपी की आप पिछाण करनी है नहीं भी असली है एक नकली है, तो इंग लिए सहसु पहली आप जो को तरीको अपनाना वो ये है कि डीएपी का कुछ एक जगह दाना भी हाथ में लेगे और बामा चुन्नो जो को है वो मिलागे और बिने मसलनो चाहिए हथेड़ी के ऊपर, बिंग मजे तेज गंध आण ला जाए सोर मान ला जाए और अपा बिन सूंगे देखा तो यह समझाना चाहिए का आ डीएपी जी की है बा एकदम असली है।
0: यानी कहना मतलब वो है कि जे सूंघणो ही मुश्किल हो जावे, इतनी तेज गिंद आवे बीमा, तो बा इंगो मतलब असली है।
1: हाँ बिल्कुल असली है, आ एक पिछाण है और इंगे अलावा एक और पिछाण है मुकेश भाई,
0: के पिछाण है भाई बता दियो।
1: बा पिछाण आ है कि डीएपी का कुछ एक जगह दाना है बे धीमी आंच पर अपने तवा के ऊपर गर्म करना है जो को रोटी पोन वाला तो है
0: जी
1: बिंग ऊपर आप गर्म कर लेवा, जे ये दाना फूल जे तो समझाना चाहिए है कि आ डीएपी जी की है असली
0: असली
1: है।
0: है।
1: हाँ
0: और इंग अलावा और कोई पिछाण है तो बा भी बता दे रामेश्वर भाई।
1: बिल्कुल एक और पिछाण है बा भी सुन लो थे, डीएपी की जिसकी असली पिछाण है नहीं बा आप भी है मुकेश भाई के इंगा जगह कठोर दाना भूरे काले और बादामी रंगा हुए और नाखून शू बे आसानी से टूटे कोनी आपा बिन मसल गए या तोड़ के देखा तो।
0: ठीक है, तो यूं आप पिछाण सका कि आ डीएपी असली है और नकली है।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: इंग अलावा रामेश्वर भाई आप पोटास को उपयोग करा फसल में,
1: बिल्कुल करा
0: तो इंगो और बता दियो माने कि इंगो माने किया बेरो लगे कि नकली पोटास है या वो असली पोटास है।
1: इन चीज की भी पिछाण आपा कर सका जी, पोटास की जी असली पहचान है बोइंगो सफेद जो को कड़ाकू है वो आपा मान सका। इंगे अलावा मुकेश भाई आपने एक और पिछाण है का आपा असली पोटास की जी की पिछाण है बकियां कर सका, पोटास पानी में घुलने पर इंगो जो को लाल भाग है वो हमेशा ऊपरला पासे तैरतो रहे।
0: ठीक है रामेश्वर भाई, इंगे अलावा आप बात करा सुपर फास्फेट की, तो सुपर फास्फेट की असली नकली की पिछाण आप किया करा।
1: सुपर फास्फेट की भी असली नकली की पहचान मुकेश भाई कर सका, सुपर फास्फेट की असली पहचान आ है कि इंगा सख्त दाना जका है अंगो जो को रंग है वो भूरो काड़ो और बादामी रंग हुए,
0: ठीक है।
1: और इंगा अलावा सुपर फास्फेट का कुछ एक दाना तवा पर गर्म करना पर जे ए दाना ना फूले तो समझाना चाहिए का आ असली सुपर फास्फेट है।
0: असली सुपर फास्फेट। रामेश्वर भाई इंग एक पिछाण आ है कि इनमें ज्यादातर जगह है वो डीएपी और एनपीके को मिश्रण बिंगी मिलावट हो है,
1: हाँ
0: और
1: हाँ
0: इंगो आप पिछाण करके है आप असली नकली की पिछाण कर सका।
1: बिल्कुल आप भी एक बहुत बढ़िया पिछाण है और इन त्रियांशियों आप अगर आपने जी की असली नकली खाद है भी पिछाण करके यार खेत में ना खानी तो आपने जी की फसल है बा भी मुकेश भाई बहुत बढ़िया है और आपने जो को पीसो टक्को लागू रहनी वो भी एड़ो कौन जेनी
0: बिल्कुल सही बात है रामेश्वर भाई।
1: पने। अब तो खेत का काम धंधा मैं और थे और भी करना है तो क्यों ना चला,
0: चलो सा,
1: राम
0: राम
1: राम
0: राम सा,
1: सा राम
0: राम राम।
1: राम।

अत्र ऋषि ने आश्रम में ले जाकर अतिथियों को कंदमूल फल खिलाए। भक्तवत्सल कृपालु प्रभु का विधिवत पूजन करते हुए अत्र ऋषि ने स्तुतिगान द्वारा अपने हृदय के उद्गार प्रकट किए। जो मनुष्य ईर्ष्या द्वेष से मुक्त होकर प्रभु के चरणों में नेह लगाते हैं, उन्हें मर्त्यलोक में बार बार के आवागमन से मुक्ति मिल जाती है। हे श्री राम, मैं आपको नमस्कार करता हूँ और आपके चरण कमलों में सतत भक्ति की याचना करता हूँ।

हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। प्रातः के 7:20 मिनट हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुप्रभात।

कि हम एक दूसरे से सहयोग करके चलें, एक दूसरे के साथ कदम से कदम मिलाकर चलें। इस दुनिया में जीने के लिए हर किसी को आवश्यकता रहती है किसी न किसी के साथ की, किसी न किसी के सहयोग की, जो हमेशा उसके साथ रहे। अकेले रहकर खुश रहना संभव नहीं है। हम अपना दर्द बांटकर कम कर सकते हैं या अपनी खुशी दूसरों के साथ बांटकर बढ़ा सकते हैं। लोग हमारे साथ खड़े रहते हैं, हमारी भावनाओं को समझते हैं, हमसे जुड़ते हैं और हमारे जीवन का हिस्सा बन जाते हैं। हम उन लोगों के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा मायने रखते हैं, वो जो हमें सहयोग करते हैं। कुछ से हम ज़रूरत के समय मिलते हैं, कुछ से किस्मत में मिलते हैं, कुछ हमारे जीवन के पहले दिन से हमारे साथ रहते हैं। रिश्तों को बनाए रखने के लिए भी सहयोग बड़ा ज़रूरी है। हम सड़क पर भी चलते हैं तो एक दूसरे से सहयोग करके चलते हैं। हम किसी को नहीं जानते, सड़क पर सामने से कौन आ रहा है, हमारे पीछे से हमें ओवरटेक कौन कर रहा है, लेकिन हम रास्ता देते हैं। हम एक दूसरे से सहयोग करके चलते हैं क्योंकि मनुष्य को सहयोग करके ही चलना होगा।

दोस्तों, भोजन हमारे जीवन की प्राथमिक आवश्यकताओं में से एक है। भोजन जिससे हमें ऊर्जा मिलती है। आहार का अर्थ है ऐसा भोजन जिसमें प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर की पर्याप्त मात्रा और संतुलित मात्रा मौजूद हो। स्वस्थ आहार के लिए आवश्यक है हरी सब्जियां, दाल, रोटी, चावल, दूध, दही इत्यादि, है ना। लेकिन आज हम देखते हैं कि आधुनिक समय में डाइट चार्ट का महत्व तो कम होता जा रहा है। स्वस्थ भोजन से भी बच्चे परहेज कर रहे हैं, स्वादिष्ट भोजन की तरफ आकर्षित होते जा रहे हैं। गेहूं छोड़कर विशेष तौर पर अगर हम बात करें तो हमारे, क्योंकि भोजन का मुख्य अंग गेहूं है, और गेहूं के आटे को छोड़कर हम अब फाइबरलेस यानी मैदे की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। इससे बच्चों में मोटापा तो आ ही रहा है, इसके अलावा मधुमेह का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। जंक फूड भले ही थोड़े स्वादिष्ट होते हैं, लेकिन वो बिल्कुल भी स्वास्थ्यप्रद नहीं होते। इस तरह की कंपनियों के लिए हम केवल एक बाजार हैं, इन्हें हमारे स्वास्थ्य से कोई सरोकार नहीं है। जो कंपनीज इस तरह के प्रोडक्ट्स बना रही हैं, बेच रही हैं, इसलिए हमें जंक फूड को त्याग कर हरी सब्जियों से बहुत तरह के व्यंजन बनाए जा सकते हैं। आप अगर यदि घी की बात करें या टिंडे की बात करें, तो इनसे किसी भी सब्जी की ग्रेवी को बहुत अच्छा सा बनाया जा सकता है, बना रहे हैं लोग, है ना। तो इन तौर तरीकों पर अपन नहीं बात करेंगे, ये हमारे कार्यक्रम का विषय नहीं है, लेकिन फिर भी हरी सब्जियां हमारे भोजन का मुख्य अंग होनी चाहिए, जो कि सदियों से चला आ रहा है। उसके बिना हमारे भोजन में किसी भी तरह के मिनरल्स या विटामिन्स या फाइबर्स की कमी हम पूरी नहीं कर पाएंगे। सादा भोजन ही हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। क्रमिक आहार हमें शक्तिशाली उपकरण और हमारे शरीर को ताकत देता है, हमारे शरीर को लंबे समय तक

चलने के लिए। आजकल हम देखते हैं ना कोलेस्ट्रॉल की कितनी प्रॉब्लम्स हैं लोगों को, दिल से संबंधित कितनी समस्याएं हैं, ब्लड प्रेशर से संबंधित कितनी समस्याएं हैं आजकल, क्योंकि हमारे आहार व्यवहार के अलावा हमारे जीवन के तौर तरीके भी बदल गए, हमारा जीवन शारीरिक श्रम से पीछे हो गया। अब जब शारीरिक श्रम नहीं है तो आप ज़्यादा भारी भोजन को पचा कैसे पाएंगे, इसलिए भोजन हल्का लें, भोजन स्वास्थ्यप्रद लें। स्वास्थ्यप्रद भोजन यदि आपको स्वादिष्ट नहीं लगता है तो उसमें कुछ गरम मसालों का या कुछ हल्के फुल्के मसालों का इस प्रकार का मिश्रण हम बना सकते हैं। खैर बातें और भी करेंगे, सुनते हैं एक गीत।

दोस्तों, एक आम कहावत है कि यदि आप खुद पर विश्वास नहीं करते तो दूसरे आप पर विश्वास क्यों करेंगे। उसी तरह से यदि आप स्वयं अनुशासन में नहीं रहते तो कोई और आपके कहे अनुशासन में कैसे रहेगा। जीवन में कुछ भी हासिल करने का रहस्य उसे आदत बना लेना है। कहते हैं किसी भी काम को 23 दिनों तक अभ्यास करने से वो आदत बन जाती है। हम इस दुनिया में रहते हैं और ऐसे व्यक्ति भी हैं इस दुनिया में जिनमें अनुशासन की कमी है। वो व्यक्ति जिनमें अनुशासन की कमी है वो ना तो अपने समाज के लिए लाभदायक हैं ना ही स्वयं के लिए लाभदायक हैं। ऐसे व्यक्ति ना तो अपने आर्थिक तंत्र का ठीक से विकास कर पाते हैं ना ही सामाजिक तौर पर वो आगे बढ़ पाते हैं, ना ही घर में वो किसी तरह की काम अपना घर वालों से करवा सकते हैं। आस्था जो है वो पहाड़ों को भी हिला सकती है। इसी तरह अनुशासन वो अवधारणा है मानव जीवन की जो बड़े बड़े पहाड़ों को हिला सकती है। एक बार नेपोलियन ने कहा था, नेपोलियन बोनापार्ट को हम सभी जानते हैं, है ना, इतिहास में हमने पढ़ा है। तो वो लोग किसी देश पर हमला करने के लिए जा रहे थे और बीच में एल्प्स की पहाड़ियाँ आ गई। तो उसके सैनिकों ने, उसके गुप्तचरों ने बताया कि 5-10 किलोमीटर 20 किलोमीटर के बाद में पहाड़ियाँ स्टार्ट हो जाएंगी और वहाँ से आगे जाना बड़ा मुश्किल है। नेपोलियन बोला, मुश्किल क्या होता है, मुश्किल जैसी इस दुनिया में कोई चीज़ नहीं होती। तो वो बोले, साहब एक पर्वतमाला है जिसे एल्प्स कहते हैं और एल्पस पर्वतमाला से दूसरी ओर जाना फौज को लेकर के बड़ा कठिन है। नेपोलियन का कहना था, देयर विल बी नो एल्पस टुमारो, कल कोई एल्पस नहीं होगा, कोई पर्वत नहीं होगा। उसने अपनी फौज को लगाया और फौज ने पूरी अनुशासन के साथ पूरा का पूरा पहाड़ छेद डाला, पूरा का पूरा पहाड़ गिरा डाला और अपने लिए रास्ता बना लिया। अनुशासन से बड़ा काम हम पूरा कर सकते हैं, बड़े से बड़ा लक्ष्य हम प्राप्त कर सकते हैं। कार्यक्रम का वक्त समाप्ति की ओर है। सुनते हैं एक नगमा, फिर आपसे अनुमति लेंगे।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुप्रभात। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतकर से बोल रहे हैं। हिंदी, अंग्रेजी और
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की दो दिवसीय बैठक आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। असम सरकार 26 मई को विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक प्रस्तुत करेगी। भारत ने घरेलू कीमतों पर नियंत्रण के लिए इस वर्ष सितंबर तक चीनी के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया। पश्चिम बंगाल सरकार ने आलू, प्याज, फल, सब्जियों, अनाज और अन्य आवश्यक वस्तुओं की अंतर राज्य आवाजाही पर सभी प्रतिबंध हटाए। उत्तर प्रदेश में बारिश, आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में 60 लोगों की मौत। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक प्रवीण सूद का कार्यकाल एक वर्ष बढ़ाया गया। और आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 6 विकेट से हराया। विराट कोहली ने रचा इतिहास। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की दो दिन की बैठक आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे।

साझेदार है। पिछले साल यूएई भारत के लिए कच्चे तेल का चौथा सबसे बड़ा आपूर्ति करता था और उसने हमारी कुल जरूरत का लगभग 11% तेल उपलब्ध कराया। एलएनजी के क्षेत्र में भी भारतीय

0: कंपनियों और यूएई की आबूधाबी नेशनल ऑयल कंपनी के बीच दीर्घकालिक समझौते हुए हैं, जिनके तहत भारत को कुल 4.5 एमएमटीपीए एलएनजी की आपूर्ति की जाएगी।
1: एमएमटीपीए एलएनजी टू इंडिया।
2: भारत के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई और संयुक्त अरब अमीरात के आनी सिस्टम को जोड़ने से दोनों देशों के बीच व्यापार करना पहले से आसान हो गया है। पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच आबूधाबी में होने वाली बैठक दोनों देशों के मजबूत और दीर्घकालिक रिश्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से चाहत सिंह।
3: असम सरकार 26 मई को विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक प्रस्तुत करेगी। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने कल अपने नए कार्यकाल की पहली मंत्रिमंडलीय बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में ये घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि विधानसभा का विशेष सत्र 21 से 26 मई तक चलेगा। इसमें नव निर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी।
4: यूनिफॉर्म सिविल कोड विधेयक सत्र के अंतिम दिन यानी 26 मई को पेश किया जाएगा। प्रस्तावित कानून में विवाह की आयु, बहुविवाह, उत्तराधिकार और लिव इन संबंधों जैसे विषय शामिल होंगे। धार्मिक प्रथाओं को इस विधेयक के दायरे से बाहर रखा जाएगा, जबकि राज्य के पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में रहने वाले जनजातीय समुदायों को भी प्रस्तावित कानून के दायरे से बाहर रखा जाएगा। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
3: उत्तराखंड और गुजरात के बाद असम नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का तीसरा राज्य होगा। सरकार ने घरेलू कीमतों पर नियंत्रण के लिए इस वर्ष सितंबर या अगले आदेश तक चीनी के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन विदेश व्यापार महानिदेशालय की अधिसूचना में ये जानकारी दी गई। ये प्रतिबंध अमेरिका, यूरोपीय संघ और अन्य देशों की खाद्य सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निर्यात की जा रही चीनी पर लागू नहीं होगा। निर्यात प्रक्रिया में पहले से मौजूद खेपों को भी छूट दी गई है। पश्चिम बंगाल सरकार ने आलू, प्याज और अन्य आवश्यक उत्पादों को अन्य राज्यों में ले जाने पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं। ये प्रतिबंध पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार ने लगाए थे। इन प्रतिबंधों से आलू उत्पादक किसानों और अन्य संस्थाओं को भी भारी नुकसान हुआ था। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से पहले राज्य के किसानों को प्रतिबंध हटाने का आश्वासन दिया था।
5: आलू, प्याज, सब्जियां, फल, खाद्यान्न और तिलहन जैसी वस्तुओं अब बिना किसी बाधा के राज्य की सीमाओं के पार स्वतंत्र रूप से भेजी जा सकती है। जिला प्रशासन, पुलिस और परिवहन अधिकारियों को इस आदेश के सुचारू क्रियान्वयन के सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। ये निर्णय छोटे और सीमांत किसानों के साथ साथ व्यापारियों को भी लाभ पहुंचाएगा। अब किसानों के उनकी उपज का उचित मूल्य मिलेगा। मुख्यमंत्री ने यह भी चेतावनी दी कि यदि माल से भरे वाहनों को अंतर्राज्यीय सीमाओं पर अनावश्यक रूप से रोका या परेशान किया गया तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। संदीप दास गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
3: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
6: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
7: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
6: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए खरीफ की 14 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों को उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए ये फैसला किया है।
8: खरीफ के लिए जो फैसला लिया गया उसमें जितने भी खरीफ के क्रॉप्स हैं उन सब में कॉस्ट प्लस 50% या 50 से अधिक टोटल 2,60,000 करोड़ रुपए किसानों को पे आउट जाएगा और इस साल का एनुअल खरीफ प्रोक्योरमेंट होगा 824 लाख मेट्रिक टन।
3: श्री वैष्णव ने बताया कि सूरजमुखी के बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में 622 रुपए प्रति क्विंटल, कपास के लिए 557 रुपए और तिल के लिए 500 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में बारिश, आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में 60 लोगों की मौत हो गई। एक रिपोर्ट।
9: मौसम में आए अचानक

0: अचानक बदलाव ने राज्य भर में भारी तबाही मचाई है। आंधी, भारी बारिश और बिजली गिरने से कई लोगों की जान चली गई है। प्रयागराज में 17, भदोही जिले में 15, मिर्जापुर में 10, फतेहपुर में 9, बदायूं में 5 और बरेली जिले में 4 लोगों की मौत हो गई है। 100 से ज्यादा लोग घायल भी हैं, जिन्हें अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। सबसे ज्यादा मौतें बिजली गिरने की घटनाओं के कारण हुई हैं। विभिन्न जिलों से बिजली के खंभे और पेड़ गिरने की घटनाएं भी सामने आई हैं, जिससे बिजली आपूर्ति और सड़क यातायात प्रभावित हुआ है। बारिश के साथ हुई ओलावृष्टि से फसलों को भी भारी नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की और उन्हें अगले 24 घंटों के भीतर प्रभावित लोगों को मुआवजा दिलाने का निर्देश दिया। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: केंद्र सरकार ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक प्रवीण सूद को एक वर्ष का सेवा विस्तार दे दिया है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के आधिकारिक आदेश के अनुसार मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने ये मंजूरी दी। श्री सूद का कार्यकाल 24 मई को समाप्त होना था। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग की महत्वपूर्ण शिखर बैठक आज से शुरू हो रही है। श्री ट्रंप पेचिंग पहुंच गए हैं। 2 दिन की बैठक में ईरान से युद्ध, ताइवान को अमेरिकी हथियारों की बिक्री, व्यापार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टैरिफ जैसे कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की उम्मीद है। ये बैठक दुनिया की 2 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच बढ़ती आर्थिक और तकनीकी स्पर्धा के बीच हो रही है।
2: अमरीकी राष्ट्रपति अपने साथ कई शीर्ष व्यापार और प्रौद्योगिकी अधिकारियों को लेकर गए हैं। अमरीकी राष्ट्रपति ने अपनी यात्रा से पहले आशा व्यक्त की है कि इस बैठक से आने वाले दशकों तक अमरीका और चीन के बीच मजबूत संबंधों का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। राष्ट्रपति ट्रंप के साथ विदेश मंत्री मार्को रूबियो और रक्षा मंत्री पीट हेक्सेथ सहित वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और व्हाइट हाउस के प्रमुख सहयोगी भी गए हैं। इस यात्रा पर वैश्विक स्तर पर कड़ी नजर रखी जा रही है, क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप और शी जिनफिंग की ये मुलाकात व्यापार, प्रौद्योगिकी और रणनीतिक प्रभाव को लेकर दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव के समय हो रही है। 2017 के बाद राष्ट्रपति ट्रंप की चीन की यह पहली आधिकारिक यात्रा है। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: आईपीएल क्रिकेट में विराट कोहली ने कल रात रायपुर में कोलकाता नाइट राइडर्स पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की 6 विकेट की जीत के दौरान इतिहास रचा और कई कीर्तिमान ध्वस्त किए। कोहली ने 60 गेंद में नाबाद 105 रन बनाए। ये आईपीएल में उनका 9वां शतक है, जो इस टूर्नामेंट के इतिहास में किसी भी खिलाड़ी के सबसे ज्यादा शतक हैं। वे T20 में सबसे तेज 10,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने क्रिस गेल का कीर्तिमान ध्वस्त करते हुए 409 पारियों में ये उपलब्धि हासिल की। गेल ने 423 पारियों में ये रिकॉर्ड बनाया था। कोहली ने इस आईपीएल में 400 रन भी पूरे कर लिए हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 192 रन बनाए। जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 19 ओवर और 1 गेंद में 4 विकेट के नुकसान पर 194 रन बनाकर मैच जीत लिया। विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। टूर्नामेंट में आज शाम 7:30 बजे धर्मशाला में पंजाब किंग्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। मौसम विभाग ने आज पश्चिम मध्य प्रदेश और पश्चिम राजस्थान के कुछ इलाकों में लू चलने की संभावना जताई है। साथ ही पूर्वी राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में भी लू की स्थिति बनी रह सकती है। वहीं अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में भी भारी बारिश का अनुमान है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में अगले 3 दिन भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, बिहार, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों में आज गरज चमक और बिजली गिरने की आशंका जताई गई है। मौसम विभाग ने झारखंड, तटीय कर्नाटक और उत्तर आंतरिक कर्नाटक में अगले 2 दिन तक तेज आंधी और गरज के साथ बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
3: धन्यवाद मुकेश। विदेशी मुद्रा की बचत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर कार्रवाई शुरू होने की खबर पर नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, पीएम मंत्र समझदारी से खर्च बनेगा, देश का आर्थिक कवच कटौती नहीं, स्मार्ट लाइफ की सलाह, हम मिलकर कर सकते हैं ये सब। हिंदुस्तान का शीर्षक है, सख्ती संयम का समय शुरू, मोदी और शाह ने गाड़ियों के काफिले में कटौती की, उत्तराखंड में वर्क फ्रॉम होम और 1 दिन नो व्हीकल डे। जनसत्ता का शीर्षक है, सोने चांदी पर आयात शुल्क शेष से बढ़कर 15%। इसी खबर पर दैनिक जागरण ने फिजूल खर्ची की संस्कृति शीर्षक से संपादकीय में लिखा है कि ये अच्छा है कि प्रधानमंत्री ने अपनी कारों के काफिले में कटौती कर इसका उदाहरण पेश किया कि वो जो कुछ औरों को करने के लिए कह रहे हैं उस पर स्वयं अमल कर रहे हैं।

0: आशा है कि भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और मंत्री भी इसका अनुसरण करेंगे। अमर उजाला ने नीट पेपर लीक पर सुर्खी दी है, सीबीआई ने मारे कई जगह छापे, एनटीए मुख्यालय भी पहुंची एजेंसी, चार और गिरफ्तार, 40 लाख तक में बिका पेपर। पंजाब केसरी का शीर्षक है, तमिलनाडु में फ्लोर टेस्ट में विजय की शानदार विजय, समर्थन में 144 और विरोध में 22 वोट पड़े। दैनिक भास्कर ने केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसले देते हुए लिखा है, धान का समर्थन मूल्य 72 रुपए बढ़ाकर 2441 रुपए किया, खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में भी इजाफा। जनसत्ता का कहना है, प्रधानमंत्री मोदी कल से 5 देशों की यात्रा पर, सबसे पहले यूएई जाएंगे, एलपीजी और रणनीतिक तेल भंडार पर करार संभव। राजस्थान पत्रिका के अनुसार ईरान को ब्रिक्स से आस, कहा अधिकार की रक्षा करें। पत्र के अनुसार दिल्ली बनी केंद्र, भारत मंडपम में जुटेंगे कई विदेश मंत्री। दैनिक ट्रिब्यून का शीर्षक है, हरियाणा निकाय चुनाव में कमल का क्लीन स्वीप, हुड्डा के गढ़ से लेकर तीनों निगमों तक भाजपा का दबदबा, पीएम मोदी ने जताया आभार। लोकसत्ता की सुर्खी है, सीबीआई निदेशक प्रवीण सूद का कार्यकाल 1 साल बढ़ा। देशबंधु ने महंगाई का एक और झटका शीर्षक से लिखा है, अमूल ने बढ़ा दिए दूध के दाम 2 रुपए प्रति लीटर। दैनिक जागरण की सुर्खी है, 12वीं में अव्वल बेटियां ही बेटियां, पत्र के अनुसार सीबीएसई की 12वीं कक्षा की कॉपियां स्क्रीन पर जांची गई, 7 साल में सबसे कम रहा रिजल्ट।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की 2 दिवसीय बैठक आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। असम सरकार 26 मई को विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक प्रस्तुत करेगी। भारत ने घरेलू कीमतों पर नियंत्रण के लिए इस वर्ष सितंबर तक चीनी के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया। पश्चिम बंगाल सरकार ने आलू, प्याज, फल, सब्जियों, अनाज और अन्य आवश्यक वस्तुओं की अंतर राज्य आवाजाही पर सभी प्रतिबंध हटाए। उत्तर प्रदेश में बारिश, आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में 60 लोगों की मौत और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निदेशक प्रवीण सूद का कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ाया गया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सायरा मुज्तबा। द हेडलाइंस। 2-day मीटिंग ऑफ ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर्स टू बिगिन इन न्यू दिल्ली टुडे। असम गवर्नमेंट टू इंट्रोड्यूस यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल इन स्टेट असेंबली ऑन 26th ऑफ दिस मंथ। India bans export of sugar until September this year to cool domestic prices. West Bengal government lifts all restrictions on interstate movement of potato, onion, fruits, vegetables, food grains and other essential commodities. Heavy rain and dust storm leaves 60 people dead across Uttar Pradesh. Praveen Sood gets 1-year extension as CBI director. And Virat Kohli slams record 9th IPL century as Royal Challengers Bengaluru beat Kolkata Knight Riders by 6 wickets in Raipur. And now the news in detail. A 2-day meeting of BRICS foreign ministers will begin today in New Delhi. The meeting will be chaired by External Affairs Minister S. Jayashankar. BRICS foreign ministers and heads of delegation from member and partner countries will participate in the meeting. They will also call on Prime Minister Narendra Modi. Global leaders have arrived in the national capital ahead of the BRICS foreign ministers meeting. The leaders who arrived here yesterday include Foreign Minister of Iran, Sayed Abbas Araghchi, Deputy Prime Minister and Foreign Minister of Thailand, Shehrazad Bongkatkyo, Foreign Minister of Cuba, Bruno Rodriguez Perella, and Deputy Minister of Foreign Affairs of Vietnam, Nguyen Minh Hang. Other leaders who arrived were Foreign Minister of Malaysia, Dato Seri Utama Muhammad bin Haji Hassan, and UAE's Minister of State, Ministry of Foreign Affairs, Khalifa Shaheen Al-Marar. A report.
3: During the meeting, the foreign ministers of BRICS member countries will exchange views on global and regional issues of mutual interest. On the second day, BRICS member and partner countries will participate in a session themed BRICS at 20, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability. This will be followed by a session on the reforms of global governance and multilateral system. The BRICS foreign ministers held their last meeting on the margins of 80th session of the United Nations General Assembly on 26 September 2025. The meeting was chaired by India in its capacity as the incoming BRICS chair for 2026. Aman Yadav, Akashwari News, Delhi.
2: The Assam government will introduce the Uniform Civil Code or UCC bill in the State Assembly on the 26th of this month. Chief Minister Himanta Biswa Sarma made the announcement while

0: AIADMK MLAs. The same newspaper also informs decision on Kerala CM will be announced today. Indian ships given priority pass in Strait of Hormuz, says Iran Deputy Foreign Minister, writes the Pioneer. US President Donald Trump given a red carpet welcome in China. The Asian Age carries his picture during the welcome ceremony. The paper headlines, Trump in China on three-day visit to hold Xi talk on Iran war and trade. The Times of India writes, dealmaker and dragon, Trump seeks to do business with Beijing. The Hindu, in its editorial title, Testing Troubles, writes that leaks and breaches have destroyed the National Testing Agency's credibility. The K. Radhakrishnan Committee, which was constituted to recommend reforms in the examination process, recommended restructuring of the NTA and creating strong institutional linkages with state and district authorities in order to produce a secure test administration apparatus. And finally, the Times of India writes, in a rare and emotional moment during proceedings linked to passive euthanasia, the Supreme Court praised the family of Harish Rana for donating his corneas and heart valve after permission was granted to withdraw life support, observing that his life continues in others through the noble act. And with that, it's back to you, Saira.
1: Thanks, Subhadra. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Two-day meeting of BRICS foreign ministers to begin in New Delhi today. Assam government to introduce Uniform Civil Code Bill in State Assembly on 26th of this month. India bans export of sugar until September this year to cool domestic prices. West Bengal government lifts all restrictions on interstate movement of potato, onion, fruits, vegetables, food grain and other essential commodities. Heavy rain and dust storm leaves 60 people dead across Uttar Pradesh. Praveen Sood gets one-year extension as CBI director. And Virat Kohli slams record 9th IPL century as Royal Challengers Bengaluru beat Kolkata Knight Riders by 6 wickets in Raipur. For details of these stories and more, log on to our website www.newsoneair.gov.in and NewsOnAir app. And with that, we end the morning news. Have a great day.
2: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं नीतिका त्यागी। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। ब्रिक्स वज़राए खारिजा की दो रोज़ा मीटिंग आज से नई दिल्ली में शुरू होगी। आसाम हुकूमत इस महीने की 26 तारीख को रियासती असेंबली में यकसां सिविल कोड मुतारिफ कराएगी। भारत ने घरेलू कीमतों में कमी लाने के मकसद से सितंबर तक शक्कर की बरामद पर पाबंदी लगा दी है। मगरबी बंगाल हुकूमत ने आलू, प्याज, फल, सब्जियों, गजाई अजनास और दीगर जरूरी अशिया की बैन रियासती हमलो नकल पर आयद सभी पाबंदियां हटा ली हैं। शदीद बारिश और धूल भरी आंधी से उत्तर प्रदेश में अब तक 60 लोगों की मौत हो गई है। सीबीआई के डायरेक्टर के तौर पर प्रवीण सूद की मुद्दत में एक साल की तौसी की गई है। और आईपीएल क्रिकेट में रायपुर में खेले गए मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 6 विकेट से हरा दिया। विराट कोहली ने नवी आईपीएल सेंचुरी लगाई, जो कि एक रिकॉर्ड है। अब खबरें तफसील से। ब्रिक्स वज़राए खारिजा की मीटिंग से कबल आलिमी रहनुमा कौमी राजधानी पहुंच गए हैं। यहां कल जो रहनुमा पहुंचे, उनमें ईरान के वजीर खारिजा सैयद अब्बास अराकची, थाईलैंड के नायब वजीर आजम और वजीर खारिजा सिहासक फुआंग केट केओ, क्यूबा के वजीर खारिजा ब्रूनो रोद्रिगेस पारिल्ला और वियतनाम की नायब वजीर खारिजा गुयेन मिन हांग शामिल हैं। दीगर रहनुमाओं में मलेशिया के वजीर खारिजा दातो सेरी उतामा मोहम्मद बिन हाजी हसन और मुत्तहदा अरब अमारात के उमूरे खारिजा के वजीर मुमलिकत खलीफा शाहीन अल मिरार भी शामिल हैं। तफसील हमारे नामा निकार से।
3: इजलास के दौरान ब्रिक्स रुकन मुल्कों के वज़राए खारिजा बाहमी दिलचस्पी के इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादले ख्याल करेंगे। दूसरे दिन ब्रिक्स के रुकन और शराकत दार ममालिक एक इजलास में शिरकत करेंगे, जिसका मौजू ब्रिक्स @20 इस्तेहकाम इख्तरा ताउन और पायदारी होगा। इसके बाद आलमी हुक्मरानी और कसीर जहती निज़ाम में इस्लाहात के मौजू पर एक और इजलास मुनक़िद होगा। ब्रिक्स वज़राए खारिजा की पिछली मीटिंग 26 सितंबर 2025 को अक़वामे मुत्तहदा जनरल असम्बली के 80वें इजलास के मौके पर हुई थी। इस मीटिंग की सदारत भारत ने की थी। नई दिल्ली से अमन यादव की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मार।
2: आसाम हुकूमत इस महीने की 26 तारीख को रियासती असेंबली में यकसां सिविल कोड UCC बिल पेश करेगी। वजीर आला हेमंता बिस्वा सरमा ने अपनी दूसरी मुद्दतेकार की पहली काबीना मीटिंग की सदारत

0: रद्द करने के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इसका ऐलान किया। जनाब शर्मा ने कहा कि आसाम असेंबली का एक खसूसी इजलास 21 से 26 मई तक मुनक़िद होगा, जिसके दौरान 9 मुंतखब अरकान असेंबली हलफ लेंगे। उन्होंने कहा कि मुजव्वज़ा कानून साजी का मकसद शादी की कानूनी उम्र, एक से ज़्यादा शादी, विरासत और बग़ैर शादी के साथ रहने जैसे मसाइल को हल करना है। उन्होंने वाज़े किया कि मजहबी रसूमात और मजहबी मामलात इस बिल के दायरा कार से बाहर रहेंगे। इस इख़्ताम के साथ आसाम, उत्तराखंड और गुजरात के बाद यकसां सिविल कोड बिल पेश करने वाली तीसरी रियासत बनने जा रही है। हुकूमत ने चीनी की बरामदात पर फौरी तौर पर सितंबर 2026 तक या मजीद अहकाम जारी होने तक पाबंदी आयद कर दी है, जिसमें खाम चीनी, सफ़ेद चीनी और रिफाइंड चीनी शामिल है। एक सरकारी नोटिफिकेशन के मुताबिक गैर मुल्की तजारत के डायरेक्टरेट जनरल ने बरामदी पॉलिसी को महदूद के जुमरे से ममनू के जुमरे में तब्दील कर दिया है। ताहम ये पाबंदी CXL और TRQ कोटा और एडवांस ऑथोराइजेशन स्कीम के तहत यूरोपीय यूनियन और अमेरिका को बरामद होने वाली चीनी पर नाफिज नहीं होगी, ताकि दीगर ममालिक की खुराक की यकीनी फराहमी से मुतालिक जरूरियात को पूरा किया जा सके। वो खेप जो बरामद के लिए फिजिकल पाइपलाइन में है, उन्हें इस पाबंदी से मुस्तस्ना रखा गया है। मगरबी बंगाल हुकूमत ने आलू, प्याज, फल, सब्जियों, गजाई अजनास और दीगर ज़रूरी अशिया की बैन रियासती नकलो हरकत पर आयद सभी पाबंदियां हटा ली हैं। ये पाबंदियां साबिका TMC हुकूमत की जानिब से आयद की गई थीं। दूसरी जानिब एक अहम पेशरफ्त के तौर पर मगरबी बंगाल हुकूमत ने असातिज़ा के तकर्रुरात, म्यूनिसिपल तकर्रुरात और इमदाद बाहमी खिदमात तकर्रुरात घपलों से मुतालिक मामलों को CBI के सुपुर्द करने का फैसला किया है। मगरबी बंगाल हुकूमत ने उन सभी अफराद की खिदमात को ख़त्म कर दिया है जिनका सबूतदोशी के बाद TMC हुकूमत की जानिब से दोबारा तकर्रुर किया गया था। तफसील हमारे नामा निगार से।
1: किसानों और ताजिरों को बड़ी राहत देते हुए मगरबी बंगाल हुकूमत ने ज़रई अशिया की दीगर रियासतों में बरामदात पर आयद पाबंदियों को हटा लिया है। ज़रई मार्केटिंग के महकमे की जानिब से जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक आलू, प्याज, सब्जियाँ, फल, गजाई अजनास और तिलहन की अब रियासती सरहदों के पार बिला रुकावट हमलों नकल की जा सकती है। ज़िला इंतजामिया, पुलिस और ट्रांसपोर्ट हुकाम को इस हुक्मनामे के निफाज को यकीनी बनाने की हिदायत दी गई है। वजीर आला सुवेंदु अधिकारी ने कल नबन्ना में बताया कि इस फैसले से छोटे और हाशिया बरदार किसानों और ताजिरों को फ़ायदा पहुँचेगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि किसानों को अब उनकी पैदावार का वाजिब दाम मिलेगा। वजीर आला ने यह भी इंतबाह दिया कि ज़रई अशिया से लदी गाड़ियों को अगर बैन रियासती सरहदों पर गैर ज़रूरी तौर पर रोका गया या हिरासा किया गया तो अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस फैसले से ज़रई बरामदात में आसानी पैदा होने और मगरबी बंगाल के किसानों और ताजिरों को पेश आ रही मुश्किलात में कमी आने का इम्कान है। कोलकाता से संदीप पौन की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए ज़मीर रज़वी।
0: हुकूमत ने मरकजी जांच ब्यूरो CBI के डायरेक्टर प्रवीण सूद की मुद्दत में एक साल की तौसी की है। अमले और तरबियत के महकमे की जानिब से जारी किए गए सरकारी हुक्मनामे के मुताबिक काबीना की तकर्रुरात से मुतालिक कमेटी ने जनाब सूद की मुद्दत कार को जांच एजेंसी के डायरेक्टर के तौर पर इस महीने की 24 तारीख से आगे तौसी देने को मंजूरी दी है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कल अबू ज़हबी का दौरा करेंगे, जो उनके 5 मुल्कों के दौरे का पहला मरहला होगा। इस दौरे के दौरान वो मुत्तहिदा अरब अमारात, नेदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली जाएंगे। वज़ीर आज़म का ये दौरा जुमे से इस महीने की 20 तारीख तक जारी रहेगा। वजारत खारजा में मगरबी उमूर के सेक्रेटरी CB जॉर्ज ने बताया कि 5 मुल्कों के अपने दौरे के पहले मरहले में जनाब मोदी UAE के सदर मोहम्मद बिन जायद अन्नहयान से मुलाकात करेंगे। उन्होंने कहा कि दोनों रहनुमा दोतरफा उमूर, खासतौर पर तवानाई के शोबे में तआवुन और बाहमी दिलचस्पी के इलाकाई और बैनुल अक्वामी मामलात पर तबादला ख्याल करेंगे। ये जनाब मोदी और UAE के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अन्नहयान की सिर्फ 5 महीनों में दूसरी बिलमुशाफा मुलाकात होगी। तवक्को है कि दोनों ममालिक कल जामे स्ट्रेटेजिक शराकत दारी को मजीद आगे बढ़ाएंगे, जबकि अरब अमारात में मुकीम 40 लाख से ज्यादा भारतीयों की फलाह बहबूद भी इस बातचीत के एजेंडा में शामिल होगी। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
2: भारत और मुत्तहिदा अरब अमारात खित्ते की अहम तरीन तवानाई शराकत दारी रखते हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात इस वक्त भारत को खाम तेल फराहम करने वाला चौथा बड़ा मुल्क है, जो मुल्क की कुल ज़रूरत का तकरीबन 11% पूरा करता है। रकीक कुदरती गैस के मामले में भारतीय कंपनियों ने अबूजबी की ADNOC

0: गैस के साथ तवील मुद्दती सप्लाई मुआहदे किए हैं जिनकी मजमूई मकदार 4.5 मिलियन टन है। मुत्तहदा अरब अमारात गुज़श्ता 25 बरसों के दौरान भारत का तीसरा सबसे बड़ा तजारती साझेदार और गैर मुल्की सरमायाकारी का 7वां बड़ा जरिया है। ऐसे में जबकि मगरबी एशिया मौजूदा वक्त में अपने सबसे हंगामा खेज दौर से गुजर रहा है, अबूजहबी में दोनों रहनुमाओं के दरमियान जुमे की मुलाकात को दोनों मुल्कों के लिए इस्तेहकाम और तवील मुद्दती स्ट्रेटेजिक आज़म के तौर पर देखा जा रहा है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मार।
1: ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में गुज़श्ता 24 घंटे में धूल भरी आंधी और गरज चमक के साथ होने वाली बारिश से 60 लोग हलाक हुए हैं। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने इन मामलों का नोटिस लिया है और हुकाम को कहा है कि वो मुतासरा लोगों की मदद के लिए हर जरूरी इकदाम करें। पेश है हमारे नामा निगार की ये रिपोर्ट।
2: भदोही जिले में सबसे ज्यादा 15 हलाकतें हुई हैं, 12 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं जो मुख्तलिफ अस्पतालों में जेर इलाज हैं। मिर्ज़ापुर में 10, फतेहपुर में 9, बदायूं में 5 और बरेली में 4 अफराद हलाक हुए हैं। सबसे ज़्यादा अमवात गरज चमक, दीवारों और पेड़ों के लोगों और गाड़ियों पर गिरने की वजह से हुई हैं। रियासत के कई इलाकों में कल अचानक मौसम में तब्दीली आ गई और मुतअद्दिद ज़िलों से बिजली के खंभों और पेड़ों के गिरने की खबरें मिलीं, जिसकी वजह से बिजली की फराहमी और रोड ट्रैफिक में रखना पड़ा। बारिश के साथ होने वाली ज़ालाबारी से फसलों को ज़बरदस्त नुकसान पहुँचा है। लखनऊ से सुशील चंद्र तिवारी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए जमीर रजवी।
1: भारतीय महकमाए मौसमियात IMD ने आज मगरबी मध्य प्रदेश और मगरबी राजस्थान के दूरदराज इलाकों में गर्म लहर से शदीद गर्म लहर रहने की पेशगोई की है। मशरकी राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के दूरदराज इलाकों में भी गर्म लहर की सूरत हाल रहेगी। मौसमियाती महकमे ने आज अरुणाचल प्रदेश, आसाम और मेघालय में शदीद से इंतहाई शदीद बारिश होने की पेशगोई की है, जबकि दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, बिहार, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़, ओडिशा, मगरबी बंगाल और शिमाल मशरकी रियासतों में आज गरज चमक के साथ छींटे पड़ने का इम्कान है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप चीन के सदर शी जिनपिंग के साथ 2 रोज़ा मुज़ाकरात के लिए कल शाम बीजिंग पहुंच गए। मुज़ाकरात के दौरान ईरान जंग, तवानाई के आलमी बहरान, तजारती कशीदगी, ताइवान और मसनूई जहानत जैसे मौजूदात एजेंडा में शामिल रहने की तवक्को है। ईरान के साथ जारी जंग के बीच इसराइली वजीर आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू खुफिया तौर पर UAE पहुंचे और उन्होंने मुल्क के सदर से मुलाकात की। नेतन्याहू के दफ्तर से जारी बयान के मुताबिक इसराइली वजीर आज़म ने UAE के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ बातचीत की। इस बयान में मज़कूरा मीटिंग को इसराइल और UAE के दरमियान ताल्लुकात में एक तारीखी कामयाबी बताया गया है, हालांकि कामयाबी से मुतालिक तफसीलात का जिक्र नहीं किया गया। दूसरी जानिब UAE ने इसराइली वजीर आज़म के दौरे से मुतालिक रिपोर्टों को मुस्तरद किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में UAE की वजारत खारिजा ने कहा कि रिपोर्ट्स गलत हैं और इस बात पर जोर दिया कि इसराइल के साथ UAE के ताल्लुकात खुफिया नहीं बल्कि खुले हैं और सरकारी तौर पर ऐलान करदा इब्राहिम मुआहदे पर मबनी हैं। पोस्ट में मजीद कहा गया है कि कोई खुफिया मीटिंग नहीं हुई है। ईरान ने मज़कूरा रिपोर्ट पर शदीद रद्दअमल का इजहार किया है। ईरान के वजीर खारिजा अब्बास इराकची ने खलीजी ममालिक को इसराइल के साथ तआवुन करने पर खबरदार किया और कहा कि ईरान के खिलाफ इसराइल का तआवुन करने वाले किसी भी मुल्क को जवाबदेह ठहराया जाएगा। IPL क्रिकेट में कल रात रायपुर में कोलकाता नाइट राइडर्स पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की 6 विकेट से जीत के दौरान विराट कोहली ने तारीख रकम करते हुए कई रिकॉर्ड तोड़े। कोहली ने 60 गेंदों में बगैर आउट हुए 105 रन बनाए। उन्होंने 11 चौके और 3 छक्के लगाए। ये उनकी नवीं IPL सेंचुरी थी, जो कि टूर्नामेंट की तारीख में किसी भी खिलाड़ी की सबसे ज्यादा सेंचुरी है। इस इनिंग्स के दौरान विराट कोहली ने T20 मैचों में 14,000 रन भी मुकम्मल किए। इस तरह वो इस संगे मील को हासिल करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। वो क्रिस गेल के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए इस संगे मील तक सबसे तेजी के साथ पहुंचने वाले पहले खिलाड़ी भी बन गए हैं। उन्होंने इस IPL सीजन में 400 से ज्यादा रन बनाए हैं। इस जीत के साथ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु पॉइंट्स टेबल में सरे फहरिस्त टीम बन गई है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 8 मैचों में जीत हासिल की है और वो प्ले ऑफ में पहुंचने के बेहद करीब है। आज धर्मशाला में पंजाब किंग्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। ये थी खबरें। अब

0: सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुन रहे थे कुछ भजन। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। हिंदी में प्रादेशिक समाचार थोड़ी ही देर में हमारे जयपुर केंद्र से रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नागौर और जोधपुर जिले के दौरे पर, मेड़ता सिटी में राव दूदा और जोधपुर में पूर्व उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किसानों और पशुपालकों से जैविक खेती अपनाने और युवाओं से कृषि से जुड़ने का आह्वान किया। राज्य सरकार ने देर रात 187 आरएएस अधिकारियों के तबादले किए। और प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में भीषण गर्मी और हीट वेव का असर जारी, हालांकि सीकर, बाड़मेर, बीकानेर और चूरू में तेज आंधी के साथ बारिश हुई। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नागौर और जोधपुर जिले के दौरे पर रहेंगे। वे नागौर के मेड़ता सिटी में मेड़ता के संस्थापक राव दूदा की 15 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण करेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। इनके अलावा केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खिवसर, पंजाब के पूर्व राज्यपाल वीपी सिंह बदनौर सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहेंगे। प्रतिमा अनावरण के बाद जनसभा का भी कार्यक्रम है। केंद्रीय रक्षा मंत्री चार भुजानाथ मंदिर और मीरा मंदिर दर्शन के लिए भी जाएंगे। इसके बाद वे जोधपुर पहुंचेंगे। वहां श्री सिंह रातानाड़ा चौराहे पर आयोजित पूर्व उपराष्ट्रपति और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत की प्रतिमा अनावरण समारोह में भाग लेंगे। समारोह को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किसानों और पशुपालकों से जैविक खेती अपनाने और रासायनिक खाद के प्रयोग से बचने की अपील की है। उन्होंने युवा पीढ़ी से खेती और कृषि से जुड़ने के साथ स्थानीय पैदावार के अनुसार प्रोसेसिंग यूनिट्स लगाने को कहा है। मुख्यमंत्री कल जालौर के पंसेरी गांव में किसानों और पशुपालकों से संवाद कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने आम जन की अपेक्षाओं के अनुरूप प्रदेश के विकास का रोड मैप तैयार किया है, ताकि राजस्थान मॉडल स्टेट के रूप में स्थापित हो। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार मुख्यमंत्री विकसित ग्राम वार्ड अभियान चलाकर प्रदेश की सभी पंचायतों के सुनियोजित विकास का ब्लूप्रिंट भी तैयार कर रही है। मुख्यमंत्री ने राजीविका से जुड़ी महिलाओं से भी संवाद किया। महिलाओं ने उनसे अपने अनुभव साझा किए। श्री शर्मा ने कहा कि राजीविका से जुड़ने के बाद राज्य की महिलाएं आत्मनिर्भर बनी हैं।
2: हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये योजना राजीविका की लखपति दीदी की योजना ये चलाई है। आज इसमें 22 लाख बहनों को ट्रेनिंग इसमें राजस्थान के अंदर मिली है और लगभग 17 लाख बहन हमारी लखपति दीदी बन गई है।
1: मुख्यमंत्री ने आज सुबह पंसेरी गांव का पैदल दौरा भी किया। उन्होंने ग्रामीणों से बातचीत की। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गर्मी के मौसम को देखते हुए प्रदेश में पेयजल और बिजली आपूर्ति व्यवस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता देने

0: के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि पानी और बिजली आपूर्ति को लेकर आमजन को किसी तरह की परेशानी ना हो, इस संबंध में शिकायतें मिलने पर संबंधित जिला कलेक्टर और विभागीय अधिकारियों की जिम्मेदारी तय होगी। श्री शर्मा ने कल मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित बैठक में निर्देश दिए कि सभी कलेक्टर नियमित रूप से पानी बिजली आपूर्ति को लेकर साप्ताहिक बैठकें कर मॉनिटरिंग करें और संबंधित शिकायतों का विभागीय अधिकारी प्राथमिकता के साथ तुरंत निस्तारण करें। उन्होंने कहा कि गर्मी के दौरान आमजन को राहत पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है और इसमें किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। मुख्यमंत्री ने पेट्रोल डीजल बचत के लिए सभी अधिकारियों को वाहनों का कम से कम उपयोग करने को भी कहा है। मुख्यमंत्री ने कार पूलिंग व्यवस्था अपनाने के निर्देश दिए। ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों की आज नई दिल्ली में बैठक होगी। वैश्विक नेता नई दिल्ली पहुंच चुके हैं। इससे पहले विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल नई दिल्ली में रूस, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील और मालदीव के विदेश मंत्रियों से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने बताया कि सभी देशों के साथ रणनीतिक साझेदारी के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की गई और आपसी हित के बहुपक्षीय मुद्दों पर भी चर्चा हुई। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट पेपर लीक मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। 3 व्यक्ति जयपुर से, 1 गुरुग्राम से और 1 व्यक्ति को नासिक से गिरफ्तार किया गया है। अन्य कई संदिग्ध व्यक्तियों की जांच की जा रही है। सीबीआई ने कल इस सिलसिले में कई स्थानों पर छापे मारे और अनेक आपत्तिजनक सामग्री और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए। सीबीआई इस मामले में शुरुआती जाँच करने वाले राजस्थान के विशेष कार्यबल के भी समन्वय में है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। राज्य सरकार ने देर रात राजस्थान प्रशासनिक सेवा के 187 अधिकारियों के तबादले किए। तबादला सूची में 70 से अधिक एसडीएम और 35 एडीएम, 8 जिला परिषदों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और 16 विकास प्राधिकरण तथा नगरीय निकाय के अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। साथ ही सचिवालय और संयुक्त सचिव स्तर के 15 और विभिन्न विभागों के 20 निदेशक और अतिरिक्त निदेशक इनमें शामिल हैं। तबादला सूची में बीकानेर के अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जसवंत सिंह को पंचायती राज विभाग में अतिरिक्त आयुक्त और संयुक्त शासन सचिव तृतीय के पद पर, बीकानेर के अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन गोपाल राम बिरदा को जयपुर के जवाहर कला केंद्र में अतिरिक्त महानिदेशक के पद पर लगाया गया है। डॉक्टर ज्योति चौहान का राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के कार्यकारी निदेशक से चिकित्सा शिक्षा विभाग में संयुक्त शासन सचिव के पद पर तबादला किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी से देश के करोड़ों किसानों को अपनी उपज के लिए उचित और लाभकारी मूल्य मिलेगा। कल हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के निर्णयों की सराहना करते हुए श्री मोदी ने कहा कि किसानों के हित में लिए गए इस फैसले से उनके जीवन में समृद्धि आएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि अहमदाबाद धोलेरा सेमी हाई स्पीड डबल लाइन परियोजना देश की रेल संपर्क यात्रा में महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि कोयला लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं की संवर्धन योजना से ऊर्जा सुरक्षा बढ़ेगी, निवेश को बढ़ावा मिलेगा और युवाओं के लिए रोजगार सृजित होगा। केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि अमेरिका के स्मिथसोनियन राष्ट्रीय एशियाई कला संग्रहालय से 3 भारतीय प्राचीन वस्तुओं की भारत वापसी हुई है। इसका उद्देश्य भारत की चोरी हुई सांस्कृतिक विरासत को पुनर्स्थापित और संरक्षित करना है। नई दिल्ली में श्री शेखावत ने कहा कि देश की विरासत, जिसे अनैतिक तरीकों से देश से बाहर ले जाया गया था, अब वापस लाई जा रही है।
1: ऐतिहासिक एंटीक्विटीज को जो भारत लाने का क्रम पिछले वर्षों से चल रहा है, उस दिशा में हम ऑस्ट्रेलिया से 11 और अमेरिका से 3 और मूर्तियों को भारत में लाने में सफल हुए। इसके अतिरिक्त भी 657 एंटीक्विटीज को आइडेंटिफाई करके हमने अमेरिका के साथ चर्चा की। यूएस एनफोर्समेंट एजेंसीज ने उनको भारत के दूतावास को अमेरिका में सुपुर्द कर दिया है। उनको लाने की प्रक्रिया भी प्रारंभ होगी। 657 एंटीक्विटीज उसके बाद में भारत आएंगे।
0: प्रदेश के पश्चिमी इलाकों में पड़ रही भीषण गर्मी के बीच कल सीकर, बाड़मेर, बीकानेर और चूरू सहित कई जिलों में तेज आंधी के साथ बारिश दर्ज की गई। चूरू में 1-2 स्थानों पर ओलावृष्टि भी हुई। हालांकि मौसम में आए इस बदलाव के बावजूद प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में भीषण गर्मी और हीट वेव का असर जारी रहा।

0: कल 5 शहरों में अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया। फलौदी प्रदेश का सबसे गर्म शहर रहा, जहां अधिकतम तापमान करीब 47 डिग्री और न्यूनतम तापमान 34 डिग्री दर्ज हुआ। भीषण गर्मी के कारण जनजीवन प्रभावित रहा। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि वर्तमान में राज्य के दक्षिणी पश्चिमी और पूर्वी भागों में अधिकतम तापमान 45 से 48 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि आगामी दिनों में न्यूनतम और अधिकतम तापमान में विशेष बदलाव की संभावना नहीं है। वहीं आगामी 48 घंटों के दौरान बीकानेर संभाग, शेखावाटी क्षेत्र, जयपुर और भरतपुर संभाग के उत्तरी इलाकों में कहीं कहीं बादल गरजने, 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आंधी चलने और हल्की बूंदाबांदी की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नागौर और जोधपुर जिले के दौरे पर, मेड़ता सिटी में राव दूदा और जोधपुर में पूर्व उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किसानों और पशुपालकों से जैविक खेती अपनाने और युवाओं से कृषि से जुड़ने का आह्वान किया। राज्य सरकार ने देर रात 187 आरएएस अधिकारियों के तबादले किए और प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में भीषण गर्मी और हीट वेव का असर जारी। हालांकि सीकर, बाड़मेर, बीकानेर और चूरू में तेज आंधी के साथ बारिश हुई। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। प्रातः के 9:10 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम मरुमंगल। मरुमंगल में आज हम आपको सुनवाएंगे लोक गायक धर्मपाल भारती के गाए कुछ लोकगीत।

अभी आप सुन रहे हृदय कार्यक्रम मुरमंगल। आज आपने लोक गायक धर्मपाल भारती के गाए कुछ लोकगीत सुने। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्ज़ पर, डीआरएम चैनल 909 किलोहर्ट्ज़, एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ और मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर पर प्रातः के 9:30 हुए हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

0: पार्टी। सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
1: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
0: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।

आइए अब सुनते हैं फिल्म त्रिशूल का गीत, यशुदास और लता मंगेशकर के स्वरों में, गीत साहिर लुधियानवी का और संगीत खयाम का।

0: तो तुम जाओगे।
1: तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका।
2: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है

0: पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना KYC अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
1: RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: लता मंगेशकर और किशोर कुमार को सुनिए गीत गुलजार का, संगीत RD बर्मन का, और फिल्म का नाम है घर।

0: Polis tanesi bulurum.
1: Kürsi?
2: Aap, digital arrest mein ho. Dusre kamre mein jaiye. Akele. Aapke parcel mein drugs mile hain. Lambe jayenge.
3: 10 lakh dijiye, bach jayenge.
4: Sir, itne kahan se?
3: Ek link bheja hai. Abhi processing ke liye
2: 2 lakh bhejiye. Baki baad mein.
4: Sir, 2 lakh.
5: Kya hua, papa?
4: Beta, ye keh rahe hain ki mere parcel mein se drugs mile hain.
2: Arre?
4: Kaat diya.
5: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है.
4: फ्रॉड?
5: पुलिस, बैंक, आरबीआई इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें. अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
4: तो पैसे गवाओगे.
6: आरबीआई कहता है,
7: जानकार बनिए, सतर्क रहिए.
8: फिल्म रॉकी का गीत सुनिए, लता मंगेशकर और किशोर कुमार के स्वरों में. गीत आनंद बख्शी का और संगीत आरटी परमन का.

0: पुलिस?
1: मिस सीमा
0: जी,
1: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए, वरना घर आ जाएंगे।
0: क्यों? लेकिन मैं
1: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
0: डिजिटल अरेस्ट?
1: 1 लाख दो, बच जाओगे।
0: इतने पैसे?
1: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
0: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
2: हेलो मम्मा।
3: RBI कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: आइए अब सुनते फिल्म सोहनी महिवाल का गीत आशा भोंसले और शब्बीर कुमार के स्वरों में।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम फिल्म संगीत। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्ज़ पर, डीआरएम चैनल 909 किलोहर्ट्ज़, एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ और मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर पर। प्रातः के 10 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम अनुरोध गीत।

रघुनाथपुर श्रीगंगानगर से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता हिना हर्षित और खुशी गोस्वामी, गांव खारियां सिरसा से प्रताप जिनागल इंदिरा मुकेश दिनेश और उनके साथी, गांव नथाना से हरजिंदर छिंदा जसवीर सीता और गीता, गंज गुंडवारा से मोहम्मद कलीम अंसारी जहीरा बेगम अंसारी मोहम्मद अयान मोहम्मद उस्मान अंसारी, सागर मध्य प्रदेश से चंद्रेश गौहर वंदना गौहर मन मयंक तन्वी और जयपाल यादव, हयात कॉलोनी बिहार से फैज अली इमाम मोहम्मद अफजल मोहम्मद अकमल और नफीसा प्रवीण, लीजिए सुनिए आपकी पसंद का ये नगमा।

आशा से। स्वर है मोहम्मद रफी के, गीत आनंद बख्शी का और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। पसंद आप सबकी। घरौंडा करनाल से विजेंद्र कुमार जयजान, कांता रानी, गुंजन, साहिल और वाणी जयजान। पालमपुर कांगड़ा से जगदीश राय गर्ग, अंजना रानी गर्ग, रवि शिल्पा गर्ग। सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा। अंबाला हरियाणा से रवि कुमार, राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश, प्रियंका, मन्नत, गुरकीरत और गुरशब्द सिंह राहुल। हिसार से सज्जन कुमार जांगड़ा, राजबाला, नवीन, मंदीप, प्रियंका, सपना, नीतू, कार्तिक और वेदांश जांगड़ा। लीजिए सुनिए आप सबकी पसंद का ये नगमा।

0: हेलो।
1: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
0: फिर से
2: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए, अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
3: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
0: सर इतने कहाँ से?
3: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए
2: 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
0: 2 लाख
4: क्या हुआ पापा?
0: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
2: अरे
0: काट दिया।
4: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
0: फ्रॉड?
4: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
0: तो पैसे गवाओगे।
5: RBI कहता है,
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: फिल्म गाइड का गीत सुनिए, लता मंगेशकर के स्वरों में गीत, शैलेंद्र का संगीत, ST बर्मन का और पसंद आप सबकी। गांव नाईवाला हनुमानगढ़ से वेद मिड्ढा, अलका मिड्ढा, रूपनगर से रजाक मोहम्मद, समीम बेगम, इमरान, इरफान और शहनाज, हरदोई से आलोक कुमार खरे और उनके साथी, ललितपुर उत्तर प्रदेश से कैलाश नारायण नामदेव, दीपक कुमार, द्रौपदी देवी, राम देवी, ब्रिजेश कुमारी, अखिलेश, लखनलाल, चाहना नामदेव, आकाश, रानी परी और उनके परिवार के सदस्य, बाभली से गजानन येले, नवदीप येले, विश्वदीप, अशोक लेले, भंजन उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार वर्मा, प्रीति कार्तिक, आर्यन वर्मा, हकीकतपुरा मऊ से मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी, आर्यन कृष्णा और पीहू स्वर्णकार, रायसिंह नगर से धनराज बाबू, सोहनलाल, जांगीर, चेतन, सारस्वा, प्रदीप, राजेंद्र कासनिया और देवीलाल कासनिया, पतरोड़ा से मंगल जनागल, राही रोशनी जनागल, अंकुर इंदु और सुनील जनागल, मोहाली चंडीगढ़ से TD मल्होत्रा, ऋतिक प्रतीक मल्होत्रा, चंडीगढ़ से ही अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, अमनदीप, कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज, डांगरी जैसलमेर से बाबूराम जयपाल, दिनेश चौहान। लीजिए सुनिए आप सबकी पसंद का ये नगमा।

0: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम,
1: जी
0: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
1: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
0: पर ये होगा कैसे?
1: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
0: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
1: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
0: बस
1: बस
0: समझ गया।
1: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: फिल्म हीरो का गीत सुनिए।

स्वर हैं रेशमा के, गीत आनंद बख्शी का, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का और पसंद आप सबकी। दुर्गा कॉलोनी, हंसी से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी, बब्बू डब्बू, रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, नलेश्वर नगर महाराष्ट्र से पीएस नवहानकर, निर्मला नवहानकर, विशाल मलाकपुर से नारायण इंगले, राजकुमार खर्चे, आशीष मुरहेकर, पदमपुर से मेहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा, कीर्ति भूमिका अरोड़ा, भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल ईशान छीपा और पूजा परिहार, कुंडलवाड़ी महाराष्ट्र से गंगाधर येमेकर, प्रमोद येमेकर, प्रदीप येमेकर, अरायण से बनवारीलाल जयपाल, बिमला सनु, ममता दिशा, मोक्ष सुशांत, विक्रम जयपाल, फाजिलका से अमन वर्मा, रमन, दिव्यांशु, मदनलाल वर्मा और उनके साथी, आसाम से हितेंद्र दास और नेपानगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर कुशल, नीति सुरभि, अश्विन मंगल, बेन और राजेंद्र शाह। आइए सुनते हैं आप सबकी पसंद का, फिल्म हीरो का ये नगमा।

0: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
1: आरबीआई कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: तो सुना संदेश, कार्यक्रम अनुरोध की आप आकाशवाणी के कॉटन चिटी चैनल सूरतगढ़ से सुन रहे हैं। कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म दो रास्ते से। गीत आनंद बख्शी का, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। पसंद आप सबकी। संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति ओजस्वी यादव। सांगली से हनुमंत शिंदे, संगीता ऋषिकेश और वसुंधरा। भोपालगढ़ जोधपुर से घनश्याम सिंह चौधरी, अंकित सिंह चौधरी। खंडवा से दुर्गा प्रसाद सैनी, अनीता सैनी, गौरव ईशान, कार्तिक सैनी। छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी, हरमिंदर चावला।

शिव कुमार शर्मा, लोकेश जोशी, बेबी वैदेही, बेबी जहंसिका और अंकिता जोशी, बिजनौर से वक्कार अफरीदी, इकबाल, सितारा, नसरीन, रोज़ी, बिट्टू, साजदा और हिना कौसर, गांव जाखौद से शंभुदयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत सुंदरलाल, योगेश कुमार, दीपक कौर, कुमारी पूजा खटक, अनूप शहर से गजानंद सारस्वत, ताराचंद, सोनू, पवन कुमार, साहिल, राघव, मुरारीलाल शर्मा, ममता, मीनू, कीनू, अक्षय, आईना, ज्योति और उनके परिवार के सदस्य। लीजिए सुनिए आपकी पसंद का ये नगमा।

फिल्म संग्राम का गीत सुनिए, अलका याग्निक के स्वरों में। गीत समीर का, संगीत नदीम श्रवण का। गीत को सुनने के लिए हमारे पास फरमाइश आई है संबलपुर कांकेर से फागुराम। और उनके साथी सिरसला चुरू से संदीप सिंह सोनगरा, प्राची कुसोमल कार्तिक सोनगरा, झुंझुनू से नेकीराम रेवाड़, चुरू से राजा नंदवानी, सरदार शहर से अंबिका भाटी, राजगढ़ से संदीप स्वामी, रामसरा चुरू से सचिन चौहान और रतनगढ़ से प्रकाश राणा, टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, सोनाली सोनम और आशीष विश्वकर्मा, अलीकां डब्बाली से रूप सिंह लखोत्रा, करमजीत सरबजीत, सोनू रजनी और रानी, बिलासपुर छत्तीसगढ़ से मुकेश गोस्वामी, मधु आशी शिवन्या और अन्नू गोस्वामी, बीकानेर से अशोक कुमार शाही, संतोष शाही, राजश्री गौरव और उनके साथी, खोखरावाली से विनोद बरासा, विशाल विकास रोशनी और शगुन बरासा। लीजिए सुनिए आपकी पसंद का ये नगमा।

हम आपके हैं कौन। आइए इस फिल्म से लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यम को सुने। गीत देव कोहली का और संगीत राम लक्ष्मण का। पसंद आप सबकी। बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा, अमित कुमार, हैप्पी राय। गाजीपुर से प्रतीक रोशनी और प्रांजल राय। ढणी लाल खां से जावेद खान, अरमान खान, निर्माण, सीमा बानो, विनोद और उनके साथी। मेरठ

कैंट से दिग्दर्शन और कविता। नाभा पंजाब से सोमदत्त, कैरव ज्योति, गुरमंत कौर, मन्नु और उनके साथी। नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से कीर्तनपुरी लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी ट्विंकल टिम्पल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी। लीजिए, सुनिए आपकी पसंद का ये नगमा।

कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं फिल्म डर का नगमा। उदित नारायण के स्वरों में गीतानंद बख्शी का संगीत, शिवहरि का पसंद, आप सबकी चंडीगढ़ से सतीश अनेजा, बिमला अनेजा, फाजिलका से ओम बगड़िया, क्रियांश योगेश, रजत बेबी, गरिमा बगड़िया, मलोट से रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी, गगनदीप आरजू और गुड्डू, डब्बाली से राजेंद्र नारंग, अंजू मोहित, तानिया नारंग, मधुबनी बिहार से अरविंद कुमार, गुड़िया भाव्या नवेश और नीति, सोलापुर महाराष्ट्र से गणेश लौंडे, आम्रपाली लौंडे और आरव, फ्रांसी हिसार से राजकुमार डूडी, प्रफुल्लेंद्र कुमार डूडी और प्रमोद कुमार डूडी, गांव कलाना भादरा से विक्रम कड़वासरा, सचिन सतीश योगेश युद्धव कुंदन जाखड़ लीलाधर स्वामी, कृष्ण मायल, किरडूराम जोया, हनुमान सारण और सुनील पाईवाल, जलालाबाद से सुरेश गगनेजा, पूनम विशाल, प्रिया दिशानी और निमित्त आहूजा, हनुमानगढ़ से सुल्तान सिंह तरड़, कृष्ण मुकेश रामचंद्र, कपिल देव, कांता चौधरी और उनके साथी, सिरसा से बलवंत जाखड़, ममता जाखड़, नैना हिमानी, शिवम जाखड़, हरिद्वार

ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर और महराज जहां। उमरखेड़ महाराज से अभिजीत, सरिता, प्रणीता, सिद्धांत और अर्जुन गम्हाणकर। नागपुर से वैशाली, शैलेश, सुमित और ध्वनि, प्रिंस एकांश गम्हाणकर। लीजिए सुनी आपकी पसंद का ये नगमा।

अभी आप फरमाइशी फिल्मी गीतों का ये प्रोग्राम सुन रहे थे। आकाशवाणी सूरतगढ़ का ये कॉटन सिटी चैनल है। मीडियम वेव 326.79 अर्थात 918 किलोहर्ट्ज़, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और DRM चैनल 909 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। दिन के 11 बजे हैं। आइए सुने फिल्म संगीत।

सभी सुनने वालों का नमस्कार, अपने साथी संजय बैद की ओर से। मित्रों, आज का फिल्म संगीत का ये प्रोग्राम लेकर हम आपके बीच उपस्थित हो चुके हैं और आज के इस प्रोग्राम की एक विशेषता जो हम आपके साथ साझा करना चाहते हैं वो ये कि आज के इस प्रोग्राम में हम आपके लिए कुछ ऐसे फिल्मी नगमे लेकर आए हैं जो किसी शास्त्रीय राग पर आधारित है। यूं तो आम श्रोता किसी शास्त्रीय संगीत को सुनने से थोड़ा सा परहेज रखता है क्योंकि वो उसकी समझ में शायद ना आए, लेकिन हमारे बॉलीवुड में ऐसे हजारों गीत हैं जो शास्त्रीय रागों पर बने हैं और हमें उस बात का एहसास तक नहीं है। उन गीतों को हम रोज सुनते हैं, गुनगुनाते हैं, पसंद भी करते हैं, बार बार सुनना भी चाहते हैं, लेकिन हमें यह मालूम नहीं कि वो किस राग पर आधारित है। तो आज के इस प्रोग्राम में कुछ ऐसे नगमे आपकी नजर करेंगे जो राग खमाज पर आधारित हैं। राग खमाज शास्त्रीय संगीत का एक ऐसा श्रृंगार प्रधान राग है जिस पर अनेकों कालजयी सुंदर सुमधुर गीत बॉलीवुड में रचे गए हैं। कहने को तो ये राग रात्रि के पहले प्रहर में गाया जाता है, यानी रात्रि 9 बजे से लेकर 12 बजे तक, लेकिन प्रोग्राम आज दिन का है और इस राग के गीतों को हम आपके साथ साझा करना चाहते हैं, इसलिए दिन में 12 बजे तक ये गीत हम आपको सुनवाएंगे। राग खमाज खमाज घाट का एक प्रमुख आश्रय राग है जो अपनी मंधुर, चंचल और श्रृंगार रस की प्रकृति के लिए पहचाना जाता है। यह राग मुख्य रूप से अर्धशास्त्रीय संगीत जैसे ठुमरी, टप्पा और गजल में लोकप्रिय हैं। इस राग में आरोह में रे वर्जित है और नी कोमल का प्रयोग किया जाता है और अवरोह में सभी स्वर इसमें लगते हैं। राग एक चंचल राग है, श्रृंगार रस से भरा है और इसके गीतों में मधुरता रहती है। मुख्य रूप से ये विरह और मिलन दोनों प्रकार के श्रृंगार रस के लिए आदर्श माना जाता है। इस राग में अक्सर कोमल और शुद्ध दोनों निषाद का प्रयोग करके राग को और अधिक आकर्षक बनाया जाता है। खैर, राग के बारे में ये संक्षिप्त सी चर्चा आपकी जानकारी के लिए, और अब चलते हैं फिल्म संगीत की दुनिया में मिली फिल्म के इस गीत के साथ जिसे गाया किशोर कुमार ने योगेश की बोलों को, संगीतबद्ध किया SD बर्मन ने। यह फिल्म मिली 1975 में आई थी और गीत जया बच्चन अमिताभ बच्चन पर फिल्माया गया।

आर डी बर्मन के संगीत निर्देशन में सुनिए आनंद बख्शी का लिखा गीत। इस गीत को गाया किशोर कुमार ने और फिल्म का नाम है अमर प्रेम। ये गीत फिल्माया गया राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर पर। ये फिल्म आई थी 1972 में।

राग खमाज पर आधारित कार्यक्रम का अगला नगमा फिल्म आरजू से, जिसे गाया लता मंगेशकर ने। ये फिल्म आई थी 1965 में, जिसमें अभिनय किया साधना के साथ राजेंद्र कुमार ने, गीत को लिखा हसरत जयपुरी ने और इसकी प्यारी सी धुन तैयार की शंकर जयकिशन ने।

हेमंत कुमार के साथ अब हम आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर को फिल्म अनारकली में। ये गीत लिखा राजेंद्र कृष्ण ने, संगीत सी रामचंद्र ने तैयार किया और गीत फिल्माया गया था बीना रॉय के साथ प्रदीप कुमार पर। फिल्म आई थी 1953 में। सुने राग खमाज पर आधारित अनारकली फिल्म का ये गीत।

लता मंगेशकर को सुनिए, आर डी बर्मन के संगीत निर्देशन में बोल गुलजार ने लिखे ये गीत फिल्माया गया रेखा और विनोद मेहरा पर। 1978 में फिल्म आई थी जिसका नाम था घर।

मनोज कुमार और साधना पर फिल्माया गया 1967 की फिल्म अनिता का गीत हम आपको सुनवाते हैं, मुकेश का गाया हुआ। बोल के राजा मेहदी अली खान ने, संगीत तैयार किया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल में।

0: जन जन का रखे ध्यान टीबी मुक्त भारत अभियान, जन जन का रखे ध्यान टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: कार्यक्रम का अगला गीत आशा भोंसले का गाया हुआ, फिल्म का नाम काला पानी। गीत को लिखा मजरूह सुल्तानपुरी ने, संगीत तैयार किया सचिन देव बर्मन ने। मित्रों, ने फिल्म आई थी 1958 में, जिसमें अभिनय किया था इस गीत में देवानंद और नलिनी जयवंत ने।

तो फिल्म संगीत प्रोग्राम में आ जाए आप। शास्त्रीय राग खमास पर आधारित फिल्मी नगमे इस समय आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से अपने साथी संजय बैद के साथ सुन रहे हैं। कार्यक्रम का अगला गीत हमने चुना है फिल्म परख से, जो फिल्माया गया साधना और वसंत चौधरी पर। 1960 में आई इस फिल्म का संगीत तैयार किया सलील चौधरी ने और गीत के बोल लिखे शैलेंद्र ने। गीत को आवाज दी लता मंगेशकर ने।

सन 1965 में आई गाइड फिल्म का गीत हम आपको सुनवाते हैं जो देवानंद के साथ वहीदा रहमान पर पिक्चराइज किया गया। इस गीत को गाया लता मंगेशकर ने, बोल शे

लंदर ने लिखे और संगीत तैयार किया एस डी बर्मन ने।

राग खमास पर आधारित कार्यक्रम का अगला नगमा फिल्म अभिमान से, जिसे गाया किशोर कुमार के साथ लता मंगेशकर ने और पर्दे पर अभिनय किया, इस फिल्म में अमिताभ बच्चन, जया भादुरी, असरानी और डेविड ने। ये फिल्म आई थी 1973 में, जिसके गीत मधुरू ने लिखे और संगीत एक बार फिर से एस डी बर्मन का।

अब हम आपको सुनवाते हैं 1971 में बनी फिल्म बुड्ढा मिल गया का गीत, जिसे गाया मन्ना डे के साथ अर्चना ने और अभिनय भी किया अर्चना और ओम प्रकाश ने, संगीत आर डी बर्मन का और बोल लिखे मधुरू सुल्तानपुरी ने।

संगीत एक बार फिर से एस डी बर्मन का, बोल शैलेंद्र के, आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की और फिल्म का नाम काला बाजार। ये फिल्म आई थी 1960 में और ये गीत फिल्माया गया देवानंद के साथ वहीदा रहमान पर।

मैं लता मंगेशकर को, बोल शैलेंद्र के संगीत शंकर जयकिशन का। फिल्म आई थी 1966 में और गीत फिल्माया गया अभिनेत्री वैजयंती माला पर।

अभी आप फिल्म संगीत में राग खमास पर आधारित फिल्मी नगमे अपने साथी संजय बैद के साथ सुन रहे थे। दिन के 12 बज चुके हैं और अब ये प्रोग्राम संपन्न होता है। अब जान लेते हैं हमारे केंद्र से आज प्रसारित किए जाने वाले शेष कार्यक्रमों की जानकारी और उनका प्रसारण समय। अब से थोड़ी देर बाद प्रोग्राम होगा कुछ बातें कुछ गीत 12:05 पर। कुछ गैर फिल्मी गजलें आप सुन पाएंगे भूपेंद्र और मिताली सिंह की गाई हुई। सुगम संगीत प्रोग्राम में दिन में 12:30 से लेकर 12:50 तक। 12:50 पर

आज खेत खलियान कार्यक्रम में किसान भाइयों के लिए जानकारी का विषय रहेगा पीएसबी कल्चर। दिन में 1:05 पर महिला जगत कार्यक्रम में आज महिलाओं के लिए चर्चा के विषय रहेंगे, गर्मी में ऑयली स्किन की देखभाल कैसे करें, ब्लड प्रेशर को कैसे कंट्रोल करें, इंडोर प्लांट्स बेस्ट प्यूरीफायर, और साथ ही जानेंगे गर्मी में गन्ने के जूस के फायदों के बारे में। फिल्म संगीत आप सुन पाएंगे दोपहर 2:30 से लेकर 3 बजे तक। 3 बजे से लेकर 4 बजे तक आप सुनेंगे हमारे उर्दू सर्विस के कार्यक्रम। चूंकि आज गुरुवार का दिन है और आज 4 बजे से लेकर 5 बजे तक आप सुना करते हैं फौजी भाइयों का कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर। शाम 5 बजे युवा साथियों के लिए उनका दैनिक कार्यक्रम होगा युववाणी। आज चर्चा के विषय रहेंगे सबका साथ सबका विकास, प्लास्टिक मुक्त भारत, मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता, जानेंगे फिट इंडिया मूवमेंट के बारे में और साथ ही जानेंगे आज के इतिहास को। सरायकी का समय रहेगा शाम 6:05। शाम 7 बजे चौपाल कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाएंगे एक राजस्थानी कहानी आम पुच्छ। लेखक होंगे विनोद स्वामी। साथ ही जानेंगे घर पर वर्मी कंपोस्ट बनाने के तरीकों के बारे में और जानकारी दी जाएगी एनपीके और सूक्ष्म पोषक तत्वों की। साथ ही होंगे गीत भजन और बाजार भाव। फिल्म संगीत आप सुन पाएंगे शाम 7:45 पर। कार्यक्रम होगा एक ही फिल्म से आज रात 8 बजे से लेकर 8:30 तक। 9:15 पर आप सुनेंगे गजलों का कार्यक्रम सुगम संगीत। रात 9:30 पर कंट्री वाइड और इनसाइट समसामयिक विषयों पर यह कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। आज रात 10 बजे कार्यक्रम विज्ञान पत्रिका हमारे जयपुर केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा। शास्त्रीय संगीत आप सुन पाएंगे रात 10:30 पर। ये थी जानकारी हमारे केंद्र से आज प्रसारित किए जाने वाले शेष कार्यक्रमों की।

मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्स, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्स, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर और डीआरएम चैनल 909 किलोहर्ट्स पर आकाशवाणी सूरतगढ़ का ये कॉटन सिटी चैनल है। दिन के 12:05 हुए हैं, कार्यक्रम सुनते हैं कुछ बातें कुछ गीत। दोस्तों, इस समय मई का महीना चल रहा है और खास तौर पर मई और जून के महीने को लू की दृष्टि से संवेदनशील महीने माने जाते हैं, यानी इन महीनों में यदि सावधानी ना रखी जाए तो लू यानी तापाघात से ग्रस्त होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इन दिनों में तापमान लगभग 45 डिग्री से ज्यादा ही रहता है और देश के कई हिस्सों में ये 49-50 तक भी पहुंच जाता है और ऐसे

गर्मी के मौसम में यदि सावधानी ना रखें तो भी लू लगते देर नहीं लगती। जब भी हमें घर से बाहर निकलना हो तो कोशिश करें कि दिन और शाम के समय निकलें, दोपहर में बाहर निकलने से थोड़ा परहेज रखें। यदि किसी वजह से बाहर निकलना भी पड़े तो मुंह को और सर को अच्छी तरह से ढांप कर रखें। जो हमारे बुजुर्ग हैं या जो हमारी गर्भवती बहनें हैं उन्हें किसी भी सूरत में इस मौसम में बाहर निकलने से बचना चाहिए। जब भी घर से बाहर निकलें तो पानी पीकर निकलें। एकदम से कम तापमान से ज़्यादा तापमान में ना आए और ज़्यादा तापमान से भी तुरंत कम तापमान में ना जाएं, यानी सीधे एसी से निकल धूप में ना जाएं और घर में घुसते ही एसी की शरण ना लें। तापमान का जो ये उतार चढ़ाव है ये हमारे शरीर को बीमार कर सकता है, लेकिन फिर भी किसी के लिए तो धूप में निकलना ही पड़ता है, चाहे वो परिवार हो, आपका रोजगार हो या कोई और जरूरी काम। लेकिन बचाव वो सबसे ज्यादा आवश्यक है।

दोस्त, आज बात कर रहे हैं लू से बचाव के तरीकों के बारे में। हम आपसे बता रहे हैं कि धूप में बाहर निकलने से परहेज करें, और यदि निकलना ही पड़े तो साथ में एक पानी की बोतल पास में रखें जिसमें ठंडा शीतल जल हो, और ORS का घोल या नींबू पानी का शरबत अपने पास में रखें, ताकि जब भी आपको प्यास लगे या कोई असहजता महसूस हो तो आप उस घोल का सेवन कर सकें। गर्मी के मौसम में ख्याल रखें कि ढीले ढाले कपड़े पहन कर बाहर निकलें, और जहाँ तक हो सके चटक या गहरे रंगों के स्थान पर हल्के रंगों के या सफ़ेद वस्त्रों का ही चयन करें, क्योंकि ये जो सफ़ेद वस्त्र हैं, ये जो सूर्य की किरणें हैं उन्हें ज़्यादा अवशोषित नहीं करते, इसलिए इन कपड़ों में गर्मी भी कम लगती है। और यदि धूप में किसी मजदूर भाई को काम करना भी पड़े तो या तो वो धूप के समय तेज, गर्मी के समय थोड़ा आराम कर लें, उस काम को वो शाम के समय भी कर सकता है, या किसी ऐसे छायादार स्थान पर काम करें, और जो बाहर का काम है वो सुबह या शाम के समय करने का प्रयास करें। सर को तो ढांप के आपको रखना ही रखना है, सीधी सूर्य की रोशनी से बचाव भी आपको करना है, तभी आप लू के प्रकोप से यानी तपाघात से बच सकते हैं। सफ़र हमेशा चलता रहता है, वक्त कभी थमता नहीं है। आवश्यकता है सावधानियों की, परहेज की, और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखने की।

मित्र, यदि आपको लगे कि आपको तेज बुखार है, चक्कर आ रहे हैं या बेहोशी सी छाने लगती हैं, उल्टी या मतली आपको महसूस होती है, सर में दर्द होने लगता है, त्वचा लाल होने लगती है या शुष्क लगने लगती है, तो ये लू के लक्षण हो सकते हैं। ऐसे में उस प्रभावित व्यक्ति को

छाया में लेटाएं, कपड़े उसके ढीले कर दें, शीतल जल के छींटे उसको दें, उसको पानी पिलाएं और शरीर को ठंडे और गीले कपड़े से पोंछें। ORS का घोल उसे तुरंत दें और उसके बाद जो भी आपका नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ उसको लेके जाएं, ताकि ये जो लू है वो हमारे लिए जानलेवा ना सिद्ध हो सके। लू से जो बचाव है वही सबसे बेहतर उपाय हैं। यदि हम लापरवाही करेंगे, लू से बचने के तरीकों का ध्यान नहीं रखेंगे, तो हमारे स्वास्थ्य के लिए ये खतरा भी पैदा कर सकती है।

मित्रों, विभाग ने भी ये चेतावनी दी है कि इस बार सुपर अलनीनो का प्रभाव रह सकता है, जिसकी वजह से हो सकता है कुछ बारिश में कमी आए और तापमान में कुछ बढ़ोतरी भी हो सकती है। तो ऐसी ही मौसम विभाग की चेतावनियों को ध्यान में रखते हुए अपनी दिनचर्या को उसी अनुरूप ढालें। ज़्यादा से ज़्यादा

देसी पेय जैसे छाछ है, राबड़ी है, नारियल पानी है, इनका सेवन करें। प्याज भी आपको लू लगने से बचा सकता है। कॉफी, चाय या जो गरम तले भुने खाद्य पदार्थ हैं वो ना खाएं। घर से जब भी बाहर निकलें, पानी पी कर निकलें, नंगे सर कभी भी घर से बाहर ना निकलें, चेहरे पर सनस्क्रीन का प्रयोग करें और एक जहां तक हो सके रंगीन चश्मा पहनकर घर से निकलें, ताकि आंखों को भी हम तेज धूप से बचा सकें और एक क्रीम के द्वारा अपने चेहरे को बचा सकें, क्योंकि जो सूर्य की किरणें हैं वो हमारी त्वचा को नुकसान भी पहुंचाती हैं और हमारे रंग को भी काला कर देती हैं।

कुछ बातें कुछ गीत। अभी आप ये कार्यक्रम सुन रहे थे। आकाशवाणी सूरतगढ़ का ये कॉटन सिटी चैनल है। मीडियम वेव 326.7 किलोमीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज़ पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के 12:30 हुए हैं। आइए सुने गैर फिल्मी गजलों का प्रोग्राम सुगम संगीत। आज कलाकार हैं भूपेंद्र सिंह और मिताली सिंह। पहले सुने मिताली सिंह की आवाज में ये गजल।

0: मिताली सिंह के स्वर में अभी आपने कतिल शिफाई का कलाम सुना। खत उसको बार बार लिखो, इल्तिजा करो, फिर भी वो न आए तो खुदा से दुआ करो। इस गजल के साथ ही आज का ये सुगम संगीत का कार्यक्रम अब संपन्न होता है। मीडियम वेव 326.7 किलोमीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और डीआरएम चैनल 909 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी सूरतगढ़ का ये कॉटन सिटी चैनल है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के 12:50 होने वाले हैं। ये समय है किसान भाइयों के कार्यक्रम खेत खलियान का। आज के कार्यक्रम में जानकारी का विषय है PSB कल्चर। आइए सुने कार्यक्रम खेत खलियान।
1: खेत खलियान सुनिए सगले किसान भैया ने सुनील भाई और शू मोकली मोकली राम राम। किसान भाइयों, खेत खलियान में आज बात करें आप जीवाणु खाद के बारे में। जीवाणु खाद या राइजोबियम कल्चर है, एजेंटोबैक्टर है या PSB है, ये सारी जीवाणु खाद ना है। तो आज बात करा PSB कल्चर के बारे में। PSB कल्चर को पूरा नाम है फास्फोरस सोलुबलाइजिंग बैक्टीरिया। वो कल्चर जो है किसान भाइयों बहुत ही कामगो है और अपने खातर बहुत ही फायदेमंद है। जक्का किसान भाई मान लो रासायनिक खाद कम करके जमीन की ताकत बढ़ानी चाहे, वहाँ खातर वो रामबाण को काम करे। तो पहला आप बात करा भी

वो है कि चीज पीएसबी के वैज्ञानिक है। पीएसबी को पूर्व नाम था नबताइडियो बिफास्फोरस सोलुबलाइजिंग बैक्टीरिया है। आ एक जीवाणु खाद है। अपनी जमीन में किसान भाइयों की फास्फोरस घणो ही हुए पर वो किए पत्थर तरिया जमे डोरे हुए जका पौधा किए सीधा ले कौन सके। पीएसबी कल्चर का जका जीवाणु है इन जमेड़े फास्फोरस ने किए घुलनशील बना दिए और पौधा बन किए जड़ के द्वारा आसानी से ले सके। बात करा

बहुत ही सस्ती हुए, रासायनिक खादों की तुलना में अपनों खर्चो कम लागे, खेती पर जो खर्चो लागे वो कम हुए तो अपनों मुनाफो बदे। तो ई खातर आपने पीएसबी कल्चर को उपयोग करना चाहिए। दूसरी फायदो ओ है कहीं शू अपने जकी खात है बिंगी बहुत ही बचत हुए। जे आप पीएसबी कल्चर को लगातार उपयोग करांगा तो अपने जी डीएपी है सुपर है तो आंगी मात्रा आपने 20-25% तक आप कम कर सकां। यानी सीधो सीधो बात है जे मान लो दो गट्टा जी गेरा तो बट्ठा आप पौने गट्टों काम चला सकां। तो अपन देखो कितो फायदा जो अपने मान लो खाद की बचत होएगी तो अपन के एक तो बाजार पर ज़्यादा निर्भर कौन रहना पड़े और अपनी जकी जेब शूँ के पिसो टक्को भी कौन लागे तो आपने बहुत फायदा हुए। दूसरो फायदो वो है कि जमीन जो सुधार है वो इशू बहुत बढ़िया हुआ इशू की है जमीन अपनी पोली बनी रहे उपजाऊ बने बिंगी उर्वरा शक्ति है जकी भी में बढ़ोतरी हुए और बापा ने लंबे टाइम तें किए उत्पादन देश के और के है कि जो जड़ांग विकास है पौधे को वो भी बहुत बढ़िया हुआ इशू की है जड़ा एक तो मजबूत बने और माटी जब पोली हुए तो बे किए दूर तें फैल जाए तो दूर तें फैलें तो बे किए दूर की नमी भी ले सके और फसल में किए सोखो को नहीं आवे बिंगी बढ़वार अच्छी हुए और बाहर दम लहर लानती रहे तो अपना उत्पादन भी अच्छा हुए। और सागे पीएसबी कल्चर को अपन जो लगातार उपयोग करा तो बढ़वार अच्छी हुए और सागे दाना जका है फसल का बेचमकीला हुए भारी बने वागो वजन बढ़े तो वो भी अपने एक बहुत ही मोटो मुनाफो है। अब आप बात करा भाई देखो इन्हें आप के तरियाँ काम में ले सका तो पीएसबी कल्चर ने आप तीन तरीका शू काम में ले सका। पहलो तरीको है किसान भाइयों बीज गए उपचार के रूप में देखो सब शू बढ़िया तरीको है। तो आप ने इस रुकी है आधा लीटर पानी में 250 ग्राम गुड़ घोल के फिर भी ने उबाल लेना चाहिए ताकि गुड़ा को पूरा घुल जाए फिर बाद में भी ने ठंडो होने खातर रख दिए और इनमें 200 मिलीलीटर पीएसबी गो तरल या पैकेट पाउडर को जो है वो आप मिला दें और अभी गोलना पा बीजा के ऊपर छिड़का और हाथ से मिला दें तो इनके ऊपर की बीजा पर पतली पतली परत बन जाए तो इन त्रियाँ आप बीजा उपचार कर सका और बीजा ने छिया में सुखा के बाद में आप बीजाईगत रूप में काम में ले सका। तो इन त्रियाँ जो आप बीजा उपचार करके पीएसबी वही करांगा तो एक तो किए उगाओ बढ़िया होगा और फसल में जहाँ कई तरीके का रोग लग गए कीट पतंगा भी लग गए बाँसों भी आपने बचा होगा। दूसरा तरीको है जड़ उपचार के द्वारा जड़ उपचार जकी जकी मान लो कई फसलों की पौध लग गए जहाँ मिर्च है टमाटर है प्याज है जी आप ये लगावा तो एक बाल्टी गवा की है पीएसबी कल्चर मिला लेना चाहिए और पौधा की जड़ा ने 20-30 मिनट तक इन गोल में डुबो के रखना चाहिए और बाद में शाम के टाइम की है खेत में लगा देना चाहिए तो वो भी एक बहुत ही बढ़िया तरीको है। तीसरा तरीको है किसान भाइयों सीधो खेत में नाखनो तो इन सरों की है 50-1 क्विंटल तई सड़ी गली अच्छी जो कि गोबर की खाद है बिंगो आपन चुनाव करना चाहिए और 1-2 लीटर पीएसबी कल्चर में मिला के 2-3 दिन तीन की अच्छियाँ में रख देना चाहिए और बाद में किए खेत की माटी में छिड़क गए और हर चला के भी मैं मिला देना चाहिए तो इशू भी आप पीएसबी कल्चर को उपयोग कर सका। अब आप बात करा किसान भाइयों भी आप उपयोग करते टाइम के बातों को ध्यान रखा तो पीएसबी कल्चर ने हमेशा ठंडी और छाया वाली जगह पर रखना चाहिए क्योंकि तेज तावड़ो जब पड़े तो इनका जो जीवाणु है वे निष्क्रिय हो जाए और आपने पूरा फायदा कौन मिले और आका जो बीजोपचार के रूप में काम में लेवा तो कीटनाशक के उपचार के पाछे ही बीजोपचार करना चाहिए और कल्चर की जो एक्सपायरी डेट है वह जरूर देखनी चाहिए। मियाद टपड़ो अपन समान कभी भी उपयोग में नहीं लेना चाहिए और धूप में वो काम को नहीं करे तो इन वास्ते बुआई या उपचार हमेशा किए शाम के टाइम करना चाहिए। तो आ तरीकों को आ बातों को अपने ध्यान में रखना चाहिए। अब बात करा आप भी अपने बनावा कि हाँ तो किसान भाइयों आप इन्हें घरे कौन बना सका क्योंकि वो वैज्ञानिकों द्वारा तैयार करो जाए और प्रयोगशाला में तैयार हुए इनको आप पैकेट जो है बाजार से खरीद सका और भी ने काम में ले गए गुड़ में घोला और बिंगो जो कि

0: τρα έμεινε με δάσκα. Το ίσαρου απανικιέ PSB culture जो घोल तैयार करना है तो 10-15 दिन पहला जब पाऊँ घोल बना के तैयार रखा और खेत में मिलावा तो बहुत ही असरकार को है। तो इन सारू अपन ने 1 लीटर तो PSB लिक्विड कल्चर की जरूरत पड़े। दूसरी चीज़ है काड़ू गुड़ जो को 2 किलो लेना है। तीसरी चीज़ है पानी 200 लीटर पानी एक मोटो ड्रम जो को है वो लेना चाहिए। और चौथी चीज़ है बेसन जिसको 1 किलो आप लेना चाहिए। तो इन सारे सामान ने क्या छतरियाँ मिला के रखना चाहिए। पानी और गुड़ को घोल तैयार करने से पहले अपने 200 लीटर पानी चूँ भर प्लास्टिक के ड्रम में 2 किलो गुड़ ना छतरियाँ घोल देना चाहिए। और बिंग पास की है 1 किलो बेसन मिलार बिने अच्छी तरह हिलाना चाहिए ताकि भी में कोई गांठ न रेवे। तीसरो अभी ड्रम में 1 लीटर PSB लिक्विड कल्चर रख देना चाहिए। अपन के ड्रम ने जांटी या कोई छियादार स्थान पर डग्गे रखना चाहिए ताकि सीधी दकी धूप पेंग ऊपर न पड़े। और रोज़ सुबह शाम एक लकड़ी छू घोल ने 2-3 मिनट तक घुमाना चाहिए। ईशू की हवा जकी अंदर जाएगी तो जीवाणुओं की संख्या में बढ़ोतरी होगी तो अपने बढ़िया गोल तैयार होगा। और 7-10 दिन तक ड्रम में झाग जदान लाग जाए तो 20 टाइम इन्हें काम लेना चाहिए। आप काम लेने का तरीके की बात करें तो सिंचाई का सागर देश का जहाँ जब खेत में आप पानी लगावा तो ड्रम में एक छोटी टूटी लगा उन्हें पानी में सग चलानी चाहिए। और स्प्रे भी आपेंगी कृषकों जहाँ सीधी खड़ी फसल में कृषकों या जमीन पर भी आप कृषकों जे आप जीवाणु बनाने को तरीको को नहीं जाना तो आपने कोई जगह अनुभवी किसान है बांगी आपने सहायता लेनी चाहिए। और ज़्यादा ज़्यादा आपने की है जीवाणु खाद को प्रयोग करना चाहिए। जो किसान भाई ज़्यादा ही जीवाणु खाद को प्रयोग करेगा तो एक तो किए खर्चो कम लगेगा सागर जमीन की ताकत बढ़ेगी उत्पादन भी अच्छा होगा। तो इन तरियाँ जे PSB कल्चर को आप इस्तेमाल करांगा तो आपने ज़्यादा ज़्यादा फायदा होगा। तो किसान जाने ज़्यादा ज़्यादा आपकी खेतों में जीवाणु खाद को प्रयोग करना चाहिए रासायनिक छू बचना चाहिए ताकि अपनी माटी है बिंगो स्वास्थ्य बनो रहे और बापा ने लंबे टाइम तक उत्पादन दे सके। तो आज गए खतर इतो ही अब सारे सुनील भाई ने दिवा गया राम राम सा राम राम।
1: खेत खिलान कार्यक्रम में अभी किसान भाइयों को PSB कल्चर के बारे में जानकारी दी गई। आकाशवाणी सूरतगढ़ का ये कॉटन सिटी चैनल है। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन का 1 बजने वाला है। अब से कुछ ही देर में हिंदी में प्रादेशिक समाचार हम अपने जयपुर केंद्र से रिले करेंगे। कृपया समाचारों की थोड़ी सी प्रतीक्षा करें।

नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नागौर और जोधपुर जिले के दौरे पर हैं। जोधपुर पहुंचने पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उनकी अगुवाई की। मुख्यमंत्री के साथ केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी मौजूद रहे। इसके बाद श्री सिंह नागौर के मेड़ता सिटी पहुंचे। उन्होंने वहां मेड़ता के संस्थापक राव दूदा की 15 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। इसके बाद रक्षा मंत्री जनसभा को संबोधित करेंगे। रक्षा मंत्री वापस जोधपुर जाएंगे। वे वहां रातानाड़ा में पूर्व उपराष्ट्रपति और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत की प्रतिमा अनावरण समारोह में भाग लेंगे। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े आज डूंगरपुर जिले के प्रवास पर हैं। राज्यपाल बोरी स्थित गुरुकुल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन संस्थान पहुंचे। वहां वे पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत आयोजित महिला प्रशिक्षणार्थियों के कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। उनका जनजाति क्षेत्र में कौशल विकास और महिला

0: सशक्तिकरण पर केंद्रित आशीर्वाद समारोह में भी शिरकत करने का कार्यक्रम है। राज्यपाल और कुलाधिपति हरिभाऊ बागड़े ने एक आदेश जारी कर प्रोफेसर कैलाश डागा को उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के कुलगुरु पद पर और प्रोफेसर मदन सिंह राठौड़ को भरतपुर के महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय के कुलगुरु पद पर नियुक्त किया है। श्री बागड़े ने राज्य सरकार के परामर्श से ये आदेश जारी किया। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा में कथित पेपर लीक मामले में चार मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान मांगीलाल बिवाल, दिनेश बिवाल, हरियाणा निवासी यश यादव और विकास के रूप में हुई है। चारों को जयपुर से गिरफ्तार कर कल मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। बाद में उन्हें ट्रांजिट रिमांड पर लेकर पूछताछ के लिए दिल्ली भेज दिया गया। जांच अधिकारियों के अनुसार आरोपी यश यादव और विकास ने पहले सीकर जिले के एक कोचिंग सेंटर में साथ में पढ़ाई की थी। सीबीआई अब कोचिंग संस्थानों, बिचौलियों, छात्रों और आरोपियों से जुड़े अन्य व्यक्तियों के बीच संभावित संबंधों की जांच कर रही है। इस बीच जांच का दायरा और बढ़ गया है। एजेंसी उन आरोपियों के परिवार के सदस्यों और रिश्तेदारों की भूमिका की भी जांच कर रही है, जिन्होंने हाल ही में नीट परीक्षा उत्तीर्ण की और मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश प्राप्त किया है। सीबीआई की एक टीम सीकर में और नेटवर्क से जुड़े कई लोगों से पूछताछ कर रही है। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की दो दिन की बैठक आज से नई दिल्ली में शुरू हुई। इसकी अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर कर रहे हैं। बैठक में ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्री और सदस्य तथा भागीदार देशों के शिष्टमंडल प्रमुख भाग ले रहे हैं। भारत की अध्यक्षता में आयोजित इस वर्ष का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण। इस अवसर पर विदेश मंत्री ने कहा कि तकनीकी प्रगति वैश्विक परिदृश्य को नया आकार दे रही है और इसका उपयोग सुशासन तथा समावेशी विकास के लिए किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ सहयोग मजबूत करने को लेकर भी साझा हित जुड़े हैं। डॉ. जयशंकर ने भागीदार देशों को उनकी उपस्थिति और सहयोग मजबूत करने की उनकी प्रतिबद्धता के लिए धन्यवाद दिया। भरतपुर में केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र की ओर से किसान प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इसमें किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड के बारे में जानकारी दी गई। अनुसंधान निदेशालय के निदेशक डॉ. विजय वीर सिंह ने किसानों को बताया कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड के माध्यम से खेत की मिट्टी में उपलब्ध नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, जैविक कार्बन और सूक्ष्म पोषक तत्वों की स्थिति की जानकारी मिलती है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की पूरक परीक्षाएं आज से शुरू हो गई हैं। 16 मई तक चलने वाली इन परीक्षाओं का आयोजन प्रदेश के 167 केंद्रों पर हो रहा है। परीक्षा में 40,000 से अधिक परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं। इसके सफल आयोजन के लिए बोर्ड प्रशासन ने पुख्ता व्यवस्थाएं की हैं। आकाशवाणी के 90 वर्ष सफलतापूर्वक पूरे होने के उपलक्ष्य में आज आकाशवाणी जैसलमेर की ओर से गड़ीसर तालाब से कार्यालय परिसर तक वॉकेथॉन का आयोजन किया गया। वॉकेथॉन को जैसलमेर विधायक छोटू सिंह भाटी ने रवाना किया। इसमें आकाशवाणी के सभी कर्मचारियों, शहर के प्रबुद्धजन और विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 मई को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 134वीं कड़ी होगी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। 1:05 हुए हैं। अब प्रस्तुत है महिलाओं के लिए उनका कार्यक्रम महिला जगत।

महिला जगत सुनने वाली सभी महिलाओं को अंकिता अरोड़ा का प्यार भरा नमस्कार। सखियों, उच्च रक्तचाप या हाई ब्लड प्रेशर आज के समय की सबसे आम गंभीर बीमारियों में से एक है। ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें धमनियों में रक्त का दबाव सामान्य से अधिक हो जाता है, जिससे दिल और अन्य अंग पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है। यह समस्या उम्र के साथ बढ़ सकती है, लेकिन अब युवाओं में भी ये तेजी से देखने को मिल रही है।

हाई ब्लड प्रेशर को साइलेंट किलर भी कहा जाता है क्योंकि इसकी पहचान अक्सर देर से होती है और तब तक ये शरीर को काफ़ी नुकसान पहुंचा चुका होता है। अगर हाई बीपी को समय पर पहचाना जाए और उसकी उचित घरेलू व मेडिकल उपाय अपनाए जाएं, तो इसे आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। सामान्य ब्लड प्रेशर 120/80 mmHg होता है और इससे अधिक हो तो इसे हाई ब्लड प्रेशर कहा जाता है। यदि यह स्थिति लंबे समय तक बनी रहे तो इसे दिल की बीमारियां, स्ट्रोक, किडनी फेलर और आंखों की समस्याएं हो सकती हैं। सगी, हाई बीपी के लक्षण है सर दर्द, खासकर सुबह के समय, चक्कर आना या थकावट, नाक से खून आना, धुंधली नज़र, सीने में दर्द या घबराहट, सांस लेने में तकलीफ होना। सखियों, चर्चा का विषय जारी रहेगा, पहले सुन लेते हैं ये गीत।

0: सबके लिए अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प
1: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
0: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
2: हेलो
3: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
2: फिर से
4: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
5: 10,00,000 दीजिए, बच जाएंगे।
2: सर इतने कहाँ से?
5: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए 2,00,000 भेजिए, बाकी बाद में।
2: 2,00,000
6: क्या हुआ पापा?
2: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं। काट दिया।
6: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
2: फ्रॉड?
6: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
2: तो पैसे गवाओगे।
7: RBI कहता है,
8: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
9: सखियों, हम चर्चा कर रहे हैं ब्लड प्रेशर को कैसे करें कंट्रोल के बारे में। सखियों, ब्लड प्रेशर को हम प्राकृतिक तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे नमक के सेवन को कम करें, हेल्दी डाइट लें जिसमें फल, हरी सब्जियां, ओट्स, लो फैट डेयरी और साबुत अनाज को अपने आहार में शामिल करें, योग और व्यायाम को अपनी दिनचर्या में शामिल करें, रोजाना कम से कम 30 मिनट पैदल चलना और योगा और मेडिटेशन ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखने में सहायक होता है, तनाव को कम करें, मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग या संगीत सुनने जैसी आदतें तनाव कम करती हैं, धूम्रपान और शराब के सेवन से दूर रहें, रोजाना कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद अवश्य लें। अगर घरेलू उपाय से कंट्रोल नहीं हो रहा है तो डॉक्टर से अवश्य चेकअप करवाएं और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने वाली दवाई लें। नियमित ब्लड प्रेशर मॉनिटर करें, ECG, ECO और अन्य टेस्ट चिकित्सक सलाह अनुसार लें। इस तरह बहनों आप अपने बढ़ते हुए BP को कर सकती हैं कंट्रोल और रह सकती हैं चुस्त और दुरुस्त। और इसी के साथ सुनते हैं एक और गीत।

0: पुलिस?
1: मिस सीमा
0: जी,
1: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए वरना घर आ जाएंगे।
0: क्यों? लेकिन मैं
1: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
0: डिजिटल अरेस्ट?
1: 1 लाख दो, बच जाओगे।
0: इतने पैसे?
1: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
0: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
2: हेलो मम्मा।
3: RBI कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: सखियों, आजकल चारों ओर अत्यधिक प्रदूषण के कारण स्वच्छ हवा में सांस लेना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, खासकर शहरों में। स्वच्छ हवा में सांस लेना अच्छे स्वास्थ्य और खुशहाली

के लिए बेहद ज़रूरी है। इसलिए अपने घर की हवा की गुणवत्ता में महत्वपूर्ण सुधार लाने के लिए हमें आसपास के वातावरण को शुद्ध करने के लिए पर्याप्त मात्रा में वायुशोधक पौधे लगाने चाहिए। ये पौधे आपके घर में प्राकृतिक सुंदरता का संचार करते हैं। मेज़ से लेकर अलाव तक यह आकर्षक पौधे कहीं भी अपनी अलग ही पहचान बना सकते हैं। देखने में तो ये पौधे बहुत ही सुंदर लगते हैं और आपको घर बैठे ही प्रकृति से जुड़ाव का एहसास भी कराते हैं। इसमें है सबसे पहले मनी प्लांट, जो बेंजीन, कार्बन मोनोऑक्साइड और ज़ाइलिन जैसी वायु प्रदूषकों को दूर करने के लिए आदर्श है। ये इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से निकलने वाले हानिकारक विकिरण को कम करता है और आपको अस्वस्थ वातावरण से बचाता है। सक्यों एलोवेरा यह बेंजीन और फॉर्मल्डिहाइड को साफ करने में कारगर है। हवा को शुद्ध करने के गुणों के अलावा एलोवेरा खाना पकाने, बेकिंग और अन्य कई काम हजारों औषधियों लाभ प्रदान करता है। सक्यों स्नेक प्लांट यह पौधा बेंजीन, फॉर्मल्डिहाइड, TCI, ज़ाइलिन जैसे हानिकारक वायु प्रदूषकों को दूर करता है और यह पौधा रात भर भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन भी प्रदान करता है। सक्यों बातों का सिलसिला तो यूं ही जारी रहेगा। पहले सुन लेते हैं यह गीत।

0: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
1: आरबीआई कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: सखियों, हम चर्चा कर रहे हैं इंडोर प्लांट्स जो होते हैं बेस्ट एयर प्यूरिफायर। सखियों, बांस का ताड़ पौधा एक बेहतरीन प्राकृतिक कीटाणु नाशक होते हैं। यह हवा को शुद्ध करने वाला पौधा हवा से बेंजीन, ट्राइक्लोरोएलिथिन और फॉर्मल्डिहाइड को फिल्टर करने में मदद करता है। यह ऑक्सीजन अधिक मात्रा में प्रदान करता है। स्पाइडर प्लांट को घर के अंदर रखे जाने वाले सबसे अनुकूलीय पौधों में से एक माना जाता है। यह पौधा कार्बन मोनोऑक्साइड और ज़ाइलीन जैसे विषाक्त पदार्थों से चुपचाप लड़ता है। चीनी सदाबहार, यह पौधा न केवल उच्च मात्रा में ऑक्सीजन उत्सर्जित करता है बल्कि बेंजीन, फॉर्मल्डिहाइड और अन्य विषाक्त पदार्थ जैसे हानिकारक रसायनों को हवा से फिल्टर करने में भी मदद करता है। ब्रांड लेडी पाम्स, यह घर के अंदर से हवा से कार्बन डाइऑक्साइड, फॉर्मल्डिहाइड और ज़ाइलीन जैसे विषाक्त पदार्थों को साफ करते हैं। ये पौधे अमोनिया के स्तर को भी कम करने में मददगार साबित होते हैं। सगे सुपारी का पेड़, यह भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करता है और हवा में प्रचुर मात्रा में नमी छोड़ता है। ये फॉर्मल्डिहाइड, ज़ाइलीन और टोल्यून जैसे खतरनाक रसायनों को हटाकर हवा को शुद्ध करता है। सगे लेमन बटन फर्न, ये पौधा ना केवल हानिकारक विषाक्त पदार्थों को दूर करने में मदद करता है बल्कि हवा में प्राकृतिक रूप से नमी बहाल करके आर्द्रता को भी बढ़ाता है। इसके अलावा ये पौधा रूखी त्वचा या नाक गले में अत्यधिक जलन की समस्या से पीड़ित लोगों के लिए भी फायदेमंद माना जाता है। इस तरह बहनों, आप इंडोर प्लांट्स का यूज़ करते हुए अपने घर की वायु को कर सकती हैं शुद्ध। और अब आनंद लीजिए इस गीत का।

क्यों गर्मियों के मौसम की चिलचिलाती धूप में शरीर को हाइड्रेट और ऊर्जावान बनाए रखना बेहद ज़रूरी हो जाता है। हालांकि हम कई ठंडे पेय पदार्थों और फ्रेश फ्रूट जूस का सेवन भी करती ताकि गर्मी से राहत मिल सके, लेकिन गन्ने का रस उन खास पेय पदार्थों में से एक है जो न केवल तुरंत हाइड्रेशन और ऊर्जा प्रदान करता है बल्कि इसके बहुत स्वास्थ्य लाभ भी हैं। और गर्मियों में गन्ने के जूस सबसे लोकप्रिय ग्रीष्मकालीन पेय पदार्थों में से भी एक है। सखियों, गन्ने के रस में प्राकृतिक कच्ची शर्करा, आवश्यक खनिज, विटामिन और एंजाइम्स होते हैं। इसमें कार्बोहाइड्रेट की उच्च मात्रा में होने के कारण यह तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है और यह आपके एनर्जी बूस्टर का काम करता है, जिससे गर्मियों की थकान को दूर करने के लिए एक बेहतरीन माध्यम है। यह एक हाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में भी कार्य करता है। इसमें पानी की मात्रा अधिक होती है जो शरीर से निकले तरल पदार्थों की भरपाई करने में मदद करती है। यह त्वचा को मुलायम और चमकदार बनाता है। सखियों, ये रूखी त्वचा को हाइड्रेट और मॉइस्चराइज करता है, मुहासे और दाग धब्बों को कम करता है, त्वचा की लोच में सुधार करता है। सखियों, गन्ने के जूस के फायदों के बारे में तो और भी जानेंगे, पहले सुन लेते हैं यह गीत।

सखियो, हम चर्चा कर रहे हैं गन्ने के जूस के फायदों के बारे में। सखियो, गन्ने का जूस बालों की जड़ों को मजबूत बनाता है, रूखी और सिर की त्वचा के संक्रमण से बचाता है। इसमें विटामिन B12, आयरन और मैग्नीशियम जैसे आवश्यक विटामिन होते हैं जो बालों के विकास को बढ़ावा देते हैं, बालों का झड़ना रोकते हैं। इसके सेवन से आंतों में एंजाइम्स के उत्पादन बढ़ता है, कब्ज से राहत दिलाता है, पेट के एसिड को संतुलित भी करता है। यह पेट फूलने से रोककर प्राकृतिक पाचन टॉनिक के रूप में कार्य करता है। सखियो, गन्ने का जूस लिवर और किडनी से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है, जिसके संक्रमण और बीमारियों से बचाव होता है। यह गुर्दे की पथरी बनने की प्रक्रिया को कम करता है। गन्ने के रस में मौजूद मैग्नीशियम और बी कॉम्प्लेक्स विटामिन मस्तिष्क के कार्य को बेहतर बनाते हैं, जिससे तनाव और चिंता कम होती है। ये अवसाद को कम करता है और स्मृति और संज्ञानात्मक कार्य क्षमता को बढ़ाता है। नींद की गुणवत्ता में भी सुधार करता है। इसमें प्राकृतिक विषहरण गुण होते हैं जो लीवर को साफ करते हैं, चयापचय में सुधार करते हैं और खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं। सखियो, इसमें कैल्शियम की मात्रा होती है जो हड्डियों के उचित विकास को सुनिश्चित करती है और ऑस्टियोपोरोसिस जैसी स्थितियों को रोकने में मदद करती है। सखियो, गन्ने का जूस एंटीऑक्सीडेंट विटामिन सी से भरपूर रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, लेकिन बहनों, जहाँ फायदे हैं वहाँ नुकसान भी हैं। उच्च रक्त शर्करा वाले लोगों को इसके सेवन से बचना चाहिए। इसका अत्यधिक सेवन से वजन भी बढ़ सकता है, क्योंकि इसमें मौजूद उच्च शर्करा और कैलोरी की मात्रा आपके वजन को बढ़ा भी सकती है। तो इसलिए बहनों, गर्मियों के मौसम में गन्ने का जूस का आनंद तो लीजिए, लेकिन संतुलित मात्रा में। और सुनते हैं अब एक और गीत।

सखियों, वैसे तो हर मौसम में त्वचा की देखभाल आवश्यक है, लेकिन गर्मियों के मौसम में त्वचा की अतिरिक्त देखभाल करनी पड़ती है। और अगर बात ऑयली स्किन की हो तो, क्योंकि मैंने उच्च तापमान और बढ़ी हुई आर्द्रता के स्तर के संयोजन से सीबेसियस ग्लैंड उत्तेजित होती है, जिससे त्वचा में मौजूद प्राकृतिक तेल सीबम का अधिक उत्पादन होता है। जाहिर है, जब तापमान बहुत बढ़ जाता है तो आपको अधिक पसीना आता है, और वह पसीना जब सीबम के साथ मिल जाता है तो बैक्टीरिया के लिए पनपने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करता है, जिससे मुहासे हो जाते हैं। तेली त्वचा धूप से होने वाले नुकसानों के प्रति अधिक संवेदनशील होती है, क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ पहले लक्षण हाइपर पिगमेंटेशन और यहाँ तक कि सनबर्न भी तेली त्वचा पर होने की संभावना कहीं अधिक होती है। मैडम, इन सब से बचने के लिए आपको नियमित रूप से चेहरा साफ करना चाहिए। दिन में कम से कम 2 बार एक सौम्य तेल रहित क्लींजर चुनें, जो अतिरिक्त तेल को हटा दे और त्वचा की प्राकृतिक नमी को भी नष्ट ना करे। मैनो, गर्मियों में त्वचा को हाइड्रेट रखना एक बहुत ज़रूरी होता है। ऐसे उत्पाद का चयन करें जिनमें हाइलुरोनिक एसिड और नायसिनामाइड जैसे तत्व हों, जो त्वचा के तेलिए बनाए बिना हाइड्रेट करें। सखियों, चर्चा का विषय जारी रखेंगे, पहले सुन लेते हैं ये गीत।

सखियों, हम चर्चा कर रहे हैं गर्मी में ऑयली स्किन की देखभाल के बारे में। सखियों, तेली त्वचा के लिए एक्सफोलिएशन बेहद ही ज़रूरी है। हफ्ते में एक बार घर पर बनाए स्क्रब जैसे शहद, नींबू, चीनी या आजकल तो बाज़ार में कई प्रकार के स्क्रब भी मौजूद हैं, ज़रूर करें। एक्सफोलिएशन त्वचा से मृत कोशिकाएं हटाती है और रोम छिद्र साफ होते हैं और त्वचा निखरती है। बहनों, बाहर गर्मी में जाने से पहले सनस्क्रीन का इस्तेमाल अवश्य करें। यह त्वचा को हानिकारक यूवी किरणों से बचाती हैं और सन टैनिंग से स्किन को रोकती है। ये कच्ची सनस्क्रीन जिसका SPF 50+ एक बेहतरीन विकल्प है। आजकल बाजार में जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र उपलब्ध हैं जो स्किन को चिपचिपी होने से रोकते हैं और हाइड्रेशन प्रदान करते हैं। मैंने हमारे सुबह शाम के सीरम बाहरी हाइड्रेशन का ख्याल रखेंगे, लेकिन अतिरिक्त हाइड्रेशन भी उतना ही ज़रूरी है। खूब पानी पिएं, जूस, नारियल पानी, भरपूर मात्रा में कच्चे सलाद और फल खाएं। ये प्राकृतिक हाइड्रेशन त्वचा में प्राकृतिक चमक, लचीलापन बनाए रखने

और विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने और त्वचा से तेल उत्पादन को नियंत्रित करने में मदद करता है। और इस तरह बहनों आप भी पा सकती हैं गर्मियों में चमकती और दमकती हुई त्वचा। और बहनों इसी के साथ आनंद लीजिए एक और प्यारे से गीत का।

0: Yesterday, the state government directed all departments to ensure that only 50% of Group C and Group D employees attend office each day, while the remaining staff will work from home on a rotational basis. The crucial talks between US President Donald Trump and Chinese President Xi Jinping is underway in Beijing. Iran war, global energy crisis, tariffs, trade tensions, Taiwan and artificial intelligence are likely to dominate the agenda. Earlier in his opening remarks, President Xi called for China and the US to be partners, not rivals. In his opening remarks, US President Trump described his Chinese counterpart as a great leader and said the relationship between the two superpowers will be better than ever before. The US President arrived in Beijing last evening for the high-stakes summit with Chinese President. The US President has brought along several top business and technology executives on his visit to China. Among the prominent executives accompanying the President are NVIDIA CEO Jensen Huang, Apple CEO Tim Cook, Tesla and SpaceX chief Elon Musk. In badminton, India's PV Sindhu and top men's doubles pair of Sattvik Sairaj, Ranki Reddy and Chirag Shetty advanced to the quarterfinals of Thailand Open with impressive victories today. Two-time Olympic medalist Sindhu defeated Denmark's Amalie Schultz in women's singles. World number 12 Sindhu will now face reigning world champion Akane Yamaguchi of Japan in the quarterfinals. In men's singles, 7 seed Lakshya Sen defeated Chinese Taipei Su Li Yang to enter the last 8. Meanwhile, top seeded Indian men's doubles pair Sattvik and Chirag defeated Malaysia's Brian Jeremy Gunting and Mohammad Haikal to book their place in the last 8. News just in. Election Commission today announced Special Intensive Revision, SIR Phase 3, which will be conducted in a phased manner in 16 states and 3 union territories. The states are Andhra Pradesh, Arunachal Pradesh, Haryana, Jharkhand, Karnataka, Maharashtra, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Odisha, Punjab, Sikkim, Tripura, Telangana and Uttarakhand. The UTs are NCT of Delhi, Chandigarh and Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu. And now before we end the bulletin, the headlines once again. India asserts BRICS expected to play a constructive role amid global uncertainty and economic challenges. Two-day BRICS foreign ministers meeting begins in New Delhi. India and UAE set to take bilateral ties to next level during Prime Minister Narendra Modi's visit to Abu Dhabi tomorrow. Congress leader V.D. Satheesan to be Chief Minister of Kerala. Home Minister Amit Shah says India has emerged as a global leader and first responder in disaster management. US President Donald Trump and Chinese President Xi Jinping hold crucial talks in Beijing. And in badminton, India's PV Sindhu and men's doubles pair of Sattvik Sairaj, Ranki Reddy and Chirag Shetty enter quarterfinals of Thailand Open. With that, we end the midday news.
1: Namaskar. Akashwani se dopahar samachar ke saath, main Kanak Lata. भारत ने कहा वैश्विक अनिश्चितता और आर्थिक चुनौतियों के बीच ब्रिक्स रचनात्मक भूमिका निभा सकता है। नई दिल्ली में 2 दिन के ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल अबू धाबी यात्रा के दौरान भारत और संयुक्त अरब अमीरात द्विपक्षीय संबंधों को एक नए स्तर पर ले जाने के लिए तैयार। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन केरलम के अगले मुख्यमंत्री होंगे। निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया एसआईआर के तीसरे चरण की घोषणा की। इसे चरणबद्ध तरीके से 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में चलाया जाएगा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा आपदा प्रबंधन में भारत एक वैश्विक नेता और अग्रणी देश के रूप में उभरा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने पेइचिंग में महत्वपूर्ण वार्ता की। इसमें ईरान संघर्ष, वैश्विक ऊर्जा संकट, शुल्क और व्यापार तनाव प्रमुख मुद्दे। और थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु महिला सिंगल्स में और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी तथा चिराग शेट्टी की जोड़ी पुरुष डबल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की 2 दिन की बैठक नई दिल्ली में चल रही है। इसकी अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर कर रहे हैं। बैठक में ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों के अलावा सदस्य और भागीदार देशों के शिष्टमंडल प्रमुख भी हिस्सा ले रहे हैं। भारत की अध्यक्षता में आयोजित इस वर्ष का विषय है लचीलापन नवाचार सहयोग और

0: सतत विकास के लिए निर्माण। ये विषय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मानवता प्रथम और जन केंद्रित दृष्टिकोण से प्रेरित है। इस अवसर पर विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है।
1: हमारी चर्चाओं का उद्देश्य ऐसा सतत विकास सुनिश्चित करना होना चाहिए जो समानता के सिद्धांतों तथा साझी लेकिन अलग अलग जिम्मेदारियों की भावना पर आधारित हो। तकनीकी प्रगति वैश्विक परिदृश्य को बदल रही है। इसका उपयोग सुशासन और समावेशी विकास के लिए प्रभावी रूप से किया जा सकता है। हाल के संघर्षों ने संवाद और कूटनीति के महत्व को और स्पष्ट किया है। आतंकवाद के खिलाफ सहयोग मजबूत करने पर सभी देशों की साझा सहमति है।
0: डॉक्टर जयशंकर ने भागीदार देशों को उनकी उपस्थिति और सहयोग मजबूत करने की उनकी प्रतिबद्धता के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स चल रहे संघर्ष के दौरान सार्थक भूमिका निभा सकता है।
1: हम ऐसे समय में मिल रहे हैं जब दुनिया तेजी से बदल रही है। अंतर्राष्ट्रीय तनाव, संघर्ष, आर्थिक अनिश्चितता और व्यापार, तकनीक तथा जलवायु से जुड़ी चुनौतियां वैश्विक स्थिति को प्रभावित कर रही हैं। ऐसे समय में ब्रिक्स से सकारात्मक और स्थिर भूमिका निभाने की उम्मीद बढ़ी है। आज कई देश ऊर्जा, भोजन, उर्वरक, स्वास्थ्य सुरक्षा और वित्तीय सहायता जैसी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। ब्रिक्स उन्हें इन समस्याओं से बेहतर तरीके से निपटने में सहायता कर सकता है।
0: बैठक के दौरान ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्री वैश्विक और आपसी हित से जुड़े क्षेत्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। वे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे।
2: बैठक में ब्राजील के विदेश मंत्री माउरो वियेरा, रूस के विदेश मंत्री सरगई लावरोफ, ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराकची, इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो, मलेशिया के विदेश मंत्री दातो श्री उतामा मोहम्मद बिन हाजी हसन, संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मामलों के राज्य मंत्री खलीफा शाहीन अल मरार और दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्री रोनाल्ड लामोलो सहित अन्य लोग भाग ले रहे हैं। कल दूसरे दिन ब्रिक्स संगठन के सदस्य और साझेदार देश ब्रिक्स एट 20 लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास के लिए निर्माण विषय पर एक विशेष सत्र में भाग लेंगे। इसके बाद वैश्विक शासन और बहुपक्षीय प्रणाली में सुधार पर चर्चा की जाएगी। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात जाएंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री अबूधाबी में यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता भारत और संयुक्त अरब अमीरात की मजबूत साझेदारी को एक और नए स्तर पर ले जाने के लिए चर्चा करेंगे। एक रिपोर्ट।
3: ऊर्जा क्षेत्र में महत्वपूर्ण साझेदारी के अंतर्गत ADNOC गैस और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड HPCL ने 10 वर्ष के लिए लगभग 3 अरब अमेरिकी डॉलर के अनुमानित मूल्य के LNG आपूर्ति समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसके साथ ही संयुक्त अरब अमीरात और भारत ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CEPA के अंतर्गत वर्ष 2032 तक द्विपक्षीय व्यापार को $200 अरब तक पहुंचाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। UAE में भारत के राजदूत दीपक मित्तल ने आकाशवाणी से विशेष बातचीत में कहा कि भारत और संयुक्त अरब अमीरात के संबंध अब सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं है।
4: भारत और संयुक्त अरब अमीरात के संबंध अब केवल व्यापार और निवेश तक सीमित नहीं रहे हैं। अब हमारी साझेदारी तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सुरक्षा, संस्कृति और स्वास्थ्य जैसे कई नए क्षेत्रों तक विस्तार कर चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब पूरा क्षेत्र अभूतपूर्व परिस्थितियों से गुजर रहा है।
3: UAE भारत के लिए दूसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य बन चुका है, जहां भारत का निर्यात $37 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। कांग्रेस ने 10 दिन से चल रही अनिश्चितताओं को खत्म करते हुए आज VD सतीशन को केरलम का नया मुख्यमंत्री घोषित कर दिया। ये घोषणा कांग्रेस नेताओं अजय माकन, मुकुल वासनिक और दीपा दास मुंशी ने नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान की। इस घोषणा के साथ ही कांग्रेस के नेतृत्व वाला UDF राज्य में सरकार बनाने की प्रक्रिया शुरू करेगा। UDF ने केरलम विधानसभा चुनाव में 2/3 से अधिक बहुमत हासिल किया है। असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने मुख्यमंत्री डॉ हिमंता बिस्व शर्मा की मंत्रिपरिषद के नवनियुक्त सदस्यों

0: को विभाग आवंटित करने के प्रस्ताव को मंजूरी देती है। रामेश्वर तेली को विकास, श्रम कल्याण और चाय बागान, जनजाति तथा आदिवासी कल्याण विभाग दिए गए हैं। अतुल बोरा पंचायत और ग्रामीण विकास, असम समझौते का क्रियान्वयन, सीमा सुरक्षा और विकास तथा उत्पाद शुल्क विभाग संभालेंगे। चरण बोरो को परिवहन विभाग और बोडोलैंड कल्याण विभाग का मंत्री बनाया गया है। श्रीमती अजंता नियोग महिला और बाल विकास तथा पर्यटन विभाग संभालेंगी। निर्वाचन आयोग ने आज विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के तीसरे चरण की घोषणा की है, जिसे 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में चरणबद्ध तरीके से चलाया जाएगा। ये राज्य हैं आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पंजाब, सिक्किम, त्रिपुरा, तेलंगाना और उत्तराखंड। केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव शामिल हैं। भारत ने कहा है कि कल ओमान के तट पर हुए भारतीय ध्वज वाले जहाज पर हुआ हमला अस्वीकार्य है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक बयान में वाणिज्यिक जहाजों और आम नागरिकों को लगातार निशाना बनाए जाने पर खेद व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि जहाज पर सवार भारतीय चालक दल के सभी सदस्य सुरक्षित हैं। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर भारत की ऐतिहासिक सफलता का उत्कृष्ट उदाहरण है। इसमें त्वरित और समन्वित कार्रवाई तथा स्वदेशी हथियारों और प्रणालियों का उपयोग किया गया। नई दिल्ली में कलम और कवच के तीसरे संस्करण के उद्घाटन सत्र में श्री सेठ ने कहा कि आधुनिक भारत नई चुनौतियों के समय में वैज्ञानिक अनुसंधानों को सैन्य शक्ति के साथ जोड़ रहा है। भारतीय सेना और नौसेना ने आज अंतर सेवा सहयोग को मजबूत करने और अधिक समन्वय को बढ़ावा देने के लिए ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि समझौता ज्ञापन का उद्देश्य अंतर सेवा सहयोग को संस्थागत रूप देना और परिचालन सामंजस्य को मजबूत बनाना है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF ने 2 दशक की अल्पावधि में देश के 140 करोड़ नागरिकों का विश्वास जीता है। श्री शाह ने गाजियाबाद में आज NDRF के राष्ट्रपति ध्वज समारोह में कहा कि आपदा की स्थिति में NDRF की मौजूदगी से लोग सुरक्षित महसूस करते हैं।
1: NDRF को राष्ट्रपति निशान का सम्मान दिया गया, वो हम सब के लिए गौरव और प्रतिष्ठा की बात। ये सम्मान NDRF के समस्त बल के सेवा, साहस, शौर्य और समर्पण के संचित गुणों का सम्मान है। 20 साल के कम अंतराल के अंदर आपदा बचाव के क्षेत्र में भारत को वैश्विक नक्शे पर रखने का काम NDMA और NDRF ने किया है।
0: प्रवर्तन निदेशालय विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम FEMA के प्रावधानों के अंतर्गत जायग्रेट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड और अन्य से जुड़ी जांच के मामले में 14 व्यक्तियों और कंपनियों के परिसरों पर छापेमारी कर रहा है। एक बयान में निदेशालय ने कहा कि जायग्रेड टेक्नोलॉजीज कंपनी ऑनलाइन गेमिंग गतिविधियों के लिए भुगतान एग्रीगेटरों के जरिए लोगों से पैसा इकट्ठा कर रही थी। पंजाब पुलिस ने 5 मई को जालंधर में सीमा सुरक्षा बल मुख्यालय के मुख्य द्वार के पास हुए विस्फोट के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। सूत्रों ने बताया है कि आरोपी कथित तौर पर पाकिस्तान स्थित एक आतंकवादी के संपर्क में था। अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है। इस बीच उसी रात अमृतसर में एक सैन्य चौकी पर हुए एक अन्य विस्फोट की जांच जारी है। मध्य प्रदेश के देवास जिले की पटाखा फैक्ट्री में भीषण विस्फोट से 2 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। देवास कलेक्टर ऋतुराज सिंह के मुताबिक हादसे में 2 मजदूरों की मौत हुई है। फैक्ट्री में काम करने वाले ज्यादातर मजदूर बिहार के अररिया जिले के बताए जा रहे हैं। संभागायुक्त आशीष सिंह और कलेक्टर ऋतुराज सिंह मौके पर पहुंच गए हैं और बचाव कार्य जारी है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने देवास पटाखा फैक्ट्री हादसे को हृदय विदारक बताया है। डॉ. यादव ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि और घायलों को निःशुल्क इलाज देने की घोषणा की है। लॉजिस्टिक्स इज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स लीड्स 2025 की रिपोर्ट में कल केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को श्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता के रूप में मान्यता दी गई। नई दिल्ली में केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने प्रदेश को ये मान्यता दी। वर्ष 2023 तक जम्मू कश्मीर आकांक्षी प्रदेश की श्रेणी में था। वर्ष 2024 में इसे तेजी से प्रगति करने वाले प्रदेश के रूप में मान्यता प्राप्त हुई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने

0: के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने आज चीन की राजधानी बीजिंग में आयोजित शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। ट्रंप ने इसे अब तक का सबसे बड़ा शिखर सम्मेलन कहा है। इसमें ईरान संघर्ष और द्विपक्षीय व्यापारिक तनाव सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई। एक रिपोर्ट।
1: बीजिंग के ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल में आज श्री जिनफिंग के साथ बातचीत में ट्रंप ने कहा कि अमेरिका और चीन का भविष्य उज्जवल होगा। ट्रंप के साथ अमेरिका के शीर्ष व्यापारिक नेता भी आए हैं। इनमें एनवीडिया के जेंसन हुआंग, एप्पल के टिम कुक, टेस्ला और स्पेसएक्स के एलन मस्क और ब्लैक रॉक के लैरी फिंक के नाम शामिल हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि ये वर्ष चीन अमेरिका संबंधों के लिए ऐतिहासिक होगा। चीन और अमेरिका के बीच व्यापारिक तनावों के बारे में जिनफिंग ने कहा कि व्यापारिक संघर्ष में कोई भी विजय नहीं होता। राष्ट्रपति ट्रंप की यह यात्रा पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष और उसके बाद ईंधन से जुड़ी वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में आए व्यवधानों के बीच हो रही है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: देश में थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति वार्षिक आधार पर अप्रैल में 42 महीने के उच्चतम स्तर 8.3% पर पहुंच गई। पिछले वर्ष मार्च में ये 3.88% थी। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के अनुसार मुद्रास्फीति में यह वृद्धि मुख्य रूप से खनिज तेल, कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस, मूल धातुओं, विनिर्मित उत्पादों और गैर खाद्य वस्तुओं के दाम बढ़ने के कारण हुई। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु महिला सिंगल्स में और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी तथा चिराग शेट्टी की जोड़ी पुरुष डबल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। सिंधु ने आज प्री क्वार्टर फाइनल में डेनमार्क की अमाली शूज को केवल 28 मिनट में हराकर अगले दौर में प्रवेश किया। क्वार्टर फाइनल में सिंधु का सामना विश्व चैंपियन जापान की अकाने यामागुची से होगा। पुरुष डबल्स में सात्विक और चिराग शेट्टी ने प्री क्वार्टर फाइनल में मलेशिया के ब्रायन जेरेमी गुंटिंग और मोहम्मद हैकल की जोड़ी को हराया। आईपीएल क्रिकेट में आज पंजाब किंग्स का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने कहा वैश्विक अनिश्चितता और आर्थिक चुनौतियों के बीच ब्रिक्स रचनात्मक भूमिका निभा सकता है। नई दिल्ली में 2 दिन के ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल अबू धाबी यात्रा के दौरान भारत और संयुक्त अरब अमीरात द्विपक्षीय संबंधों को एक नए स्तर पर ले जाने के लिए तैयार। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन केरलम के अगले मुख्यमंत्री होंगे। निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के तीसरे चरण की घोषणा की। इसे चरणबद्ध तरीके से 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में चलाया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा आपदा प्रबंधन में भारत एक वैश्विक नेता और अग्रणी देश के रूप में उभरा है। और थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु महिला सिंगल्स में और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी तथा चिराग शेट्टी की जोड़ी पुरुष डबल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंची। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त।
2: मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी सूरतगढ़ का ये कॉटन सिटी चैनल है। दोपहर के 2:30 हो चुके हैं। आइए कार्यक्रम सुने फिल्म संगीत। पहले सुने रावण राज फिल्म में बाली ब्रह्म भट्ट के साथ पूर्णिमा को, शब्द रचना आनंद बख्शी की और संगीतकार हैं विजू शाह।

खौफ। इस फिल्म में सुनिए सुखविंदर सिंह और जसविंदर नरूला को। साजिद वाजिद के संगीत निर्देशन में गीत के बोल लिखे रानी मलिक ने।

0: एक दूसरे की तलाश गुम नहीं होती। अभी अभी एक लम्हा था हथेली पर, गिरा और गुम हो गया, और वक्त की धूल में उसकी तलाश फिर शुरू हो गई। तलाश ही तो जिंदगी है, और जिंदगी सच पूछिए तो इतनी मुख्तसर भी नहीं कि आज बिछड़े और कल मुड़के भी ना देखें।
1: कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवाते हैं फिल्म तमाचा से, जिसे गाया पंकज उदास, शरण प्रभाकर और साथियों ने। शब्द रचना आनंद बख्शी की और संगीतकार हैं बप्पी लाहिड़ी।

ये प्रोग्राम के आखिर में सुने गजनी फिल्म में बेबी श्याल और श्रेया घोषाल को, शब्द रचना प्रसून जोशी की और धुन तैयार की है ए आर रहमान ने।

अभी आप फिल्म संगीत सुन रहे थे। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 3 बजे हैं। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हमारे उर्दू सर्विस के कार्यक्रम। कृपया थोड़ी सी प्रतीक्षा करें।

मीडियम वेव 1071 किलोहर्ट्ज मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर और डीडी फ्रीडिश पर आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस की नशरियात। दोपहर के 3:05 होने को हैं। अब खबरें नशर की जाएंगी।

अब आप अर्जुमंद अली खान से खबरें सुनिए। भारत ने जोर देकर कहा है कि आलमी गैर यकीनी और इक्तसादी चैलेंजों के दरमियान ब्रिक्स से एक तामीरी रोल अदा करने की उम्मीद है। नई दिल्ली में ब्रिक्स के वज़रा खारजा की दो रोज़ा मीटिंग का आगाज हो गया है। भारत और मुत्तहदा अरब अमारात वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे के मौके पर दो तरफा ताल्लुकात को आइंदा सतह तक वसत देंगे। वज़ीर दाखला अमित शाह ने कहा है कि कुदरती आफात से निमटने के मामले में भारत एक आलमी रहनुमा और सबसे पहले मदद करने वाले मुल्क के तौर पर उभरा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और चीनी सदर शी जिनपिंग ने बीजिंग में अहम बातचीत की है। ईरान जंग, तवानाई का आलमी बहरान, महसूलात और तजारती कशीदगी एजेंडे में सर फहरिस्त हैं। और बैडमिंटन में भारत की पीवी सिंधु और मर्दों के डबल्स की सत्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय जोड़ी थाईलैंड ओपन के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। ब्रिक्स वज़रा खारजा की दो रोज़ा मीटिंग नई दिल्ली में जारी है। वज़ीर खारजा डॉ एस जयशंकर इस मीटिंग की सदारत कर रहे हैं। ब्रिक्स मुंबर ममालिक और साझेदार मुल्कों के वज़रा खारजा और वफूद के सरबराहान इस मीटिंग में शिरकत कर रहे हैं। मीटिंग के दौरान वज़रा खारजा बाहमी दिलचस्पी के आलमी और इलाकाई मामलात पर तबादले ख्याल कर रहे हैं। अपने इफ्तिताही कलमात में वज़ीर खारजा एस जयशंकर ने कहा कि अमनो सलामती आलमी निज़ाम में बदस्तूर मरकजी हैसियत रखते हैं। वज़ीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने जोर देकर कहा कि आलमी गैर यकीनी और इक्तसादी चैलेंजों के दरमियान ब्रिक्स से एक तामीरी रोल अदा करने की उम्मीद की जाती है। उन्होंने कहा कि हालिया महाजाराई से बातचीत और सिफारतकारी की अहमियत उजागर हुई है। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस पेचीदा और गैर यकीनी के दरमियान दुनिया में मुसावी और मुश्तरका उसूलों को बरकरार रखते हुए मुख्तलिफ जिम्मेदारियों के साथ बातचीत में मुसलसल पायदार पेशरफ्त होनी चाहिए। डॉक्टर जयशंकर ने शरीक ममालिक का उनकी मौजूदगी और ब्रिक्स तरीक़ेकार को मुस्तहकम करने की खातिर जारी इश्तराक के लिए शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि सभी साझेदार और मेंबर ममालिक दो तरफा और कसीर रुखी राबतों के जरिए करीबी और मुसलसल राबते में रहते हैं। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि आज की ब्रिक्स मीटिंग नज़रियात के तबादले और तरक्की के हवाले से हमाहंगी के लिए एक प्लेटफॉर्म फराहम कर रही है। इस दौरान

0: अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और चीन के सदर शी जिनपिंग ने आज बीजिंग में बातचीत शुरू की है, जिसे सदर ट्रंप ने अब तक की सबसे बड़ी समिट करार दिया है, जिसमें ईरान जंग और बाहमी तिजारती कशीदगी समेत वसीतर मामलात पर तबादले ख्याल किया जा रहा है। कल रात अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को बीजिंग पहुंचने पर शानदार इस्तकबालिया दिया गया और उन्होंने आज चीन के सदर शी जिनपिंग के साथ अपनी पहली मुलाकात में कहा कि वो उनके साथ आला सतह पर बातचीत के मुंतजिर हैं। अपने इफ्तिताही कलमात में आज सदर ट्रंप ने कहा कि इसे कुछ लोग अब तक की सबसे बड़ी समिट कह रहे हैं, जहां बीजिंग में ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल पर चीन के सदर के साथ बातचीत हो रही है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के 3 रोजा सरकारी दौरे पर चीन में है। दोनों रहनुमाओं के साथ पहली मुलाकात 2 घंटे से ज्यादा वक्त तक चली। सदर ट्रंप के हमराह अमरीका के सरकर्दा सनतकार और आला सतही वफद भी मौजूद है। 2 बार की ओलंपिक तमगा हासिल कर चुकी पीवी सिंधु और मर्दों के डबल्स की सत्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की सरकर्दा भारतीय जोड़ी आज शानदार जीत दर्ज करते हुए थाईलैंड ओपन के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। और अब आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। भारत ने जोर देकर कहा है कि आलमी गैर यकीनी और इकतसादी चैलेंजों के दरमियान ब्रिक्स से एक तामीरी रोल अदा करने की उम्मीद है। नई दिल्ली में ब्रिक्स के वज़रा खारजा की 2 रोजा मीटिंग का आगाज हो गया है। भारत और मुत्तहदा अरब अमारात वजीर आजम नरेंद्र मोदी के दौरे के मौके पर दोतरफा ताल्लुकात को आइंदा सतह तक वसत देंगे। वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि कुदरती आफात से निमटने के मामले में भारत एक आलमी रहनुमा और सबसे पहले मदद करने वाले मुल्क के तौर पर उभरा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और चीनी सदर शी जिनपिंग ने बीजिंग में अहम बातचीत की है। ईरान जंग, तवानाई का आलमी बहरान, महसूलात और तजारती कशीदगी एजेंडे में सरफहरिस्त हैं। और बैडमिंटन में भारत की पीवी सिंधु और मर्दों के डबल्स की सत्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय जोड़ी थाईलैंड ओपन के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी है। मीडियम वेव 1071 किलोहर्ट्स, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस की नशरियात। लीजिए पेश है प्रोग्राम मेरी पसंद।

0: कई हवालों से हुआ है, नज़मों में हुआ है, गज़लों में हुआ है, दूसरी असनाफ़ सुखन में हुआ है। जब हम कौमी यकजहती की बात करते हैं तो हिंदुस्तान का एक पूरा नक्शा हमारे जहनों में उभर आता है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक ये हमारा जो खूबसूरत मुल्क है और उसमें बसने वाले हर मज़हब, कौम और हर तरह की ज़बान और बोलियों को बोलने वाले लोग और उनसे मिलकर बनता है हमारा प्यारा मुल्क हिंदुस्तान। उस हिंदुस्तान की एक बड़ी खूबसूरत ज़बान उर्दू और उस उर्दू शायरी में कौमी यकजहतियत और एकांगत के रंग के बारे में आज गुफ्तगू करने के लिए आकाशवाणी के स्टूडियो में डॉक्टर यूसुफ रामपुरी साहब, जो कि मुल्क के जाने माने कॉलम निगार हैं, कई अहम किताबों के मुसन्निफ हैं, जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज में आप उर्दू के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर मोहम्मद मुस्तमिर साहब, एक मुतरजिम के हवाले से बहुत सी अहम किताबों का तर्जुमा किया है आपने, कई अहम किताबों के मुसन्निफ हैं, आप एक अफसाना निगार भी हैं और शायर भी हैं, आपके शेरी मजमुआ भी शाया हुआ है, अफसानवी मजमुआ भी शाया हुआ है और उर्दू सिखाने के लिए भी आपने बहुत सी किताबें लिखी हैं। हमारी बहुत ही मोहतरम मेहमान आज की मोहतरमा सबीहा फजल साहिबा हैं, ब्रॉडकास्टिंग की दुनिया का एक बहुत ही जाना पहचाना नाम है मोहतरमा सबीहा फजल साहिबा का, एक एंकर की शक्ल में, एक प्रेजेंटर के रूप में आपकी अच्छी खासी शोहरत है और ये जो हमारी उर्दू शायरी है और इसके जो रंग हैं उन पे भी मोहतरमा सबीहा फजल की बहुत गहरी और अच्छी निगाह है, उन तमाम रंगों पे वो नजर रखती हैं। आइए आज की इस गुफ्तगू का आगाज इस बात से करते हैं, उर्दू शायरी ने हर मकाम पे हमारे दिलों में वतन से मोहब्बत के जज्बे को बेदार किया है, इतने रूप हैं कि इस पे कई मकाले लिखे गए हैं, कई किताबें लिखी गई हैं, हजारों सफात पे इसके रिसर्च यूनिवर्सिटीज के शोबों में हुआ है इस मौजू पे कि उर्दू शायरी में कौमी यकजहती के कितने रूप हैं। आइए आज की इस गुफ्तगू का आगाज डॉक्टर मोहम्मद मुस्तमिर साहब से करते हैं और देखते हैं कि उर्दू शायरी में कौमी यकजहती के ये रंग किस किस रूप में हमारे सामने हैं।
1: आपने बजा फरमाया, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कौमी यकजहती और यगानगत की जो है अपने आप में एक मिसाल है, और किसी भी सिंफ के हवाले से अगर आप बात करें या पूरा एक दौर है उर्दू शायरी का, आप अमीर खुसरो से अगर हम लेते हैं तो सबसे पहले अगर कौमी यकजहती की या इत्तिहाद की बात अगर की है तो वो अमीर खुसरो, मैं समझता हूँ अमीर खुसरो है, और वहीं से एक सिलसिला शुरू होता है, कुली कुतुब शाह तक आता है, कुली कुतुब शाह से सिराज औरंगाबादी हैं आपके, और फिर सबसे बड़ा नाम हमारे सामने जो है नज़ीर अकबर आबादी का है। नज़ीर अकबर आबादी मैं समझता हूँ कि इस तरह का शायर है कि दूसरी जबानों में भी इस तरह का शायर नजर नहीं आता, और जिस तरह उन्होंने नज़मों में भी जो है हिंदुस्तानियत को खास तौर से पेश किया है, होली के ऊपर उनकी तीन नज़में हैं, बरसात की बहारें हैं, नज़ीर अकबर आबादी का तो इतना बड़ा नाम है कि उसको हम फरामोश ही नहीं कर सकते हैं। और उसके बाद में जो है आपके गालिब भी आते हैं, इकबाल हैं, एक तवील सिलसिला है, हाली का भी एक बहुत बड़ा नाम है, उनकी खास नज्म है जैसे कि हुब्बे वतन है, कुछ शेरों का जो है यहाँ पे हवाला दे तो मैं समझता हूँ बहुत बेहतर है इस मौके पे कि तुम अगर चाहते हो मुल्क की खैर, न किसी हम वतन को समझो गैर, हो मुसलमान इसमें या हिंदू, बौद्ध मजहब हो या के हो ब्रह्मू, जाफरी हो या के हो हनफी, जैन मत हो या हो वैष्णवी। इसी तरीके से गालिब के यहाँ भी, इस तरह जब हम गालिब को देखते हैं तो गालिब के यहाँ भी बेशुमार, जैसे कि उनका शेर है, बस के दुश्वार है हर काम का आसा होना, आदमी को ही मयसर नहीं इंसान होना जी। तो जाहिर सी बात है पूरा ही पैगाम दे रहा है ये शेर इंसानियत का, कौमी यकजहती का। और इसी तरीके से चकबस लखनवी का अगर हम नाम लें तो उनका भी जो है दर्द दिल पास उफा जज्बा ईमा होना, आदमियत है यही और यही इंसान होना, और जिंदगी क्या है नासिब में जहूर तरतीब, मौत क्या है नीहजा का परेशान होना। तो एक तवील सिलसिला, चाहे वो हम साहिल लुधियानवी की बात करें, ए शरीफ इंसानों की बात करें, या जमील मजहरी साहब की बात करें, उनके यहाँ एक शेर है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तेरी गोद में भाई भाई, छुट्टियों में तेरे बादल के, साए में तेरे आंचल के, मस्जिद गिरजा और शिवाला, लंका से ताकोहे हिमाला, गंगा और जमुना की रवानी, कहती है माता तेरी कहानी।
0: बड़ी मशहूर नज्म है तो
1: भारत माता उनकी बहुत मशहूर नज्म है। या फिर कैफी आजमी की हम बात करें और साहिल लुधियानवी की, ए शरीफ इंसानों, खून अपना हो या पराया हो, नस्ल आदम का खून है आखिर, ये इस तरह की पूरी तवील नज्म है, मतलब और भी शेर इसके जो है इस तरह के हैं कि पूरी एक पैगाम दे रहे हैं जो है
0: जी। बिल्कुल यूसुफ साहब, जैसे

0: मुस्तमिर साहब जो बात कह रहे हैं, बहुत सारे शायरों का कलाम आपने पढ़
1: जी,
0: दिया
1: जहाँ
0: जी।
1: तक शायरों की बात है तो अगर हम उर्दू शायरी के मिजाज को
0: जी
1: देखें और उर्दू शायरी के आगाज़ और इर्तिका की पूरी कहानी के ऊपर हम निगाह डालें
0: जी हाँ
1: तो हम इस नतीजे पर पहुँचेंगे कि उर्दू शायरी के खमीर के अंदर ही यगानगत और उखुवत और यकजहती
0: ये बड़ी
1: मौजूद
0: अहम
1: है।
0: बात कह रहे हैं आप।
1: इसलिए मैं समझता हूँ उर्दू का कोई भी शायर यगानगत और इत्तेहाद को, उखुवत को और इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज कर ही नहीं सकता।
0: जी हाँ
1: इसलिए हम देखते हैं कि जो अहम शायर है, किसी भी शायर की शायरी को उठाकर देखें, उनकी गज़लों को पढ़ें, तो हर गज़ल में एक दो शेर जो है वो उखुवत का
0: जी जी
1: और
0: बिल्कुल
1: मोहब्बत
0: बिल्कुल
1: का और यकजहती का नज़र ही आ जाएगा।
0: जी हाँ
1: दूसरी बात यह है कि उर्दू शायरी का जो आगाज़ हुआ है उसमें हमारे सूफी हजरात ने बहुत अहम किरदार अदा
0: जी
1: किया
0: हाँ
1: है। तो जिस शायरी का आगाज या जिस शायरी की तश्कील सूफी हजरात के जरिए या उन हजरात के जरिए हो रही हो जो इंसानियत की बात करते हैं, मेलजोल की बात करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि उस शायरी के अंदर खुद ब खुद ये आमेजिश यानी यगानगत की आमेजिश हो जाती है। इसलिए उर्दू शायरी को हम इस नुक्ते नजर से बहुत मालामाल कह सकते हैं। हवस ने कर दिया है टुकड़े टुकड़े नोए इंसान को, उखुव्वत का बयां हो जा, मोहब्बत की जुबां हो जा। तो ये जो है उर्दू शायरी का मिजाज और उसकी शान
0: बिल्कुल सही कह रहे हैं आप यूसुफ
1: है।
0: साहब जो बात कह रहे हैं कि बल्कि उर्दू शायरी ने उससे आगे बढ़कर एक कदम मोहब्बत का जो एक पैगाम दिया है वो आफाकी पैगाम है। और इसीलिए इस मुल्क में हमारे जो खूबसूरत हमारा मुल्क है हिंदुस्तान, जिस पे हम नाज करते हैं, जिस पे हम फख्र करते हैं, हर मजहब हर कौम हर तरह की जबान बोलने वाले लोग यहाँ पे, जबानों का अजायब घर कहा गया। लेकिन एक चीज जो हमें जोड़ के रखती है, जिसको हिंदी में हम भारतीयता कहते हैं, वो हिंदुस्तानियत जो है वो बड़ी चीज है। और वो हिंदुस्तानियत इस उर्दू शायरी में रची बसी हुई है। ये भी ध्यान रखने की बात है कि ये वो उर्दू शायरी है जिसमें कुंवर महेंद्र सिंह बेदी सहर कहते हैं कि इश्क हो जाए किसी से कोई चारा तो नहीं,
1: वाह
0: इश्क हो जाए
1: वाह,
0: किसी से
1: किसी से
0: कोई चारा तो नहीं, सिर्फ मुस्लिम का मोहम्मद पे इजारा तो
1: इजारा,
0: नहीं।
1: वाह बहुत अच्छा।
0: ये कहने वाला कौन है? कुंवर महेंद्र सिंह बेदी सहर कहते हैं ये बात। लेकिन यहाँ वो भी मौजूद है कि जब मखदूम मोहिद्दीन शायरी करता है तो नील तन कृष्ण के पहलू में मचलती हुई गोपियां याद आ जाती हैं, जब हसरत मोहानी बरसाना की होली का जिक्र करते हैं, जब नजीर अकबर आबादी कहते हैं कि अब आगे बात जन्म की है बोलो कृष्ण कन्हैया की, तो ये भी वही उर्दू शायरी है जिसमें हर रंग हमको देखने को मिलता है। और जब हम एकजहती की बात करते हैं तो ये बात ही वहां होती है कि ये पूरा मुल्क हमारा हमको एक मोहब्बत के रिश्ते से जोड़ के
1: ये
0: रखता है। इसी
1: अपने अकीदे
0: सिलसिले
1: की बात।
0: को सबिहा फजल साहब के पास भी चलते हैं और आपके ख्यालात।
1: देखिए, जब हम शायरी बात करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि शायरी मुकम्मल इबारत है इश्क से और मोहब्बत से।
0: जी हाँ बिल्कुल
1: तो शायरी को और मोहब्बत को, यगानगत को, या फिर उसे यकजहती कहें, उसे हम अलग नहीं रख सकते। और हमारे उर्दू शुअरा की जब हम तारीख देखते हैं तो जैसे अभी आपने जिक्र किया, उर्दू शायरी में कृष्ण भक्ति जगह
0: जी
1: जगह नजर आएगी। बहुत सारे शुअरा हैं जिन्होंने कृष्ण के ऊपर इतनी खूबसूरत नज़में कहीं, कृष्ण की भक्ति से सरशार,
0: जी
1: कि जब हम उन्हें पढ़ते हैं तो ये एहसास नहीं होता कृष्ण के लिए इतने खूबसूरत जज्बात मुस्लिम कह
0: जी
1: रहा
0: जी
1: है। उसी तरह जब हम राम का जिक्र करते हैं तो राम को भी उर्दू शायरी में बहुत ही खूबसूरत अंदाज में बरता गया है। और एक और सबसे बड़ी जो बात जहन में उभरती है कि हम यहाँ पे चूंकि कौमी यकजहती की बात कर रहे हैं, तो जब हिंदुस्तान एक तवील अरसे से जद्दोजहद आजादी के दौर से गुजर रहा था,
0: जी हाँ
1: उस दौर की अगर आप उर्दू शायरी का जायजा लेंगे तो जिस तरह से लोगों ने हर तौर पर आजादी हासिल करने के लिए, अंग्रेजी साम्राज्य से लोहा लेने के लिए अपने अपने तौर पर जो भी काम अंजाम दिए, जिस जिस तौर पर भी वो उसमें पेश पेश रहे, तो जो हमारे उर्दू शुअरा का जो किरदार है वो भी बहुत अहम नजर आता है।
0: जी हाँ
1: उन्होंने उस दौर में कौमी यकजहती के तनाजुर में, या फिर
0: जी
1: कहिए अपने मुल्क के लिए मुहिब वतन के तौर पर,
0: जी जी
1: इतने खूबसूरत तराने लिखे, इतने खूबसूरत गीत लिखे, इतनी अच्छी नज्में कहीं, और ऐसे अल्फाज में कहीं जो एक आम इंसान के जहन और दिल में घर करती थी। तो इतने आम फहम अंदाज में उस दौर में जो तराने लिखे गए, जोश और वलवले से भरपूर जो नज़में कही गई, जो गीत लिखे गए, तो उसने भी हमारी जो जंगे आजादी थी उसको एक नया मोड़ दे दिया था बिल्कुल। और एक आम इंसान जो जहनी तौर पर उतना बेदार नहीं था, सियासी तौर पर उसका जो सोच थी वो उतनी ज्यादा वसी नहीं थी, वसीउ नजरी नहीं थी, सिर्फ वो ये समझ रहा था कि हाँ, हमें गैर मुल्की साम्राज्य से बाहर जाना है, हमें हमारे लिए

0: अपनी हुकूमत कायम करनी है, किस तौर पर होगी, क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं, क्या उसके नुकसान हैं, उनको आम अंदाज में छोटी छोटी बहर की नज्मों के जरिए, गीतों के जरिए जब लोगों ने गाया, तो उस दौर का आप जायजा लेंगे तो लोग जो है जौक दर जौक सड़कों पर वो नज्में, वो तराने, वो गीत गाते हुए निकला करते
1: जी
0: थे
1: हाँ बिल्कुल
0: और उस
1: जी
0: आजादी की लड़ाई में हिस्सा लिया करते थे। तो एक तरह से देखा जाए तो हमारी उर्दू शायरी का वो बहुत सुनहरी दौर है
1: जी हाँ
0: जिसने कौमी यकजहती को बढ़ावा दिया। ना कोई मजहब था, सिर्फ एक जज्बा था। उन शुरा के जरिए हमारे दिलों में वो लौ जलाई गई थी कि हमें ये काम हर सूरत में करना है, मादरे वतन को आजादी की नेमत से सरफराज करना है। और वो काम हुआ, पूरी दुनिया ने देखा कि हिंदुस्तान किस तरह से एक बड़े साम्राज्य से उसने टक्कर ली और किस तरह से माशाल्लाह आज हम न सिर्फ आजादी हासिल कर चुके बल्कि उस नेमत को हमने आज तक बरकरार रखा हुआ है। तो मुझे लगता है कि उर्दू शायरी का ये एक ऐसा कारनामा है जिसे कभी हम भुला नहीं सकते।
1: सबिया फजल साहिबा, आपने क्या खूबसूरत गुफ्तगू की। वाकई 1857 से लेकर 1947 तक
0: जी
1: कम से कम 90 साल हमारी तारीख जद्दोजहद आज़ादी का उर्दू शायरों ने और उर्दू शायरी ने कितनी हौसला मंदी के साथ साथ दिया है, आपने
0: जी
1: पूरी तस्वीर पेश कर दी। और सच बात यह है कि सरहद पे मरने वाला हर वीर था भारतवासी।
0: बेशक
1: हम जब किसी रंग, कौम, नस्ल, मजहब से ऊपर उठकर एक हिंदुस्तान की बात करते हैं, तब हम जब भारत माँ की बात करते हैं, वहाँ जाकर के कर चले हम फिदा, उर्दू का शायर लिख रहा है कैफी आजमी कि कर चले हम फिदा जान वतन साथियों, तुम्हारे हवाले वतन साथियों। तो उसमें एक बात आती है कि लाख फौजें लेके आए अमन का दुश्मन, कोई टिक नहीं सकता हमारी एकता
0: एकता के
1: के सामने,
0: सामने,
1: एकता के सामने क्या
0: बेशक
1: चलेगी जुल्म की अहले वफा के सामने। तो जब हम जंग आजादी के मैदान में थे, उस जंग में भी उर्दू के तरानों ने हमारा साथ दिया,
2: बेशक
1: और आज भी आजाद हिंदुस्तान में जब हम तरक्की की राह पे आगे बढ़ रहे हैं, जब हमारा मुल्क तरक्की कर रहा है, तब भी ये उर्दू शायरी हमारा साथ दे रही है। यूसुफ साहब जब बात कर रहे थे, उन्होंने सूफिया का जिक्र किया,
0: जी
1: खुसरो पे आपकी किताब है। सच बात यह है कि जब उर्दू शायरी देखते हैं यूसुफ साहब, तो जितने हमारे मजहबी पेशवा हुए हैं, चाहे वो
2: जी
1: किसी मजहब के हों, उन पे उर्दू शायरी में नज्में और गजलें और कलाम मिलता है।
2: जी
1: यहाँ गुरु नानक भी हैं,
2: जी
1: चिश्ती भी हैं, राम स्वामी राम तीरथ भी हैं, और इस मुल्क के बड़े हिस्से को मुतासिर करने वाली जो दो बड़ी शख्सियत हैं, एक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और दूसरे कृष्ण जी महाराज। आपने कृष्ण जी का नाम लिया,
0: जी
1: अब आप देखिए कि कृष्ण की भक्ति में डूबकर कैसे कैसे गीत गाए हैं गाने के लिए। हम प्रेम पुजारी हैं, तू प्रेम कन्हैया है, तू प्रेम कन्हैया है, ये प्रेम की नैया है, ये प्रेम की नैया है, तू इश्क खेवैया है, कुछ फिक्र नहीं ले चल, इश्क ही ले चल। तो ये मस्ताना रवि जो उर्दू शायरी का अख्तर शिरानी इस तरह डूब के कहते हैं, तो पूरी एक तारीख भरी पड़ी है इससे।
0: इसी तरह से एक बात मैं यहाँ
1: जी
0: कहना
1: हाँ
0: चाहूंगी, जैसे गंगा
1: जी हाँ बिल्कुल
0: जो कि जल जीवन है, हमारी लाइफ स्ट्रीम है, वो गंगा का जिक्र उर्दू शायरी में इतनी मर्तबा आया है,
1: बिल्कुल
0: इतनी मर्तबा आया है, गंगा को हर हर तौर पर बरता गया है। हालांकि है वो सबकी गंगा, एक फिरके को ज्यादा मोहब्बत है या ज्यादा अजीज है। उर्दू शायरी में गंगा को इतने खूबसूरत अंदाज में लोगों के सामने पेश किया गया कि जिसके बारे में अल्फाज नहीं
1: जी
0: मिलते।
1: हाँ
0: और
1: बिल्कुल
0: जैसे कि आपने कहा कि गीत लिखे गए उस जमाने में जो पैगाम देते हैं कौमी यकजहती का, तो उसी दौर में जब आप देखेंगे तो हमारे जो फिल्मसाज हैं
1: जी हाँ
0: उन्होंने
1: बिल्कुल
0: कौमी यकजहती की इतनी खूबसूरत फिल्में बनाई हैं जहां पर कोई मजहब या किसी भी कौम का कोई फर्द नहीं है, हम सब हिंदुस्तानी हैं। और हिंदुस्तानी बनकर जब हम अपनी मादर वतन की हिफाजत के लिए एकजुट हो जाते हैं, सरहदों पर खड़े हो जाते हैं, तो सिर्फ एक रंग होता है वहां पे, वो मोहब्बत का, कौमी यगानगत का और कौमी यकजहती का रंग होता है। बहुत सारी फिल्में उस दौर में
2: ये
0: बनी।
2: गीतों के तवस्सुल से भी जो है उस कौमी यकजहती को हाईलाइट किया गया।
0: जी
1: उन फिल्मों में जो नगमे हैं उर्दू शायरों के लिखे हुए नगमे, और उनमें कौमी यकजहती का बड़ा
2: हाँ
1: एक खूबसूरत
2: जी
1: शक्ल उभर करके हमारे
2: बिल्कुल बिल्कुल
1: सामने आती है
2: बिल्कुल।
1: जाने के
2: सिर्फ
1: लिए।
2: इतना ही
1: यूसुफ
2: नहीं
1: साहब
2: बल्कि हम अपने शोरा में ऐसे शायर भी देखते हैं, मोहसिन काकोरवी का नाम
0: भी डॉक्टर साहब, उनका शेर संत काशी से चला जानिबे मथुरा बगल,
1: जी हाँ
0: बर्क के कांधों पे लाती है सबा गंगा
1: गंगा
0: जल।
1: जल,
0: आप
1: क्या
0: देखिए
1: बात है
0: किस तरीके से, यानी कि आज हम हिंदुस्तान और अरब
1: जी हाँ
0: तीनों तहजीबों को किस तरीके से उन्होंने जो है एक जंगे मिला दिया है,
1: जी हाँ
0: और एक ऐसी खूबसूरत कौमी यकजहती की मिसाल हमारे सामने पेश कर दी है कि नातिया, पूरी उर्दू की नातिया शायरी में देखने को नहीं मिलती है
2: इस
0: हमें।
2: कसीदे की खास बात यह

0: है जिसका आप हवाला दे रहे हैं कि इसमें सिर्फ और सिर्फ तीनों चीजों को ही शामिल नहीं किया गया है, बल्कि बात हो रही है नाप की, बात हो रही है मदह रसूल की, लेकिन वो हिंदुस्तानी तहजीब के
1: उस तनाजुर में हो
0: जी
1: रही है।
0: जी
1: जी जी
0: तो
1: बिल्कुल
0: इससे पता चलता है कि हमारे शोरा के यहाँ यगानगत और यकजहती और यहाँ हिंदुस्तानियत जो है वो कितनी ज्यादा है कि वो किसी भी पस मंजर में बात कर रहे हैं लेकिन वो अपनी मिट्टी को जो है वो नहीं छोड़ रहे हैं।
1: मुस्तमिर साहब, जो उर्दू शायरी में जो कुछ भी कौमी यकजहती के हवाले से बयान हुआ है, अगर कुछ अशआर भी सुना सकें इस मौके से।
0: चमन में इख्तिलाते रंगोबू से बात बनती है, चमन में इख्तिलाते रंगोबू से बात बनती है, हम ही हम हैं तो क्या हम
1: हाँ,
0: हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो।
2: वाह बहुत खूब।
1: चमन में इख्तलाते रंगबू से बात बनती, एक मिसरे में क्या बात
0: जी
1: कहती कौमी यकजहती के हवाले से। मसलन
2: बिल्कुल
1: जैसे कि गोपाल दास नीरज कहते हैं कि अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए।
2: वाह
1: इंसानियत की और मोहब्बत की बात जो है ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी शायर ने उसका जिक्र ना किया हो।
2: एक चीज यहाँ पर ये भी है शफी अय्यूब साहब
1: जी
2: कि
1: हाँ
2: हिंदुस्तान जो है दुनिया के दीगर ममालिक से काफी हद तक मुख्तलिफ है,
1: जी हाँ
2: क्योंकि यहाँ पर बेशुमार मजाहिब के मानने वाले बसते हैं, अलग अलग कौमें बसती हैं, सबके अलग अलग तीज त्योहार हैं। और जब एक शायर, बल्कि शायर नहीं, एक आम इंसान की हम बात करें कि मेरी होली है, मैंने होली मनानी है, आपका ईद है या बकरीद है, जो भी, आप अगर मेरे त्योहार में उसी तौर पर शामिल हो जाते हैं तो मेरी खुशी दोबाला हो जाती है। तो यहाँ जब हम उर्दू शायरी में देखते हैं तो यहाँ के जो मौसमी त्योहार हैं खास तौर पर, उसके ऊपर उर्दू शायरों ने बड़ी अच्छी अच्छी खूबसूरत नज़में कही हैं,
1: जी
2: चाहे वो
1: हाँ
2: दिवाली हो, चाहे वो होली हो, बसंत पंचमी हो,
1: जी
2: रक्षाबंधन हो, जैसे
1: जी
2: अमीर खुसरो का फूल रही सरसों, इतना खूबसूरत वो कलाम है कि आप उसे अगर पढ़ेंगे, जहां संस्कृत भी है उर्दू भी नजर आती है, कि हम एक ही रंग में रंग जाते हैं जब शीरो शकर होकर हम होली भी मना रहे हैं। होली का कोई खास रंग नहीं है, हम सब लोगों की एक ही रंग में शराबोर हैं। ईद की सेवइयां मैं भी अपने पड़ोसी के साथ शेयर कर रही हूँ,
1: बिल्कुल
2: दिवाली के दिए मेरे साथ मेरे पड़ोसी भी मिलकर जला रहे हैं, जब बसंत हम मना रहे हैं तो बसंत के कपड़ों में पूरा हिंदुस्तान रंग जाता है, पीले रंग की जो मिठाइयां बन रही हैं वो हम सब एक दूसरे को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, पीले रंग के लिबास जो जेबतन किए हैं सबने, तो उसमें कहीं कोई ये फर्क दिखाई नहीं देता कि वो पीला लिबास जेबतन करने वाला हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, क्या उसका मजहब है। तो ऐसा लगता है कि जब हमने इन त्योहारों को, इन रस्मों को, चाहे वो मौसमी त्योहार हो या ये मजहबी त्योहार हो, तो जब हमने इनको उर्दू शायरी में बरता और उर्दू शायरी के खूबसूरत अशार में लोगों तक ये बातें पहुंची, तो इससे हमारी जो कौमी यगानगत थी, जो भाईचारा था, जो एकता थी, उसको और ज्यादा बढ़ावा मिला।
1: बिल्कुल बजा फरमा रही हैं सभी या फजल साहिबा। वाकई सच बात यह है कि वो जो मौसमी त्योहारों का जिक्र आप कर रही हैं, उन त्योहारों को मनाते वक्त हम सिर्फ एक हिंदुस्तानी हैं।
2: जी
1: जब हम कौमी एकजाती की बात करते हैं यूसुफ साहब, तो उसमें जैसा कि भी त्योहारों का जिक्र किया सभी या साहिबा ने, मुस्तमिर साहब जिक्र कर रहे थे उर्दू शायरी की फिल्मों के हवाले से जो बात कर रहे थे, तो बात यह भी है, आप देखें कि इकबाल जैसा शायर, बांगे दरा की पहली नज्म क्या है, वो हिमालय है।
2: हिमालय
1: तो जब हम अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं, अपने मुल्क में रहने वालों से मोहब्बत करते हैं, मुल्क के हर शहरी से मोहब्बत करते हैं, तो हम मुल्क के गोशे गोशे से मोहब्बत करते हैं।
2: बेशक।
1: और उर्दू शायरों ने इसीलिए, वो हिमालय पर्वत हो या गंगा नदी का जिक्र आपने किया,
2: जी
1: गंगा हिंदुस्तान की सबसे पवित्र
2: या
1: नदी मानी
2: अली
1: जाती है।
2: मसलन अली सरदार जाफरी की नकबा जमहूर देखिए,
1: जी हाँ,
2: वो पूरी की पूरी आप उसको देखिए।
1: उर्दू शायरी का दामन तो भरा हुआ है कौमी यकजहती के तरानों से, नगमों से, उस कलाम से। मुस्तमिर साहब, जाहिर सी बात है कि उर्दू
2: जी
1: शायरी में जिस तरफ नजर डालें वो कलाम आपको नजर आएगा। कुछ मुस्तमिर साहब से सुन लेते हैं।
2: बेकल उत्साही का एक
1: जी
2: बहुत
1: हाँ
2: अहम नाम है, तो उनकी एक नज्म है एकता की आवाज, कौमी यकजहती के ताल्लुक से है।
0: जी,
2: खुलूस दिल में लिए कारवां के साथ चलो,
1: खुलूस
2: खुलूस
1: दिल में
2: दिल में
1: लिए
2: लिए कारवां के साथ चलो,
1: चलो
2: मुसाफिरों चलो अजमे गिरां के साथ चलो,
1: चलो
2: और जमाना साथ चले, अंजुमन भी साथ चले, बाहर चुने कदम बापन भी साथ चले, वो अज्म हो के जिसे जिंदगी सलाम करे, कदम कदम पे सुकून जश्न एहतमाम करे, वतन की लाज बनो, कौम का निखार बनो, हर एक दिल के लिए हुस्ने एतबार बनो, कसम वतन की तुम्हें एकता के गुण गाओ, दिलों में अजमते कौमो वतन को चमकाओ, कदम के साथ अगर दिल मिले तो बात बने, जहां भी चाहो वहीं मंजिले हयात बने, हो एक दिल जरा आवाज भी मिले।

कि चलो चलो तो राहे हवादिस में मुस्कुरा के चलो, खुलूस दिल में लिए कारवां के साथ चलो। इस तरह से जो है ये पूरी जो नज्म है, पूरी जो है इत्तहाद और कौमी यकजहती का हमें जो है सबक देती है, आगे बढ़ने का देती है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी जो है कदम से कदम मिला के चले। और इस तरह की और भी बहुत सारी नज्में हैं। उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो, काखे उमरा के दरो दीवार हिला दो, गरमाओ गुलामों के लहू सोजे यकीन से, कुंजश के फरमाया को शाहीन से लड़ा दो, और सुल्तानी

0: उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो, काखे उमरा के दरो दीवार हिला दो, गरमाओ गुलामों के लहू सोजे यकीन से, कुंजश की फरमाया को शाही से लड़ा दो, और सुल्तानी ये जमहूर का आता है जमाना। देखिए इस शेर में देखिए जो अभी आपने जंग आज़ादी की बात करी वो तमाम, तो उस हवाले से भी और आज भी उस जमाने में भी सादिक आ रही थी, आज भी सादिक आती है और हमेशा सादिक आती रहेगी, क्योंकि आफाकियत उसे ही बोलते हैं। तो सुल्तानी ये जमहूर का आता है जमाना, जो नक्श कुहन तुमको नजर आए मिटा दो, और जिस खेत से दहका को मैसर नहीं रोजी, उस खेत के हर खुशाए गंदुम को जला दो। पूरी नज्म देखिए आप, पूरी की पूरी इस तरह के निजाम से बिल्कुल शराबोर है, लबरेज है पूरी की पूरी आपकी। तो आप देखिए पूरी की पूरी नज्म जो है मजलूमों के लिए भी इसमें पैगाम है, इत्तेहाद का भी पैगाम है, जो गरीब है दबे कुचले लोग हैं, इश्तराकियत की भी बात कर रहे हैं, इत्तेहाद की भी बात कर रहे हैं, कौमियत की भी बात कर रहे हैं, एकता की भी बात कर रहे हैं, यकजहती की भी बात कर रहे हैं।
1: कौमियती का मतलब यही है कि हम एक दूसरे का एहतराम करते हों, एक दूसरे का रिस्पेक्ट करते हों, और उर्दू शायरी में ये मंजरनामा बहुत ही रंगारंग है, ऐसा यूसुफ साहब।
2: बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया, हकीकत यह है जैसे कि आपने अभी बहुत तफसील के साथ में बयान किया, उर्दू शायर मजमूई तौर पर मोहब्बत और उखुवत और यकजहती का पैगंबर बनकर उभरा है मजमूई तौर से। इसलिए बहुत सारे अशार हमें उर्दू शायरी में इस तरह से मिलते हैं जो हिंदुस्तानियत की गंगा जमनी तहजीब की अक्कासी करते हुए नजर आते हैं।
1: जी,
2: एक हो जाएं तो बन सकते हैं खुर्शीद मुबीन, वरना इन बिखरे हुए तारों से क्या बात बने। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं।
3: क्या बात,
2: तो ये है उर्दू शायरी और ये है हिंदुस्तान।
1: सबिया फजल साहिबा,
3: जैसे कि अभी आपने जिक्र किया, असल में मामला ये है कि हिंदुस्तान एक तरक्की पजीर मुल्क है, और बहुत फख्र के साथ नो डाउट हम ये कह सकते हैं कि पूरी दुनिया को ना सिर्फ जमहूरियत का पैगाम दिया हिंदुस्तान ने, एक ऐसी डेमोक्रेसी जो दुनिया के लिए मिसाल बन गई, इसी डेमोक्रेसी को या इस जमहूरियत की बका के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है एकजुट होकर रहें, आपस में यगानगत हो, मोहब्बत हो, खुलूस हो, यकजहती हो, ताकि मुल्क मजबूत हो, और ये मजबूत मुल्क जो है तरक्की की नई शाहराहों पर जब गामजन होगा तो दुनिया के लिए एक मिसाल बन जाएगा। तो इसीलिए ये और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है, हम सब की जिम्मेदारी हो जाती है, खासकर जो अदब से वाबस्ता है, जो शायरी से वाबस्ता लोग हैं, कि वो इसी तरह के मोहब्बत पारे लोगों के लिए हमेशा लिखते रहें, जिनसे हम जैसे लोग जो है तहरीक पाते रहें, और हम जितनी भी हमें हिम्मत है उसी कोशिश के साथ मजबूती के साथ आगे बढ़ें, अपने मुल्क को संजोए हुए, इस एकता को, इस यगानगत को, इस कौमी यकजहती को और ज्यादा मजबूत करने में जहां तक मुमकिन हो अपना रोल निभाएं।
1: वाकई ऐसा ही है मोहतरमा सबिया फजल साहिबा, सच बात यह है जो आने वाले दिनों के लिए पैगाम की बात आप कह रही हैं कि हमारा मुल्क, हमारा खूबसूरत मुल्क हिंदुस्तान यूं ही तरक्की करता रहे, तरक्की की राह पे आगे बढ़ता रहे। एक बात यहाँ पे बहुत वाज़े तौर पे यूसुफ साहब कह दी जाती है और कहनी चाहिए कि ऐसा नहीं है कि उर्दू शायरी सिर्फ मीर गालिब के ज़माने में या कुली कुतुब शाह और वली के ज़माने में कौमी यकजहती की बात कर रही थी। नज़ीर अकबर आबादी की ऐसी नज़में मिलती है, बल्कि सच बात यह है जो इस वक्त अहद हाजिर की जो शायरी है उसमें भी कौमी यकजहती के रंग बहुत साफ तौर पे नजर आते हैं। तो हमारी जो उर्दू शायरी की कई सौ साल की तारीख है, कई सौ साल की तारीख में ये फख्र हमें हासिल है कि हर मकाम पे, हर दौर में ये जरूर है कि किसी शायर के यहाँ उसका रंग जरा मध्यम है और किसी के यहाँ खिल के सामने आता है, नुमाया तौर पे सामने आता है। मिसाल के तौर पे हम मोमिन या गालिब या ज़ौक को पढ़ते हैं, जाहिर सी बात है मोमिन गालिब और ज़ौक के कलाम में भी कहीं ना कहीं वो बात है, जब वो मोहब्बत की बात करता है, दिलों को जोड़ने की बात करता है, तो वो कौमी यकजहती अपने आप वहां भी सामने आ जाती है। लेकिन नज़ीर अकबर आबादी के यहाँ वो मामला बहुत खुल के सामने आता है, इस मिट्टी के जर्रे जर्रे से मोहब्बत का दर्स देते हैं, वो शायरी सामने आती है। बल्कि हिंदुस्तान सदियों सदियों से, हजारों साल से पूरी दुनिया को अमन और आश्ती और शांति का पैगाम देता आया है, और उर्दू शायरी ने इस वाकये को हर मकाम पे बयान किया है। उर्दू शायरी में कौमी यकजहती और एकांगत के रंग के उन्वान से आज हमारे साथ डॉक्टर यूसुफ रामपुरी, डॉक्टर मोहम्मद मुस्तमिर और मोहतरमा सबिया फजल ने गुफ्तगू की। उम्मीद है आपको हमारी ये गुफ्तगू पसंद आई होगी।

0: जय भारत।
1: उर्दू शायरी में यकजहती और यकानगत के रंग, अभी आप इस मौजू पर मुबाहसा सुन रहे थे। निजामत फरमा रहे थे डॉक्टर शफी अयूब। सामिन, हमारे मुल्क की आज़ादी से कबल बरतानवी हुकूमत कुछ ऐसे कवानीन और अहकाम हिंदुस्तानियों पर नाफिज करके उनका इस्तेहसाल कर रही थी और लोगों पर तरह तरह के मजालिम किए जा रहे थे। हवा और पानी जो अहम ज़रूरियात हैं, उनमें नमक भी एक अहम ज़रूरत है। बरतानवी साम्राज्य ने हमारे मुल्क के अंदर साहिल समंदर पर पाए जाने वाले नमक और उसको खाने के काबिल बनाने के तरीके पर अपना कंट्रोल शुरू कर दिया था, जिसके लिए एहतियाज नागुजीर हो गया था। इसीलिए इसकी मुखालिफत में बाबाए कौम महात्मा गांधी ने सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाई। नमक पर टैक्स के खिलाफ गांधी जी ने ये तहरीक गुजरात के साबरमती आश्रम से शुरू की। 385 किलोमीटर का फासला तय करते हुए नौसारी जिले के डांडी नानी गांव तक और नमक बनाकर उस एक्ट को तोड़ा जो अंग्रेजों ने हम पर थोप दिया था, जिसके नतीजे में बरतानवी हुकूमत को नमक का ये जारहाना कानून वापस लेना पड़ा। तो सामीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम अंदाजे नजर।
2: मीडियम वेव 326.7 मीटर अर्थात 918 किलो हर्ट्स पर, डीआरएम चैनल 909 किलो हर्ट्स पर, एफएम 100.1 मेगा हर्ट्स पर, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में आप आकाशवाणी दिल्ली से सुनेंगे कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर। कृपया कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।

अभी आप सुन रहे थे हमारा विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया। ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है हमारा विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स।

स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में। मैं हूं आपके साथ विनीता बेदी। और दोस्तों, हर हफ्ते हमें रहता है इंतजार एक ऐसी शख्सियत से मिलने का इस कार्यक्रम में, जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत होकर उन्होंने अपना जीवन सेना के लिए समर्पित कर दिया और साथ ही साथ हम सबके लिए अनुभवों की एक मिसाल बन गए। और इस कड़ी में आज हमारे साथ हमारी अतिथि हैं भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स के रिटायर्ड विंग कमांडर प्रतीक्षा ठाकरे, जिन्होंने लगभग 1.5 दशक तक भारतीय वायुसेना में अपनी सेवा दी है। रिटायरमेंट के बाद वे कॉरपोरेट वर्ल्ड में काम कर रही हैं, साथ ही साइबर सुरक्षा, इंफोसेक से जुड़े कार्यों में भी आप योगदान दे रही हैं। प्रतीक्षा ठाकरे का नाम विशेष रूप से उन महिला सैन्य अधिकारियों में लिया जाता है जिन्होंने भारतीय वायुसेना में नेतृत्व, अनुशासन और तकनीकी दक्षता का उदाहरण प्रस्तुत किया है।

0: आपकी विशिष्टता और विशेषज्ञता। रक्षा सेवाओं नेतृत्व सुरक्षा और तकनीकी प्रबंधन में रही है। हम आपका स्वागत करते हैं प्रतीक्षा जी, और संदेश टू सोल्जर्स में आज आपने समय निकालकर जो यहाँ शिरकत की इस कार्यक्रम में, उसके लिए आपके हृदय से आभारी हैं।
1: धन्यवाद विनीता जी, मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस मंच का हिस्सा बनना वास्तव में मेरे लिए सम्मान और गर्व की बात है, जहाँ मुझे पूरे भारत के सैनिकों तक अपना संदेश पहुँचाने का अवसर मिल रहा है।
0: जी शुक्रिया, इसलिए भी कि आपने आकाशवाणी में ना केवल आकर हम लोगों को अनुभवों का खजाना सौंपा है, बल्कि इसलिए भी कि आप इसके लिए हमारे ही आभार जता रही हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और एक बात मैं कार्यक्रम शुरू करने से पहले ही आपसे कहना चाहती हूँ, यू आर लुकिंग सो ब्यूटिफुल, आप इतनी यंग हैं, और ऐसे में जब हम आपके साथ रिटायर्ड शब्द इस्तेमाल करते हैं तो वो थोड़ा सा समझ नहीं आता, क्योंकि रिटायर्ड तो आमतौर पे व्यक्ति 60 साल की उम्र के बाद होता है, तो आप इतनी छोटी सी उम्र में रिटायर्ड कैसे हैं?
1: बात आपकी सही है, क्योंकि मैं भी रिटायर्ड ये शब्द थोड़े से बुजुर्ग लोगों के साथ एसोसिएट करती थी, बट क्योंकि मैंने अपने लाइफ के प्राइम 14 साल एयरफोर्स को समर्पित किए हैं और उसके बाद मैं सेवानिवृत्त हुई हूँ, इसी वजह से वो रिटायर्ड शब्द है, और वो मेरे लिए है पक्का, और डेफिनेटली इट इज नॉट फॉर द रैंक बट इट इज फॉर मी फ्रॉम द एयरफोर्स।
0: दैट्स सो सो ब्यूटीफुल। अच्छा एक बात बताएं, आपको कैसे लगा कि आपको एयरफोर्स में आना है, कौन था इसके पीछे या किससे आपको प्रेरणा मिली?
1: विनीता जी, मैं आपको बताना चाहूंगी कि इसके पीछे कोई व्यक्ति नहीं है, बट ये ऐसी एक चीज है जो मुझे विरासत में मिली है
0: जी।
1: क्योंकि अगर मैं शुरुआत करूं तो मेरे दादाजी स्वतंत्र सेनानी थे जो भारत के आजादी के लिए लड़े। उसके बाद परंपरा बढ़ाई गई मेरे फादर ने, जो इंडियन आर्मी में भर्ती हुए और 25 साल की सेवा जो उन्होंने देश के लिए की, उसके बाद वो रिटायर्ड हुए एज कर्नल। और परिवार की मैं तीसरी पीढ़ी हूँ जिसने सिर्फ यूनिफॉर्म वर्दी पहनने का सपना ही नहीं देखा, बल्कि उसको जीने का सपना भी देखा।
0: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इसीलिए दोस्तों मैंने आप सभी से ये बात कही कि आज की हमारी अतिथि अनुभवों का खजाना है, और इतना कुछ है इनके पास हमें बताने के लिए, क्योंकि आपके परिवार में प्रारंभ से ही फोर्सेस के लिए बहुत रुझान रहा है ना। तो भारतीय वायुसेना में यानी इंडियन एयरफोर्स में जब आप आई तो वो एक्सपीरियंस आपके लिए कैसा था?
1: अच्छा विनीता जी, मैं थोड़ा सा आपको पीछे ले जाऊंगी
0: जी,
1: मेरे बचपन के तरफ, जहाँ पे मेरा सपना तो डॉक्टर बनने का था। सो जैसे उस टाइम पे जब मैं छोटी थी, उस टाइम मेजरली दो प्रोफेशन ज्यादा नामचीन हुआ करते थे, एक था डॉक्टर दूसरा था इंजीनियर की। ये दो प्रोफेशन है तो आपने जिंदगी में कुछ पा लिया है, नहीं तो नहीं। जो मैं अभी सोचती हूँ ऐसा कुछ नहीं है, ये सब गलत बातें हैं, और भी बहुत अच्छे प्रोफेशन हैं। बट हालांकि उस टाइम मेरा सपना था डॉक्टर बनने का, और जैसे मैंने आपको बताया, मैंने घर पे एक ही प्रोफेशन देखा था, वो था देश सेवा का
0: जी।
1: तो तब मैंने ठाना कि अच्छा डॉक्टर बनूंगी तो डिफेंस फोर्सेस में ही डॉक्टर बनूंगी, ताकि मेरे दो सपने पूरे हो सके, एक तो देश की सेवा और देश के नागरिकों की सेवा। तो मैं पढ़ाई में अच्छी थी, पढ़ाई करती चली गई, अच्छा किया। बायो में मेरा काफी रुझान था, काफी इंटरेस्ट था, तो बायो लिया। जब मैंने प्री मेडिकल एग्जाम दिया तब मेरे उतने अच्छे नंबर नहीं आए कि मैं MBBS कर पाऊँ, हालांकि इतने नंबर थे कि मुझे डेंटल में एडमिशन मिल सकता था, लेकिन उस टाइम ऐसा लगा कि नहीं, करना है तो MBBS ही करना है। तो जब मैं कॉलेज में एंटर होने वाली थी, उस टाइम मेरा 12th होने के बाद, मेरे फादर तब तक रिटायर्ड हो चुके थे और वो एक इंजीनियरिंग कॉलेज में नागपुर यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे थे।
0: अच्छा,
1: हालांकि उन्होंने और मेरी मम्मी ने कभी भी मेरे ऊपर किसी प्रकार का दबाव नहीं डाला कि तुमने ये करना है या वो प्रोफेशन चुनना है, बट मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं मेरे फादर के मन में था कि मेरी बेटी भी इंजीनियर बने उन्हीं की तरह। तो उन्होंने देखा कि मैं पढ़ाई में अच्छी हूँ, तो उन्होंने बोला मेडिकल के तरफ अगर नहीं हुआ तो क्या हुआ, इंजीनियरिंग कर लो, ये भी एक अच्छा प्रोफेशन है, वहां से भी तुम कुछ ना कुछ अच्छा तो कर ही लोगी, इतना विश्वास उनको मेरे ऊपर था। सो वहाँ से शुरुआत हुई कि ठीक है, इंजीनियरिंग की एग्जाम दी, मुझे एडमिशन मिला नागपुर यूनिवर्सिटी के वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज में, एडमिशन मिला वन ऑफ द बेस्ट ब्रांच उस टाइम की।

0: इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में एडमिशन ली एंड फिर मैंने अपना करियर स्टार्ट किया इन इंजीनियरिंग. तब तक लेकिन कहीं ना कहीं ये लगता था कि आधा सपना तो मेरा रह गया है जो है डॉक्टर बनने का. लेकिन जो बचा आधा था शायद वो भी कहीं छूटता नजर आ रहा था मुझे. लेकिन एक और बात बताना चाहूंगी विनीता जी कि ये हम जो कहते हैं कि हमने सपना छोड़ दिया वो बात नहीं होती. सपना हमें नहीं छोड़ता, ये बात होती है.
1: सो ब्यूटीफुल, कितनी प्यारी बात कही है आपने.
0: सो कहीं ना कहीं वो सपना मुझे ही चेस कर रहा था कि नहीं, तुम अगर डॉक्टर नहीं बनी हो तो डिफेंस फोर्सेस में तो पक्का जाओगी. सो दैट वॉज द पॉइंट जब मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली जहाँ पे एयरफोर्स इंजीनियरिंग कॉलेज में नागपुर में रिक्रूटमेंट के लिए आए. मेरे कुछ फ्रेंड्स भी जा रहे थे तो मैं भी गई उनके साथ कि चलो जाते हैं, क्योंकि थर्ड ईयर तक हमारा प्लेसमेंट हो चुका था वन ऑफ द बेस्ट आईटी कंपनीज में. सो लाइफ तो सेट थी. एज अ यंग पर्सन मुझे लगता था लाइफ में और क्या चाहिए, आपका ग्रेजुएशन हो गया है, आपकी नौकरी लग चुकी है, पैसे कमाना है एंड लाइफ में मजे ही मजे हैं, ये होता था उस टाइम. एंड अभी भी काफी यंग लोगों का दिमाग में माइंडसेट ये होता है. बट स्टिल जैसे मैंने आपको बताया कि वो सपना था मेरे मन में कि वर्दी तो पहननी है, यूनिफॉर्म वॉज माई ड्रीम. सो वैसे करके देन रिक्रूटमेंट के लिए हम गए. एयरफोर्स ने एग्जाम्स कंडक्ट की, उस टाइम फास्ट ट्रैक एग्जाम एक होता था, उसमें एग्जाम हुई, क्लियर किया. एंड द नेक्स्ट थिंग जो मेरे ध्यान में है, मेरे जहन में है कि हम मैसूर पहुंचे, मैं और मेरे फ्रेंड्स SSB देने के लिए. और आपको एक और चीज बताना चाहूंगी, SSB के जो वो 5 दिन होते हैं, मतलब वो लाइफ के आर द बेस्ट डेज, दैट इज द गोल्डन पीरियड. और एक संदेश जो मैं अभी देना चाहूंगी देश के सब यंग बच्चों को कि रिजल्ट कुछ भी हो लेकिन यू शुड एंजॉय, यू शुड एक्सपीरियंस दोज 5 days ऑफ SSB. वो आपको आपके खुद के बारे में इतना सिखाता है जो और कहीं आपको सीखने नहीं मिलेगा.
1: अमेजिंग. और ना सिर्फ सीखने को बहुत कुछ मिलता है बल्कि ये आपका वो सपना पूरा करता है कि आपके तन पर यूनिफॉर्म हो, मन में जज्बा हो और हमेशा आगे बढ़ने के लिए कदम उठें.
0: जी बिल्कुल.
1: और साथ के साथ आपके आपके कदम तो जमीन पर नहीं, आपके कदम तो आसमान के लिए है ना. तो आपने डिफेंस फोर्सेस ज्वाइन करने का सपना ही नहीं देखा बल्कि इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन भी की. इसके आगे की यात्रा की बात आपसे बिल्कुल करेंगे लेकिन उससे पहले आपके इस आसमानी यात्रा की शुरुआत के लिए ये गाना विशेष रूप से आपके लिए समर्पित है.

0: क्या दोस्तों, संदेश टू सोल्जर्स में स्वागत है एक बार फिर से आपका। मैं हूं आपके साथ विनीता बेदी और आज हमारी गेस्ट हैं इंडियन एयरफोर्स की रिटायर्ड विंग कमांडर प्रतीक्षा ठाकरे। और प्रतीक्षा जी, एक बात जो मैं आपसे जानना चाहती हूं इस गाने के बाद पर्टिकुलरली, कि क्या कभी कोई ऐसा है जिसने ये गाना आपको डेडिकेट किया है या कोई आपके लिए ये गाना गाता है?
1: जी हाँ बिल्कुल, ये है मेरे हस्बैंड जो खुद एयरफोर्स में है।
0: ओह नाइस, अच्छा, वो भी एयरफोर्स में?
1: जी हाँ, वो अभी सर्विंग है, विंग कमांडर अभिषेक लूथरा मेरे हस्बैंड है। एंड बिल्कुल, ये गाना वो कभी हमारे लिए गाते हैं, कभी हम उनके लिए गाते हैं।
0: बहुत ही बढ़िया। अच्छा एक बात बताएं, आप एयरफोर्स ने आपकी पर्सनालिटी को कैसे बदल दिया? क्या उसका क्या पॉजिटिव या क्या नेगेटिव तो नहीं ही है, पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या आपकी पर्सनालिटी पे आया? क्योंकि आपने अभी तक जो कुछ भी अपने बारे में बताया प्रतीक्षा जी, मुझे लगता है कि आप तो पहले से ही काफी फोकस्ड और डेडिकेटेड रही, तो एयरफोर्स ने भी कुछ आप में बदला?
1: बिल्कुल, लेकिन एयरफोर्स जाने से पहले जो एक एडवाइस मेरे फादर ने मुझे दिया था, मतलब जस्ट मैं निकल रही थी एयरफोर्स अकेडमी डुंडिगल के लिए, और एक चीज जो आखिरी में उन्होंने मुझे जाते वक्त कही थी कि बेटा ये वर्दी है, ये कोई कपड़ा नहीं है, इसकी इज्जत करना, बिकॉज ये तुम्हें सम्मान और एक पहचान देगी। और उस लास्ट थॉट्स, लास्ट सेंटेंसेस के बाद जब मैं एयरफोर्स अकेडमी पहुंची, सो एक वो अलग दुनिया थी। जैसे मैंने आपको बताया मेरे फादर आर्मी में थे, लेकिन उन्होंने कभी भी मुझे ये नहीं बताया कि ट्रेनिंग में होता क्या है। और जब मैंने उनको वापस जाके पूछा कि आपने मुझे बताया क्यों नहीं, तो उन्होंने बोला वो एक्सपीरियंस तुम्हारा खुद का था और मैं चाहता था कि वो एक्सपीरियंस तुम लो और उसको अपनी तरीके से ढालो, ना कि कोई पहले से दिमाग में कोई चीज लेके चलना, वो ठीक बात नहीं है।
0: सो अमेजिंग। इनफैक्ट मुझे लगता है कि आपने ये जो बात कही है ना, ये उन सभी फादर्स को सुनना चाहिए जो अपने बच्चों के स्कूल बैग्स अपने कंधों में रखकर उनको बस स्टैंड पर छोड़ने के लिए आते हैं। दे शुड लर्न कि प्रतीक्षा जी के फादर ने कहा था कि तुम्हें अपनी ट्रेनिंग खुद अपनी नजरों से अपने एक्सपीरियंस के साथ समझनी है, वही तुम्हारे काम आएगी। ब्यूटिफुल, बहुत ही खूबसूरत बात। अच्छा, अब ट्रेनिंग की बात आपने कही है, तो ट्रेनिंग के दौरान सबसे कठिन चुनौती, सबसे मुश्किल घड़ी आपके लिए कौन सी रही?
1: वैसे तो मुझे बताना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर एज एक्स फौजी अगर मैं ये बोलूं तो कुछ लोग मेरे ऊपर हंसेंगे, लेकिन ट्रेनिंग के टाइम जो सबसे मुश्किल चीज थी मेरे लिए थी, वो थी रनिंग।
0: रनिंग?
1: जी हाँ, ऑल्दो मैं स्पोर्ट्स पर्सन रह चुकी हूँ, मैं वॉलीबॉल खेलती थी, मैं बास्केटबॉल खेलती थी, लेकिन जो अकेडमी में जिस लेवल की रनिंग होती है, क्रॉस कंट्री होती है, उससे मैं डर जाती थी शुरुआत में। बहरहाल ट्रेनिंग होती ही इसके लिए कि आपको पहले ट्रेनिंग में मेंटली टफ बनाया जाता है, उसके बाद आप फिजिकली टफ तो बन ही जाते हो। सो वो एक शुरुआत की चुनौती थी जो मैंने कर ली थी, वो पार कर ली थी मैंने। लेकिन हाँ जी, अगर आप पूछेंगे तो एक रनिंग एक मेरा बहुत बड़ा खौफ था।
0: इसीलिए आपने जमीन छोड़कर आसमान चुना।
1: हो सकता है।
0: अच्छा एक बात और बताइए, विंग कमांडर बनने की जो आपकी जर्नी थी, उसमें कौन कौन से इम्पोर्टेंट हम कह सकते हैं कि माइलस्टोन्स रहे आपके लिए?
1: जी, विंग कमांडर की जर्नी बिल्कुल आपको बताना चाहूंगी, बिल्कुल भी आसान नहीं है। डिफेंस फोर्सेस में जाना ही आसान नहीं हो।

0: सकता है, क्योंकि मैं चाहती हूँ ये एक और चीज़ बताना देश के सैनिकों को और जो एस्पायरिंग बच्चे हैं जो आर्म फोर्सेस ज्वाइन करना चाहते हैं, कि डिफेंस केवल एक नौकरी नहीं है, ये एक जीवन शैली है, इट्स अ वे ऑफ लाइफ। तो आपको पूरी तरह अपने में ढालनी पड़ती है, बिल्कुल आपको आपकी पास्ट लाइफ जो आप एयरफोर्स ज्वाइन करने से पहले जो चल रही थी, जो आपको लाइफ, आपको पूरी तरह छोड़नी पड़ती है, क्योंकि एक वे ऑफ लाइफ का कहने का मतलब ही ये है कि एक डिसिप्लिन लाना, डिसिप्लिन, इंटेग्रिटी एंड कमिटमेंट जो आपको आपके काम की तरफ देनी पड़ती है। तो बहुत सारे उतार चढ़ाव आए हैं उस जर्नी में टू बिकम अ विंग कमांडर, स्टार्टिंग विथ पोस्टिंग्स, आपको अलग अलग जगह पोस्टिंग जाना होता है, आपके फ्रेंड्स छूट जाते हैं और आपको एक्सरसाइजेज में पार्टिसिपेट करना होता है, आपको बंदूक चलानी होती है, आपको फिजिकल फिट रहना पड़ता है, तो सारी चीजें आपके लाइफ में एक साथ हो रही होती है।
1: जी
0: सो दैट इज दैट कम्स फ्रॉम योर मेंटल फिटनेस एज वेल एज फिजिकल फिटनेस। तो ये सारी चीजें आपको ट्रेनिंग में ही आपको तैयार किया जाता है ताकि आगे के लाइफ में आप बिल्कुल प्रिपेयर्ड रहें।
1: अच्छा प्रतीक्षा जी, एक बात और बताइए, हम डिफेंस फोर्सेस की बात कर रहे हैं, डिफेंस फोर्सेस में डिसिप्लिन और टाइम मैनेजमेंट की जो इम्पोर्टेंस है आपकी नज़र में क्या है? वैसे तो मुझे लगता है कि हमारी सबकी ज़िंदगी में, चाहे वो फोर्सेस में हों या सिविलियंस हों, टाइम मैनेजमेंट और डिसिप्लिन तो सबकी लाइफ में होना ही चाहिए।
0: जी
1: लेकिन जब हम फोर्सेस की बात करते हैं तब हम इसे बहुत हाईलाइटेड रूप में देखते हैं, तो एज पर यू इसकी क्या इम्पोर्टेंस है?
0: जी देखिए, डिसिप्लिन, आपने जैसा बोला कि डिसिप्लिन हर एक के लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट है। विदाउट डिसिप्लिन आप, मुझे नहीं लगता आप कभी अपने लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हैं।
1: जी
0: एंड सक्सेस का पैरामीटर हर एक के लाइफ का अलग होता है। सो डिसिप्लिन आर्म फोर्सेस में इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि देखिए आर्म फोर्सेस बना ही इसलिए ताकि वॉर टाइम में हम काम कर सके और देश को प्रोटेक्ट कर सके। सो
1: बिल्कुल
0: उसके लिए पहला स्टेप ही, पहला कदम ही डिसिप्लिन है। अगर आप अपने काम में, आप अपने लाइफ में हर एक चीज को लेके डिसिप्लिन है, तो आपका टाइम मैनेजमेंट भी आएगा, और टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। सेकेंड सेकेंड का भी बहुत फर्क पड़ता है। अगर आप वॉर टाइम सिनेरियो देखेंगे तो हर एक सेकेंड का बहुत बहुत मेजर इम्पॉर्टेंस होता है, स्टार्टिंग फ्रॉम कम्युनिकेशन, ऑन ग्राउंड, इन एयर, फ्लाइंग, एवरीथिंग, हर एक जगह पे टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। सो इसीलिए जैसे आपने कहा, बहुत हाईलाइट किया जाता है क्योंकि डिफेंस फोर्सेस चलती ही इन दो चक्कों पे है, वो है डिसिप्लिन और टाइम मैनेजमेंट। कोई भी एक चीज अगर खराब हुई तो आपकी गाड़ी पटरी से नीचे उतर जाएगी।
1: बिल्कुल ठीक कहा आपने। अच्छा, आप उन खास लोगों में से हैं, या कहना चाहिए कि उन महिला सैन्य अधिकारियों में से हैं जिन्होंने इंडियन एयरफोर्स में लीडरशिप, डिसिप्लिन और टेक्निकल एक्सीलेंस का एग्जाम्पल दिया है।
0: जी
1: तो इस नज़रिए से मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपने लीडरशिप का सबसे बड़ा पार्ट खुद क्या सीखा है? मतलब आपकी नज़र में लीडरशिप की कौन सा ऐसा लेसन है जिसने आपकी पर्सनालिटी को वो बनाया है जो आज आप हैं और बड़े फख्र से सब आपका नाम लेते हैं?
0: जी लीडरशिप में मैं तीन चीजें आपको बताना चाहूंगी। एक है पेशेंस एंड पेशेंटली लिसनिंग, खुद धैर्य रखना और धैर्य के साथ सामने वाले की बात सुनना, ये बहुत जरूरी है। दूसरी बात आती है ऑलवेज लीड बाय एग्जाम्पल। आप अपनी टीम को, अगर आप बोल रहे हैं कुछ करने के लिए, पहले आपको करके दिखाना पड़ेगा। अगर आप बोल रहे हैं इंटेग्रिटी होनी चाहिए, तो आपको इंटेग्रिटी दिखानी होगी, आपको एथिकली एक्ट करना पड़ेगा, वो होता है लीड बाय एग्जाम्पल। और तीसरी चीज है आपकी टीम। आपकी टीम आपकी सबसे बड़ी ताकत होती है, तो आपकी टीम का ख्याल रखना ये आपकी जिम्मेदारी होती है। दैट इज वॉट इज लीडरशिप फॉर मी।
1: अमेजिंग, इतनी खूबसूरत डेफिनेशन आपने लीडरशिप की दी है। तो मुझे लगता है कि आप एक अच्छी लीडर ना सिर्फ डिफेंस फोर्सेस में या इंडियन एयरफोर्स में रही हैं, बल्कि अब जो आप कॉरपोरेट वर्ल्ड में हैं, आपने वहाँ भी लीडरशिप की एक मिसाल कायम की होगी, मैं ऐसा मान के चलती हूँ। तो ये तो खैर बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताई आपने ये कहकर कि आपकी लाइफ में डिसिप्लिन की क्या इम्पोर्टेंस रही है। बट अदरवाइज अगर आपसे ये कहा जाए कि डिफेंस की फील्ड में

0: महिलाओं की भूमिका को आप कैसे देखती हैं? ये बात मैं आपसे इसलिए पूछ रही हूं कि ना सिर्फ एक महिला होने का गौरव आप रखती हैं, बल्कि एक बेहतरीन ऑफिसर के रूप में आप जानी जाती हैं। आप रिटायर्ड हुई हैं, लेकिन आज भी लोग आपका नाम बहुत सम्मान से लेते हैं। तो आपको क्या लगता है कि महिलाओं की क्या भूमिका है इस फील्ड में, रक्षा सेवाओं में खासकर?
1: जी देखिए, महिला या मर्द, मुझे लगता है दोनों में कोई फर्क नहीं है। फॉर दैट मैटर, इवन डिफेंस फोर्सेस में कोई जेंडर बायस नहीं है
0: जी,
1: क्योंकि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो अगर मैं आपको मेरी ट्रेनिंग के डेज में लेके जाऊं, तो ऐसी कोई चीज नहीं है जो एक महिला होके मैंने नहीं की है, या किसी और मेल ऑफिसर ने हमारे साथ जो थे ट्रेनिंग में उन्होंने ज्यादा की है या हमने कम की है। तो अगर ट्रेनिंग में भेदभाव नहीं है तो आगे भी कोई भेदभाव नहीं होता है। सो एज ए वुमेन, अगर आप मुझे पूछे, तो बहुत ज़रूरी है कि आप आपके मेल काउंटर पार्ट्स के साथ कंधे से कंधा मिला के चलें। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक जो बंधन होता है वो हमारे दिमाग में होता है कि पता नहीं मैं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। वो जो एक सेल्फ डाउट होता है वो हमारे अंदर होता है, ना कि बाहर। बाहर सब को दुनिया एक समान देख रही है, और स्पेशली डिफेंस फोर्सेस सबको एक समान ही देख रही है। तो एज अ वुमेन, मैं बस इतना बताना चाहूंगी कि आपने अपने ऊपर सेल्फ डाउट नहीं करना चाहिए। आप उतनी ही केपेबल हो जितना एक मेल ऑफिसर होते हैं।
0: जी, बेहतरीन। मुझे लगता है कि कोई जेंडर बायस एटलीस्ट डिफेंस फोर्सेस में नहीं है। ये बात आपकी इस स्टेटमेंट ने तो साबित कर ही दी है। तो अगर किसी के मन में ये वहम हो कि औरत है ये कैसे कर पाएगी, या महिलाएं कैसे इस फील्ड में जा सकती हैं, या आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ये औरतों के लिए नहीं है, उन सब की बात का एक बहुत ही करारा जवाब आपने अपने इस स्टेटमेंट के द्वारा दिया है। हैट्स ऑफ टू यू, आई रियली गिव यू अप्लॉज फॉर दिस आंसर। और मुझे लगता है कि जिस तरह आपने इंडियन एयरफोर्स को अपनी भूमिका से बहुत गौरवान्वित किया है, तो ये बादलों का गाना तो आपके लिए बनता ही है।

0: संदेश टू सोल्जर सुन रहे हैं आप आकाशवाणी रेनबो पर। और आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं इंडियन एयरफोर्स के रिटायर्ड विंग कमांडर प्रतीक्षा ठाकरे। और दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त विनीता बेदी। मैं बहुत सारी बातें कर रही हूं प्रतीक्षा जी से, बहुत कुछ अच्छा जानने को भी मिल रहा है और काफी कुछ आपके साथ भी शेयर कर रहे हैं। तो एक बात जो मैं आप सबकी तरफ से प्रतीक्षा जी से पूछना चाहती हूँ वो ये है कि आपके लिए अब तक अगर पूछा जाए तो आपकी जिंदगी का सबसे गौरव भरा पल कौन सा था, आपका प्राउडेस्ट मोमेंट ऐसा कौन सा था जिस पर आपको लगे कि ये वो पल है जो मैं सपना देख रही थी जिसका।
1: विनीता जी, वैसे तो काफ़ी है। पहला तो था और अभी भी है, जो जिस दिन मैंने यूनिफॉर्म पहली बार पहनी, वो पक्का मेरा एक प्राउडेस्ट मोमेंट था। बट उसके बाद मैं कहना चाहूँगी कि हर सैनिक के जीवन में एक ऐसा पल होता है जो सिर्फ याद नहीं रहता, लेकिन उनके रूह में बस जाता है। और मेरे जीवन में एक ऐसा पल आया था 26 जनवरी 2015 में। 26 जनवरी 2015 में जो आरडी परेड हुई थी,
0: रिपब्लिक डे परेड।
1: रिपब्लिक डे परेड,
0: हाँ जी,
1: उसमें आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स का इंडिविजुअल ऑल वुमेन कंटिजेंट बना था और मैं उस कंटिजेंट का पार्ट थी एयरफोर्स की तरफ से।
0: ओह वंडरफुल।
1: अब आप सोचिए, एक लड़की जिसका बचपन का सपना था यूनिफॉर्म पहनना, देश सेवा करना, अब वो देश के सबसे बड़े मंच पे खड़ी थी, वो था राजपथ।
0: हाँ
1: और पहले तो उसका सिलेक्शन हुआ, पहले तो 2 महीने की उसकी पूरी ट्रेनिंग होती है, स्टार्टिंग फ्रॉम दिसंबर, क्योंकि जनवरी एंड में होता है, 26 जनवरी को होता है पूरा परेड। तो पहले तो, जैसे मैंने आपको बताया, वो मेंटल टफनेस से स्टार्ट होती है, फिर फिजिकल टफनेस पे जाती है, बिकॉज वो आसान नहीं होता है।
0: हाँ
1: वो परेड होती है लगभग 14 किलोमीटर लंबी परेड, जो
0: ओ
1: आपको पूरे कंटिजेंट के साथ ताल में ताल मिला के रिदम में आपको मार्च करते हुए जाना होता है।
0: पूरे 14 किलोमीटर तक।
1: बिल्कुल। तो वो सिर्फ एक मार्च नहीं होती, वो एक गौरव होता है और एक अनुशासन होता है कि आपकी पूरी टीम के साथ कंधे से कंधा और कदम से कदम मिला के चले, और वो भारत की एक शक्ति का प्रदर्शन होता है पूरे विश्व के सामने।
0: ट्रू।
1: सो जब हम राजपथ पे चले, तब मार्च किया कंटिंजेंट के साथ, और फिर वो पल आया जहां हमने भारत के सुप्रीम कमांडर, जो राष्ट्रपति थे उस समय के, श्री प्रणब मुखर्जी जी, और उनके साथ हमारे प्रधानमंत्री जी थे श्री नरेंद्र मोदी जी, और भारत के इतिहास में पहली बार अमेरिका के प्रेसिडेंट आए थे इंडिया में एज चीफ गेस्ट फॉर दैट ईयर, मिस्टर बराक ओबामा। सो एक वो जो सलामी थी,
0: जी
1: वो सिर्फ हमारी ट्रेनिंग नहीं थी, वो एक हर लड़की की मेहनत थी, हर महिला का सपना था, और उसके साथ हमको पता था पूरे देश का विश्वास है हमारे साथ। बट आज भी मैं उस पल को याद करती हूँ तो रोंगटे खड़े हो जाते, क्योंकि वो एक सिर्फ पल नहीं था, बट वो एक हर महिला, हर लड़की, इस देश की हर लड़की का एक वो सपना था कि
0: सपना।
1: उस राजपथ पे मैं चलूँ, क्योंकि

0: उस दिन मैंने एक और बात सीखी थी कि सीमाएं बाहर नहीं होती, जैसे मैंने आपको पहले बताया, वो हमारे दिमाग में होती है। और जब आप
1: ओके
0: वर्दी पहनते हैं तो आप खुद को प्रूव नहीं करते, लेकिन आप आने वाली पीढ़ियों के लिए रास्ता बनाते हैं। तो मुझे लगा वो उस तरफ हमने एक छोटा सा योगदान दिया था।
1: कितनी सुंदर बात आपने कही है कि आने वाली पीढ़ियों के लिए आप एक मिसाल बनते हैं, आप उनके लिए एक रास्ता तैयार करते हैं जिस पर चलकर वो आपसे भी आगे निकल पाएं, आपके सपनों को और अधिक बुलंदियों पे पहुंचा सके। बहुत ही खूबसूरत बात और बहुत सुंदर विचार हैं आपके। प्रतीक्षा जी, एक बात और बताइए, ये जब आपने अपना अनुभव बताया रिपब्लिक डे परेड पर, तो उस वक्त जब आप राजपथ पर थी, आपको अपने बचपन के उस सपने को पूरा होते देखने की खुशी तो होगी ही, साथ में ये भी फीलिंग थी कि आपने अपने पापा को प्राउड किया है आज।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल। और मैं फिर से उस चीज़ पे जाना चाहूँगी जहाँ मैंने बोला कि आप सपना छोड़ सकते हो लेकिन सपना आपको नहीं छोड़ता है।
1: कितनी
0: क्योंकि
1: सुंदर बात।
0: एक और चीज़ मैं बताती हूँ आपको, जब मैं स्कूल में थी तब मैं एनसीसी में थी, और तब भी मुझे मौका मिला था रिपब्लिक डे परेड पे जाने का, लेकिन तब दिमाग में था कि मेरी स्टडीज मिस हो जाएंगी, मेरी पढ़ाई मिस हो जाएगी, क्योंकि तब मैं 9th स्टैंडर्ड में थी। तब मैंने दिल पे पत्थर रख के अपनी मैम को बोला था कि मैम मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि मेरी पढ़ाई मिस हो जाएगी। तो वो सपना मेरा शायद अधूरा रह गया था जो एयरफोर्स ने पूरा किया है।
1: हाउ स्वीट, कितनी प्यारी बात है ये कि आपने बचपन के सपने को बड़े होकर जिया, और ना सिर्फ जिया बल्कि दूसरों के लिए एक मिसाल बना दिया। बहुत ही सुंदर। अच्छा प्रतीक्षा जी, एक बात बताइए, आप तो इंडियन एयरफोर्स का हिस्सा रही हैं, तो बहुत थ्रिल माना जाता है इस डिफेंस फोर्स को, तो आपका भी कोई थ्रिलिंग एक्सपीरियंस रहा होगा जो आज आप हमारे साथ बांटना चाहेंगी?
0: जी बिल्कुल। और थ्रिलिंग तो डेफिनेटली है, एयरफोर्स इज फुल ऑफ थ्रिल। और उस थ्रिल में मैंने एक जो काम किया था वो था पैरा जंपिंग का। पैरा जंपिंग एक ऐसा अनुभव रहा है मेरी लाइफ में जिसने मुझे बाहर से तो बदला ही है, जैसे एयरफोर्स ने मुझे बाहर से बदला है, लेकिन पैरा जंपिंग ने मुझे अंदर से बदल दिया।
1: क्या बात है।
0: उसका अनुभव ऐसा रहा कि Mi-17 हेलीकॉप्टर से आपको 5 जंप्स करनी होती है, तब आप ट्रेन पैरा जंपर बनते हैं।
1: और ये जो 5 जंप करनी होती हैं, ये किसी टाइम पीरियड में करनी होती हैं?
0: जी ये 2-3 दिन के पीरियड में करनी होती है, क्योंकि मॉर्निंग जंप्स होती है, आपकी नाइट जंप्स होती है, सो वो सब मिला के 2-3 दिन में आपको कंप्लीट करनी होती
1: सिर्फ
0: है।
1: 2-3 दिन में?
0: जी हाँ।
1: माय गॉड।
0: और उसके पहले अगेन हर एक चीज़ की ट्रेनिंग तो होती ही है, तो वो ट्रेनिंग के बाद फिर आप में वो कॉन्फिडेंस आता है कि आप जंप करें। और वो लगभग 3,000 से 5,000 फीट की ऊंचाई से जंप की जाती है। और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि वो सिर्फ एक फिजिकल एक्ट नहीं होता है, वो अपने अंदर का जो डर है वो निकालने के लिए होता है। और आपको मैं एक और चीज़ बताऊंगी, उस टाइम तक मुझे ऊंचाई का डर था, थोड़ा सा तो डर रहता था मुझे। और जब मेरी पहली जंप थी मैं इतनी एक्साइटेड थी उस पहले जंप के लिए, क्योंकि वो होता है ना, इट्स एन अननोन टेरिटरी, आपको पता नहीं है क्या होने वाला है। तो पहली जंप तो बहुत मजेदार थी और इतना खूबसूरत एक्सपीरियंस, इतना खूबसूरत अनुभव था वो, कि आपको पता नहीं होता आगे क्या होने वाला है, बस एक एड्रेनलिन रश होता है, एक एक्साइटमेंट होती है।
1: जी
0: क्योंकि जैसे कहते हैं कभी कभी अनजानी चीज भी डराती नहीं है लेकिन आपको उड़ना सिखाती है।
1: हाँ,
0: लेकिन दूसरा जंप जो था वो थोड़ा अलग था, क्योंकि तब तक मुझे पता चल चुका था कि पहले जंप में हुआ क्या था। तो दूसरी जंप में मुझे ऑनेस्टली बताओ डर लगा था, और मुझे ऐसा लगा कि मैं किसी सुसाइड मिशन पे निकली
1: ओ
0: हूं।
1: माय गॉड।
0: तीसरे जंप के बाद मैं बहुत कंफर्टेबल हो गई थी और एक मैजिकल फीलिंग थी उस टाइम पे, क्योंकि आप जब जंप कर जाते हो आप वहां पे होते हो जहां पे और कोई शोर नहीं है, कोई नहीं है आपके आसपास, सिर्फ आप हो, चारों तरफ सन्नाटा है और आपकी अपनी सांस से आप सुन पा रहे हो।
1: इनर स्ट्रेंथ
0: इनर
1: बेसिकली।
0: स्ट्रेंथ, वो एक ऐसा पल है जब आपको लगता है कि एक पक्षी होना कैसे लगता है, दैट इज एक्चुअल फ्रीडम। एंड वो एक पॉइंट होता है जहां आप खुद से कनेक्ट करते हो।
1: ऑसम, कितना सुंदर एक्सपीरियंस रहा होगा आपका, और सुनकर ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं अगर आप देख सकें तो। मतलब ऐसा जब आप ये अभी एक्सप्लेन कर रही थी, ये बता रही थी, तो ऐसा लग

0: था जैसे हम आपके साथ खड़े हुए और आपके साथ ही जंप करने के लिए नीचे झांक रहे हैं और भगवान को याद कर रहे हैं। तो ये आपका डिस्क्रिप्शन तो बहुत ही खूबसूरत है। आई मस्ट से कि आप बताती बहुत अच्छा है अपने अनुभव। और एक और बात बताइए, देखिए अभी आपने अभी तक जो भी बात बताई वो आपकी सक्सेस स्टोरीज थी।
1: जी
0: क्या ऐसा कभी हुआ कि आपको किसी असफलता का सामना करना पड़ा हो? और अगर ऐसा हुआ तो फेलियर का डर और फेलियर से उबरना, मतलब उस डर को पीछे छोड़ना या उस डर से बाहर निकलना, ये आपका तरीका क्या है इसके लिए?
1: एक कहीं मैंने ये बड़ी अच्छी चीज़ पढ़ी थी कि असफलता अंत नहीं होता, ये बस एक नया रास्ता दिखाना और उसका दिखाने का तरीका होता है।
0: जी
1: सो फेलियर्स तो बिल्कुल आए हैं लाइफ में, बहुत फेलियर्स है और वो जिंदगी ही क्या जहाँ पे फेलियर्स ना हो।
0: हाँ
1: लेकिन
0: बिल्कुल
1: आपको लाइफ सिखाती है कि आप गिरिए, आप उठिए, आप अपने कपड़े झाड़िए, साफ कीजिए और आगे बढ़िए, ये जिंदगी है।
0: बहुत सुंदर।
1: तो आप जैसे बता पूछ रही हैं कि फेलियर्स काफी आए हैं, लेकिन हाँ इनिशियली एक जो सेटबैक लगता है आपको, एक थोड़ा सा धक्का सा लगता है, आपने उस पीरियड से जल्दी उबर जाना चाहिए। अगर आप उस फेज में ज्यादा दिन तक रहे या ज्यादा टाइम तक रहे, फिर वो फेलियर आपको खा जाएगा। एंड वही मेंटल टफनेस डिफेंस फोर्सेस हर एक इंसान को सिखाती है, रादर डिफेंस फोर्सेस तो सिखाती है, लेकिन एक संदेश जो मैं सबको देना चाहूंगी कि ये आपने खुद में भी डेवलप करना चाहिए कि फेलियर्स तो आएंगे, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं सबके लाइफ में फेलियर्स तो आए हैं, लेकिन कितनी जल्दी आप उन फेलियर्स से उबर के आगे बढ़ना सीख लेते हैं वो एक्चुअल लाइफ है।
0: बिल्कुल, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। मुझे लगता है कि जो भी आपके साथ थोड़ी देर भी बैठ जाता होगा ना प्रतीक्षा जी, वो एक बेहतर इंसान बनकर ही बाहर निकलता होगा। आई एम श्योर फॉर दैट, बिकॉज यू हैव सच पॉजिटिव वाइब्स, इतनी पॉजिटिव एनर्जी है आप में जो हर किसी को जो भी आपके संपर्क में आता है उसको प्रेरित ही करता है, मोटिवेट ही करता है। अच्छा, आपकी इस जब भी हम आपके एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो आपकी सेवा काल के दौरान ऐसा कोई आपका एक्सपीरियंस रहा जिसने आपको बहुत इमोशनल किया हो और मोटिवेट किया हो?
1: इमोशनल किया हो,
0: जी
1: ऐसे तो काफी इंसिडेंट हुए हैं, क्योंकि जैसे अगर मैं बोलूंगी कि कुछ चीजें, कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे रहे हैं लाइफ में, मेरे प्रोफेशनल लाइफ में, जो स्टार्ट किए हैं बहुत ज्यादा मेहनत करके, रिसर्च करके, और फिर कहीं ना कहीं उनको आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि अलग अलग उसके रीजंस हैं। कुछ भी रीजंस हो सकते हैं, बिकॉज देखिए गवर्नमेंट सर्विस है, आपका बजट होता है, काफ़ी सारी चीज़ें होती है, तो किसी भी रीज़न के वजह से शायद वो आगे ना बढ़े, तो तब बहुत बुरा लगता है, क्योंकि आपने मतलब मेरे मेरे नज़रिए से मैंने उसमें अपनी लाइफ झोंक दी थी, लेकिन अगर उसका जो आउटकम मैंने एक्सपेक्ट किया था वो अगर नहीं मिला तो बुरा तो लगता है,
0: जी
1: लेकिन ठीक है, दैट्स अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। एंड वही सेटबैक्स है जिसको आपको पीछे छोड़ देना है और आगे बढ़ते चले जाना है।
0: इसी बात पर हम एक गाना सुनते हैं जो मोटिवेट भी करता है और इमोशनल भी कर देता है। केसरी फिल्म का गाना जो आपको बेहद पसंद है, संदेश टू सोल्जर्स में आज आप हैं दोस्तों इंडियन एयरफोर्स की रिटायर्ड विंग कमांडर प्रतीक्षा ठाकरे जी के साथ।

0: संदेश टू सोल्जर्स सुन रहे हैं आप मेरे यानी कि विनीता बेदी के साथ, और आज हमारी गेस्ट हैं इंडियन एयरफोर्स की रिटायर्ड विंग कमांडर प्रतीक्षा ठाकरे जी, जिनकी बातें ना केवल मोटिवेट करती हैं बल्कि सुनकर ऐसा लग रहा है, ऐसा जज्बा पैदा हो रहा है कि आज ही एयरफोर्स ज्वाइन कर ली जाए। तो मेरे मन में जब ये विचार आ रहे हैं तो मैं सोच रही हूँ कि जितने युवा ये प्रोग्राम सुन रहे होंगे उनके मन में किस तरह के विचार आ रहे होंगे। तो मैं अब आपसे यही पूछना चाहती हूँ प्रतीक्षा जी कि अगर युवा इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो उनको क्या क्या तैयारी करनी चाहिए, पहली बात, और दूसरा एफ कैट और सी डी एस जैसी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए आपकी क्या सजेशन है युवाओं के लिए।
1: जी विनीता जी, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, क्योंकि मेरे हिसाब से ये प्रोग्राम, ये मंच उसी के लिए है ताकि हम जो एस्पायरिंग बच्चे हैं जो फौज ज्वाइन करना चाह रहे हैं, हम उनको अच्छा संदेश दें ताकि वो ज्वाइन कर सकें। सो तैयारी के हिसाब से देखिए, मैं एक चीज़ शुरुआत में कहना चाहूँगी कि अगर आपका लक्ष्य नौकरी है तो डिफेंस फोर्सेस आपके लिए सही जगह नहीं है, लेकिन अगर आपका सपना देश सेवा है तो इससे बढ़िया कोई जगह नहीं है। तैयारी के हिसाब से पहले तो पक्का आप अपनी पढ़ाई अच्छे से करिए, पढ़ाई में मन लगाइए, क्योंकि आपने ये चीजें सुनी होंगी कि फौज में पढ़ाई नहीं है, जबकि मैं बताना चाहूंगी फौज में बहुत ज्यादा पढ़ाई है, और जो सीनियर ऑफिसर्स भी हैं जो जनरल ब्रिगेडियर बन जाते हैं वो भी पढ़ाई करते रहते हैं, तो पढ़ाई का कोई पीछा नहीं छूटता है अगर आपने फौज ज्वाइन कर लिया। तो ये एक दिमाग में जरूर रखिए कि पढ़ाई तो रहेगी रहेगी, तो आप पहले से खुद को प्रिपेयर कीजिए, पढ़ाई अच्छे से कीजिए, अच्छे से आप अपना 12th पास कीजिए, अच्छे नंबर लाइए, और ग्रेजुएशन के बाद अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप ग्रेजुएशन में भी अच्छे से पढ़ाई कीजिए, क्योंकि आजकल जो अलग अलग तरीके के एग्जाम्स हैं, एफ कैट है, जैसे एयरफोर्स के लिए एफ कैट है, एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट, और तो इसमें इनिशियली आपके जो ग्रेजुएशन है उसके बेसिस पे एग्ज़ाम होता है। तो अगर आप इंजीनियरिंग ब्रांच में आप एडमिशन ले रहे हैं या इंजीनियरिंग ब्रांच में आप आना चाहते हैं एयरफोर्स में, सो आपके इंजीनियरिंग का जो बैकग्राउंड है उसके बेसिस पे आपको सवाल पूछे जाते हैं, प्लस थोड़ी सी आपकी जनरल नॉलेज जो सामान्य ज्ञान होता है उसके बारे में भी आपने थोड़ी सी तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि आप डिफेंस फोर्सेज में जा रहे हैं एंड उसके रिलेटेड भी एक क्वेश्चन पेपर होता है, एक एग्जाम होता है। तो ऑल एंड ऑल

0: पूरी तरीके से आपको पढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी, उससे आपका कोई निजात नहीं है।
1: जी
0: उसके अलावा एक आपको मेंटल टफनेस आपको खुद में करना पड़ेगा, आपको उसकी तैयारी करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर आप मेंटली टफ हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इमोशनल लोगों की जगह नहीं है, नहीं, ये बहुत अलग अलग चीजें हैं। आप इमोशनल हो सकते हैं लेकिन आपको मेंटली टफ रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप मेंटली टफ है तभी आप ट्रेनिंग कंप्लीट कर पाएंगे जो मोस्टली फिजिकल होती है। जो इनिशियल 6 महीने की ट्रेनिंग होती है वो ज्यादातर फिजिकल और कम पढ़ाई, और उसके बाद जब आप स्पेशलाइजेशन में जाते हैं तब उसमें ज्यादा पढ़ाई होती है, लेकिन फिजिकल एक्टिविटी आपकी कभी नहीं रुकती। मेरे लास्ट डे तक भी, जहां मैंने 14 साल कंप्लीट किए एयरफोर्स में, आखिरी दिन तक फिजिकल एक्टिविटी चल रही थी। पीटी, परेड, रनिंग, जिससे मैं बहुत डरती थी, वो मैंने आखिरी दम तक किया है एयरफोर्स के, और अभी भी करती हूँ, और इसीलिए फिजिकली फिट रहती हूँ। तो ये कुछ प्रिपरेशन है, बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन आपको अगेन डिसिप्लिन रखना पड़ेगा। आपकी लाइफ में आपको डिसिप्लिन रखना पड़ेगा, आपको खुद को कमिट करना पड़ेगा कि हाँ ये मुझे करना है। अगर आपने वो सपना देखा है तो आप वो सपना जिएंगे, क्योंकि सपने वो नहीं होते जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते।
1: वाह, कलाम साहब ने ये बात कही थी,
0: जी
1: बहुत सुंदर। और ये जो आपने एक संदेश दिया है सभी युवाओं को, मुझे लगता है कि हालांकि अभी बहुत कुछ मुझे आपसे बात करनी है, जानना है, लेकिन एक ये छोटा सा गाना मैं जरूर चलाना चाहूंगी आपकी इस बात पर
0: जी
1: कि जब आप कह रही हैं कि मेंटल फिटनेस के साथ साथ फिजिकल फिटनेस भी बहुत जरूरी है एंड वाइस वर्सा, तो ये एक गीत सभी युवाओं के लिए प्रतीक्षा जी की तरफ से।

0: सेगमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हम सभी के लिए, आपका यहां पर होना प्रतीक्षा जी। दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स की रिटायर्ड विंग कमांडर प्रतीक्षा ठाकरे आज हमसे संदेश टू सोल्जर्स में बात कर रही हैं। बहुत कुछ सजेशंस उन्होंने दी, बहुत कुछ मोटिवेशन दिया, लेकिन एक बात जाने बगैर भला हम आपको कैसे जाने दे सकते हैं। आप स्वयं एक महिला हैं और महिला होने के नाते आपने विशेष प्रयास किए हैं अपनी जगह बनाने के लिए। तो सेना में करियर बनाने के लिए युवतियों के लिए आपका क्या संदेश है? युवाओं को तो सभी संदेश देते हैं, बट विशेष रूप से युवतियों को आप क्या कहना चाहती हैं?
1: युवतियों को मैं एक चीज जो मेरे जहन में बसी है और जो मैंने भी सीखी है, ऐसा नहीं है कि मैं सीख के आई थी, लेकिन मैंने भी अपने एक्सपीरियंस से सीखी है कि सेल्फ डाउट कभी नहीं करना चाहिए। ये कभी नहीं सोचना चाहिए क्या मैं ये कर पाऊंगी, क्या वो लड़का कर रहा है, वो आदमी कर रहा है, तो क्या मैं ये कर पाऊंगी। नहीं, आप सब कुछ कर सकती हो, सब कुछ। आप अभी देखिए

0: आई थी, लेकिन मैंने भी अपने एक्सपीरियंस से सीखी है कि सेल्फ डाउट कभी नहीं करना चाहिए। ये कभी नहीं सोचना चाहिए क्या मैं ये कर पाऊंगी, क्या वो लड़का कर रहा है, वो आदमी कर रहा है, तो क्या मैं ये कर पाऊंगी। नहीं, आप सब कुछ कर सकती हो, सब कुछ। आप अभी देखिए, हर दुनिया में हर फील्ड में लड़की है, ऐसी कोई फील्ड नहीं है जहाँ पे लड़की नहीं है, नॉट ओनली इंडिया, अक्रॉस द वर्ल्ड। तो वैसे ही मिलिट्री में भी, डिफेंस फोर्सेस में भी सेल्फ डाउट बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और आप में अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है कि हाँ, ये मैं करूँगी। देखिए, फेलियर्स तो आएंगे, वो
1: बिल्कुल
0: सबके लाइफ में आते हैं, वो जेंडर देख के नहीं आते हैं। सो फेलियर आते हैं, फेस इट, गिरिए, उठिए, कपड़े झाड़िए और चलते बनिए।
1: मुझे आपकी ये वाली बात तो बहुत ही पसंद आई है कि अगर कभी ऐसा कुछ होता भी है, गिर भी पड़ते हैं, तो भी रुकना नहीं है, कपड़े झाड़िए और आगे चलिए। तो सभी लड़कियों को, सभी महिलाओं को जो फोर्सेस ज्वाइन करना चाहती हैं, इस बात से डेफिनेटली प्रेरणा मिलेगी। अच्छा, आप अब क्योंकि रिटायर हो चुकी हैं, क्या आपके लाइफ में रिटायरमेंट के बाद कोई चेंजेस आए हैं क्या?
0: जी, सबसे बड़ा चेंज तो वो है, जो सुबह उठते से ही जो मैं यूनिफॉर्म पहनती थी, वो एक बहुत बड़ा चेंज है, और वो मैं बहुत मिस करती हूँ, क्योंकि मैं अपने हस्बैंड को देखती हूँ कि रोज़ वो यूनिफॉर्म पहन के यूनिट जाते हैं, तो वो एक चीज़ मैं बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। उसके अलावा देखिए, वर्क वाइज तो अभी भी मैं वर्किंग हूँ, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हूँ, मैं जितना मेरा एक्सपीरियंस है आर्म फोर्सेस से, जितना मैं वहाँ अप्लाई कर सकती हूँ करती हूँ, तो कमिटमेंट में तो कोई कमी नहीं है। लेकिन एक जो ऑरा होता है, और आजकल की जो जेंजी लैंग्वेज में कहते हैं वाइब, वो थोड़ी सी मुझे मिसिंग लगती है, क्योंकि बाहर कॉरपोरेट में काफी लोग अकेले अकेले से काम करते हैं, जबकि डिफेंस फोर्सेस में इट इज ऑलवेज अ टीम वर्क। सो आई जेन्युइनली मिस दैट टीम वर्क एंड द वाइब ऑफ डिफेंस फोर्सेस।
1: ओह स्वीट, ये जो वाइब आपने बताई है ना, मुझे लगता है कि किसी भी फील्ड में जब सब मिलकर कोई काम कर रहे होते हैं तो अपने आप वो काम भी बहुत अच्छा होता है, और एक वाइब तो पॉजिटिविटी की रहती ही है। अच्छा, महिला अधिकारियों के लिए इंडियन एयरफोर्स में क्या क्या ऐसे अवसर हैं कि वो भी आपकी तरह अपने आप को एक प्राउड ऑफिसर कह सकती हैं?
0: पहली बात होगी, किसी चीज़ के लिए मना मत कीजिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप अनकंफर्टेबल हो किसी चीज़, कोई काम करने के लिए, और तब भी आप हाँ बोल रहे हैं, नहीं। लेकिन आप में वो क्षमता होनी चाहिए कि आप अपॉर्चुनिटी को भापें,
1: जी
0: और किसी भी चीज़ के लिए मना मत कीजिए, किसी भी चीज़ से डरिए मत कि ये होगा नहीं होगा, कोई बात नहीं, चलिए आप काम करिए, और आप में वो कॉन्फिडेंस पूरा होना चाहिए। तो वही कॉन्फिडेंस आपको अपने अंदर जगाना पड़ेगा, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी बोला कि जो बाधाएं होती है, जो जो हम बाउंड्रीज बनाते हैं, वो हमारे दिमाग में होती है, बाहर कोई नहीं बना रहा हमारे लिए वो बाउंड्रीज, हम खुद ही बनाते हैं। तो अगर आपने वो बाउंड्रीज पार कर ली, आपने वो जो लक्ष्मण रेखा आपने पार कर ली, तो वर्ल्ड इज ऑन योर फिंगर टिप्स, आप दुनिया, पूरी दुनिया अपनी मुट्ठी में कर सकती हैं। वो
1: क्या बात है।
0: कॉन्फिडेंस बिल्कुल मत छोड़िए अपना।
1: तो आपको ये लगता है कि हमारी युवा पीढ़ी, स्पेशली जितनी भी हमारी महिलाएं हैं, वो अगर कॉन्फिडेंस का गहना पहन ले तो उन्हें फिर किसी और गहने की जरूरत नहीं पड़ेगी?
0: बिल्कुल सही, आपने बहुत अच्छे से उसको एक्सप्लेन किया, बिल्कुल वही गहना पहनना है हमने, और कोई पहने ना पहने, लेकिन कॉन्फिडेंस का गहना हमेशा होना चाहिए हमारे पास।
1: थैंक यू सो मच प्रतीक्षा ठाकरे जी, आज आप संदेश सोल्जर्स में आई हैं और आपने अपने इतने खूबसूरत अनुभव और उससे भी बढ़कर प्रेरक विचार हम सबके साथ बांटे हैं। मुझे लगता है कि डिफेंस फोर्सेस का इससे खूबसूरत उपहार हमारे श्रोताओं के लिए और कुछ हो ही नहीं सकता। तो समय निकालने के लिए आपका आभार, अपनी पॉजिटिविटी हमारे साथ शेयर करने के लिए आपका आभार, और चलते चलते एक सल्यूट तो आपके लिए बनता ही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और हम सभी को प्रेरित करने के लिए। आई होप आपका एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा रहा होगा आज यहाँ।
0: धन्यवाद विनीता जी, यहाँ पहली बात तो मुझे बुलाने के लिए और ये बातचीत करने के लिए। और आखिरी में बस एक लाइन कहूँगी कि देश सेवा सिर्फ एक ड्यूटी नहीं, ये एक ऑनर है, और जो ये ऑनर पा लेता है वो जिंदगी में कभी नहीं हारता। धन्यवाद।
1: थैंक यू सो मच। शुक्रिया आपका। और दोस्तों सुनते

0: रहिए संदेश टू सोल्जर्स। हम सभी दिल से सलाम करते हैं अपने सोल्जर्स का। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से प्रतीक्षा ठाकरे जी का। धन्यवाद। जय हिंद।
1: जय हिंद।

0: अभी आप सुन रहे थे हमारा विशेष कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
1: मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्ज पर, डीआरएम चैनल 909 किलोहर्ट्ज पर, एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर। आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। संध्या के 5 बज चुके हैं। अब युवा साथी अपना दैनिक कार्यक्रम सुने। युवा

युववाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी युवा साथियों की सेवा में आज नमस्कार जसवीर सिंह की तरफ से। युवा साथियों, आज का ये अंक लेकर हम उपस्थित हैं। आज के इस अंक में हम आज की बात तो करेंगे, साथ में आपको सुनवाएंगे चंद फिल्मी गीत। खैर दोस्तों, रोज की भांति आज भी आज की बात शुरू करते हैं। दोस्तों, सबका साथ सबका विकास, ये एक स्लोगन आपने अक्सर सुना होगा। इसका अर्थ है कि सभी वर्गों को साथ मिलाकर विकास करना। जो भारत सरकार की समावेशी विकास नीति का प्रतीक है और सबका साथ सबका विकास, ये नारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रस्तुत एक महत्वपूर्ण नारा है जो भारत के विकास के लिए समर्पित है। यह नारा न केवल विकास की दिशा में एक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है, बल्कि यह सभी वर्गों, विशेषकर वंचित और गरीब समुदायों के कल्याण को प्राथमिकता देने का भी संकेत करता है। यह नारा दोस्तों यह सुनिश्चित करता है कि विकास की प्रक्रिया में सभी वर्गों को शामिल किया जाए, चाहे वह आर्थिक रूप से कमजोर हो या सामाजिक रूप से वंचित। और दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने इस नारे को अपने भाषणों में बार बार दोहराया है, ये बताते हुए कि यह केवल एक नारा नहीं बल्कि एक सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने ये भी कहा कि सबका साथ सबका विकास का अर्थ है सभी को साथ लेकर चलना और विकास की प्रक्रिया में सभी की भागीदारी सुनिश्चित करना। सबका साथ सबका विकास भारत के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो न केवल आर्थिक विकास को दर्शाता है बल्कि सामाजिक समरसता और समावेशिता को भी बढ़ावा देता है। यह नारा भारत की भविष्य के विकास के लिए भी एक मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में कार्य करता है। और दोस्तों, इस प्रकार सबका साथ सबका विकास का नारा भारत के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है जो सभी वर्गों के कल्याण और विकास को सुनिश्चित करने का प्रयास करता है। और दोस्तों, ये नारा हम सभी के अंदर एक जोश भरता है क्योंकि सबका विकास सबका साथ इस सब की भलाई की बात है। खैर दोस्तों, बातचीत तो और भी होती रहेगी, पहले हम आपको गीत सुनवा दें।

0: हेलो।
1: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
0: फिर से
2: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए। अकेले आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
3: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
0: सर इतने कहाँ से?
3: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
0: सर, 2 लाख?

0: क्या हुआ पापा?
1: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
2: अरे
1: काट दिया।
0: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
1: फ्रॉड?
0: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
1: तो पैसे गवाओगे।
3: RBI कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: जी हाँ युवा साथियों, बात सबका विकास सबका साथ के साथ है, और दोस्तों ये सही भी है। और बात अगर हम विकास की करते हैं, भारत की करते हैं, तो दोस्तों एक विकास में कुछ भूमिकाएं हमारी ऐसी भी हैं जो निश्चित रूप से हमें विकसित भारत को अग्रणी पंक्ति में खड़े होने पर रोकती है। कुछ एक दोस्तों बातें, कुछ एक आदतें, वो हमें बदलनी होगी। खैर दोस्तों, आपने देखा होगा कि प्लास्टिक मुक्त भारत एक अभियान है जिसके बारे में आप सभी जानते हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि उन प्लास्टिक वस्तुओं से जो बनी हुई चीज़ें हैं उनको हम अपनी ज़िंदगी के अंदर कम से कम उपयोग में लाएं, खासकर वो थैलियाँ जिसमें हम अपने बाजार से अपने साथ खरीद कर उसमें वस्तुएँ लेकर आते हैं। और जब वो वस्तुएँ हम लेकर अपने रसोई में या अपने घरों पर अगर सजा लेते हैं, उसके बाद वो थैली हम यूँ बाहर फेंक देते हैं, वो थैलियाँ धीरे धीरे कूड़े का ढेर बनती जा रही है, और उसका जो उससे मुक्ति पाना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। और दोस्तों अब ये इंसान की अपनी सुविधा के लिए ढेर सारी चीज़ें बनाई गई हैं, और युवा साथियों जो ये आगे चलकर उसी के लिए जी का जंजाल बन गई हैं। खासकर पॉलीथीन की थैलियाँ भी उन्हीं में से एक है। आजकल प्लास्टिक का उपयोग हर जगह हो रहा है, जिसके कारण मानव प्रकृति के अनुदान से लाभान्वित होता गया है, उसके लोगों में बढ़ोतरी होती गई। प्राकृतिक का ख्याल रखे बगैर कई माननीय गतिविधियों से ऐसे आविष्कार किए जिसमें प्रकृति को नुकसान होना शुरू हुआ। और युवा साथियों, नतीजा ये रहा कि प्रकृति के नाम पर मानव ने प्रकृति में बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप किया। इस भयंकर आविष्कारों में एक प्लास्टिक को भले ही मानव का आविष्कार क्यों ना मानी, लेकिन ये प्लास्टिक उसकी प्रकृति का सबसे बड़ा शत्रु बनकर उसे प्रदूषित कर रहा है, जिसे प्रकृति ने हमारे पूर्वजों को एक अच्छा वातावरण दिया है। और साथियों ये आगे भी ये प्रकृति हमें हमारी भावी पीढ़ियों को अच्छा वातावरण देने में तत्पर है, मगर न जाने प्लास्टिक प्रदूषण से हम प्रकृति का गला घोटने को उतारू क्यों हैं। अगर युवा साथियों दिन की शुरुआत से लेकर रात में बिस्तर में जाने तक अगर ध्यान से गौर किया जाए तो आप पाएंगे कि प्लास्टिक ने किसी न किसी रूप में आपके हर पल पर, हर वो क्षण पर कब्जा कर रखा है। और दोस्तों ये कब्जा जो है प्लास्टिक से हमारा इतना मोह, निश्चित रूप से हमें उन प्रदूषणों की तरफ ले जा रहा है जहाँ पर हमारी जो जीवन की जो कड़ी है, संरचना है, वो खतरे में पड़ रही है। इसलिए हम चाहते हैं कि ये जो प्लास्टिक मुक्त भारत अभियान है इसमें हम अपना सहयोग दें। कोशिश करें कि अगर आप सब्जी मंडी जा रहे हैं और वहाँ से सब्जी खरीदने जा रहे हैं तो निश्चित रूप से आप अपने घर पर बना हुआ कपड़े का थैला साथ लेकर जाएं। और दोस्तों जब भी आपको दुकानदार आपको पॉलीथीन की थैली में कोई वस्तु दे तो निश्चित रूप से आप उसे मना कीजिए और कहिए कि हमारे पास थैला है। और दोस्तों इस तरह से ये जो पॉलीथीन मुक्त भारत है या प्लास्टिक मुक्त भारत है तभी बन पाएगा, और कुछ एक समस्याएं जो अपने आप इस बंद होने पर उसका भरपाई हो पाएगी। खैर युवा साथियों, बातचीत हम और भी करते हैं, पहले हम आपको सुनवा देते हैं आशा भोसले मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में यादों की बारात फिल्म का ये गीत।

सुनो सुनो सुनो गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का

0: उठाएं अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
1: आरबीआई कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: जी हाँ युवा साथियों, बातचीत पॉलिथीन थैलियों की थी, बातचीत प्लास्टिक मुक्त भारत की थी। और दोस्तों, जैसे कि हमने आपको बताया कि यदि आप अपने घर से कोई भी कपड़े का बना हुआ थैला लेके जाते हैं, तो निश्चित रूप से एक हम ये एक सहायता कर रहे हैं भारत को उस प्रदूषण से बचाने के लिए जिसका ना इलाज बीमारी है। और दोस्तों, ये तब भी हो सकता है जब मैन्युफैक्चरर इसकी तरफ ध्यान दे, उत्पादक इसकी तरफ ध्यान दे और वो भी अपने जो उत्पादन है थैलियों का वो कम कर दें। तो निश्चित रूप से जब ग्राहक अपने साथ थैला लेकर नहीं जाएगा तो दुकानदार उसको थैली में ही कोई वस्तु डाल कर देगा। और जब वस्तु थैली में लेकर आने की ये जो परंपरा है चल पड़ी, तो निश्चित रूप से ये जो थैलियां हैं वो गली के बाहर यानी गली के अंदर वो पड़ी मिलेंगी, और जिससे पशु है, चाहे वो फैलता हुआ कचरे का ढेर है और वो नालियों में अटकती हुई थैलियां हैं, ये सभी हमारे लिए एक जी का जंजाल बन सकती है। और दोस्तों, बात ये भी है कि इस तरह की मानसिकता को हमें स्वस्थ बनाना है और जागरूक होना है अपने कर्तव्यों के प्रति, अपने दायित्वों के प्रति। खैर दोस्तों, अब बात मानसिक स्वास्थ्य की बात हम कर ले तो मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता माह हर साल मई में मनाया जाता है, जो मानसिक स्वास्थ्य के महत्व पर बहुत जरूरी ध्यान आकर्षित करता है। युवा साथियों, ये व्यक्तियों द्वारा सामना और किए जाने वाले संघर्षों को स्वीकार करने और मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों से जुड़े कलंक को कम करने के लिए खुली बातचीत को प्रोत्साहित करने का समय है। इस महीने मानसिक स्वास्थ्य के महत्व को कई व्यक्तियों के सामने आने वाली चुनौतियाँ, उन सभी की एक सहायक समझदार वातावरण को बढ़ावा देने में कैसे योगदान कर सकते हैं। मानसिक स्वास्थ्य से तात्पर्य हमारा ये है युवा साथियों कि भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक भलाई से है। ये हमारे सोचने, महसूस करने और कार्य करने के तरीकों को प्रभावित करता है और ये निर्धारित करता है कि हम तनाव को कैसे संभालते हैं, दूसरों से कैसे संबंध बनाते हैं और हम किस तरह से किस व्यक्ति को हम अपने दिल के पास में अजीज बनाकर रख सकते हैं, उसका चुनाव कैसे करते हैं, इस बात पर भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। बचपन और किशोरावस्था से लेकर वयस्कता तक के जीवन के हर चरण में अच्छा मानसिक स्वास्थ्य आवश्यक है। दुर्भाग्य से युवा साथियों, मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आम है जो दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रभावित करती है। अवसाद, चिंता और तनाव से संबंधित विकार जैसी स्थितियां न केवल व्यक्ति को बल्कि उनके परिवारों को और कार्यस्थलों को और समुदाय को भी प्रभावित करती है। जब तक हम मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बात करते हैं तो हम अक्सर मन की संतुलित स्थिति बनाए रखने की महत्व पर ध्यान केंद्रित करते हैं। और श्रोताओ, जब हम अपने मन के केंद्र बिंदु पर ध्यान करते हैं तो चाहे आपके समक्ष कितनी से बड़ी समस्या भी सामने आ खड़ी हो, तब उससे आपको निजात पाने का एक तरीका, एक रास्ता मिलता है। और जिस तरह हम अपने शारीरिक स्वास्थ्य का ख्याल रखते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, व्यायाम करते हैं और जरूरत पड़ने पर डॉक्टर से मिलते हैं, उसी तरह मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी ध्यान, समझ और देखभाल जरूरत होती है। क्योंकि युवा साथियों, इन सभी बातों को हम अगर यदि नज़रअंदाज कर दें तो निश्चित रूप से हमारी मानसिकता जो नकारात्मक की तरफ बढ़ने लगेगी। और नकारात्मक शब्द एक ऐसा शब्द है जहां आपकी सोच ऐसे स्थल पर, ऐसे तल पर जा गिरेगी जहां से आपको उठ पाना बहुत मुश्किल होगा। इसलिए हमेशा आपने सुना होगा और कहते भी सुना होगा कई विद्वानों को कि आप अपनी सोच को सकारात्मक रखिए, क्योंकि सकारात्मक ये एक ऐसा विटामिन कैप्सूल है, ये दवाई है जिससे आपकी मानसिकता की तंदुरुस्ती होना बिल्कुल तय है। खैर दोस्तों, अब तय ये भी है कि हम आपको गीत सुनवा दें। गीत सुनवाते हैं अमिताभ।

0: वेश साय तू ए क्या गा रही है?
1: अपने प्यार को याद कर रहा है और कह रहा है कि
0: ऐसे नहीं, गा के सुनाओ ना।
1: गा के

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: जी हाँ युवा साथियों, बात स्वस्थ मानसिक जागरूकता की। और दोस्तों, हम यदि हम बात करें कि सामान्य मानसिक स्वास्थ्य चुनौतियां जो हैं हमारे सामने डिप्रेशन के रूप में उभरती है, ये दुखी होने की सबसे ज़्यादा ये कारण है कि हम मानसिक जागरूकता में ये भी ध्यान रखें कि हमें डिप्रेशन में नहीं जाना है। क्योंकि दोस्तों, एक दुख और सुख दो ऐसी चीज़ें हैं जब आप उसको बहुत आसानी से समझ सकते हैं। दुख के अंदर हम यदि किसी से किसी प्रकार की कोई उम्मीद लगाते हैं और ये समझते हैं कि वो हमारे अनुसार ही काम करेगा या जो हम चाहते हैं वो करेगा, तो अगर वो ये नहीं करता है तो निश्चित रूप से उसे दुख होता है। जब दुख होता है तो वो डिप्रेशन की तरफ भागता है, डिप्रेशन की तरफ जाता है, और जहाँ पर उसकी जो मानसिक स्वास्थ्य है वो धीरे धीरे बिगड़नी शुरू हो जाती है। और इसके बाद दोस्तों, जो जीवन की गुणवत्ता में कमी का शिकार हो जाती है, और ये जो सभी गतिविधियां हैं इसमें कठिनाई महसूस होती है। और डिप्रेशन में कोई भी काम करने के लिए आप सोचते हैं तो युवा साथियों, आपको ऐसा लगता है कि आप शायद वो नहीं कर पाएंगे, मगर जबकि डिप्रेशन का एक जो सूत्रधार है वो है नकारात्मक सोच की। और अगर हम बात करें तो इसी से जुड़ते हुए बिंदु की पहलुओं की, तो घबराहट की बीमारी भी इसमें चिंता विकार जैसी सामान्यकृत चिंता विकार, सामाजिक चिंता विकार, आतंक विकार में अत्यधिक चिंता, भयशाली भय शामिल होता है जो दैनिक गतिविधियों में बाधा उत्पन्न करता है। युवा साथियों, व्यक्ति लगातार बेचैनी का अनुभव कर सकता है जिसमें ध्यान केंद्रित करना या आराम करना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। और इससे दोस्तों होता क्या है, तनाव, क्रॉनिक तनाव एक आम समस्या है जो अक्सर काम, रिश्तों या वित्तीय चिंताओं से संबंधित होती है, और इसको भी अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए, और ये भी इसका एक कारण बनती है। फिर भोजन में विकार, दोस्तों जब हम भोजन करते हैं तो उसमें जो एक संतुलित आहार जो होता है उसकी तरफ हम ज़्यादा ध्यान दें, और जो अनगल जो खाद्य पदार्थ हैं जो उन पर हम ध्यान ना देकर और संतुलित आहार पर, पौष्टिक आहार पर हम ध्यान दें, तो ये भी एक सामान्य जागरूकता में हमें वृद्धि करता है। और युवा साथियों की मानसिक स्वास्थ्य का समर्थन करने के लिए बड़े बड़े काम करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ कुछ सरल तरीके भी हैं, जैसे कि सक्रिय श्रोता बने, कभी कभी किसी की

सहायता करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि उसकी बात को सुन लें, एक ऐसा गैर आलोचनात्मक स्थान प्रदान करें जहां व्यक्ति को लगे कि उसकी बात सुनी और समझी जा रही है। और अगर हम दूसरा पहलू को हम छेड़े या उसको टच करें या उसको छुएं, तो मानसिक स्वास्थ्य, विकारों के बारे में जानने से आपको ये समझने में मदद मिल सकती है कि लोग किस स्थिति में गुजर रहे हैं और उन्हें किस प्रकार सहायता प्रदान की जा सकती है। और ये सब जो बातें हैं हमें बेहतर रूप से समझनी चाहिए, क्योंकि ये हमसे जुड़ी हुई हैं। इसलिए युवा साथियों, मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता माह हमें याद दिलाता है कि मानसिक स्वास्थ्य हमारे समग्र स्वास्थ्य का एक अभिन्न अंग है। चाहे आप मानसिक स्वास्थ्य समस्या से जूझ रहे हों या बस इसके बारे में अधिक जानते नहीं हैं, तो उसको जानने की कोशिश कीजिए दोस्तों, उसमें पढ़िए। आपको इन दिनों में इंटरनेट पर ऐसी बहुत से बिंदु हैं जिस पर आप अपने विचारों को साझा कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं, उसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। खैर युवा साथियों, बात ये भी है कि जानकारी ये भी है कि कारवां फिल्म से मंगला गीत लेकर आए हैं, आवाज़ें हैं लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी की। तो सुनते हैं कारवां फिल्म का ये गीत।

0: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम,
1: जी
0: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
1: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
0: पर ये होगा कैसे?
1: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
0: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
1: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
0: बस
1: बस
0: समझ गया।
1: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: जी हाँ युवा साथियों, बात अब हम करते हैं कि फिट इंडिया मूवमेंट की। फिट इंडिया मूवमेंट योजना 29 अगस्त को भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई थी। उद्घाटन समारोह नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में हुआ था, जिसमें राजनेताओं, नौकरशाहों, फिल्म और टेलीविज़न हस्तियां, खेल हस्तियां भी, आम जनता की भारी भीड़ भी थी और भारत की सभी मूल मार्शल आर्ट, संस्कृति, नृत्य रूपों, योग सत्रों और बहुत कुछ के प्रदर्शन थे। और दोस्तों, इसका एक मेन जो मुख्य उद्देश्य यही था कि हम सभी अपनी फिटनेस पर ध्यान दें, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें। जैसे कि हमने इस प्रोग्राम के मार्फत युवा साथियों, हमने आपसे बातचीत की, जहाँ मानसिक स्वास्थ्य आपकी ज़रूरी है, वहाँ पर शारीरिक स्वास्थ्य भी होना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसके लिए दोस्तों वही बात है कि आपको अपने ज़िंदगी के अंदर योगा, व्यायाम और अच्छा खाना और सुबह जल्दी उठना, रात को जल्दी सोना, ये कुछ आदतों को अपने अंदर ढालना होगा। और निश्चित रूप से जब आप इन आदतों पर इन विचार करना शुरू कर देंगे तो निश्चित रूप से ये जो फिट मूवमेंट इंडिया का जो ये आंदोलन है, ये जो क्षण है, जो 29 अगस्त 2019 से ये आरंभ हो चुका है, और उन सभी बातों पर भी हमें अपने जो विचार है या हमारे वो सकारात्मक रूप से हमें हमारे शरीर के अंदर, हमारे फिटनेस में दिखाई देगा। और इसलिए श्रोताओं, हमें अपनी जो फिटनेस है उसको ध्यान में रखना है, और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है कि हमें उन फिटनेस के लिए जितने भी ज़रूरी जो आवश्यक बिंदु है, जिसमें हमने बात की व्यायाम करने की, रात को जल्दी सोने की, सुबह जल्दी उठने की, और ये सब बातें उस फिटनेस के अंदर ज़रूरी हैं, और हम भी और आप भी सभी लोग, हम उस फिट मूवमेंट इंडिया के उस अभियान को हम सफल बनाएं। आइए सुने ये पहले गीत अनामिका फिल्म से, आवाज़ लता मंगेशकर की।

यह युवा साथी अभी आपने गीत सुना, लता मंगेशकर की आवाजों में अनामिका फिल्म से ये गीत। युवा साथियों, बात फिट इंडिया अभियान की और भारत में एक राष्ट्रव्यापी ये अभियान है जिसका उद्देश्य व्यवहार में परिवर्तन लाना और अधिक शारीरिक रूप से सक्रिय जीवन शैली की ओर बढ़ना है। और युवा साथियों, इस अभियान की जो आयोजन का जो प्रस्ताव है वो इस प्रकार से थे, जो फिटनेस को इतना आसान और मज़ेदार और निशुल्क इसको बढ़ावा देना है, केंद्रित अभियानों के माध्यम से फिटनेस को वृद्धि देने वाली फिटनेस और विभिन्न शारीरिक गतिविधियों पर जागरूकता फैलाना, ये एक इसका मुख्य उद्देश्य था। इस अभियान का ये भी था कि देश खेलों को बढ़ावा देना, फिटनेस को प्रत्येक विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, पंचायत, ग्राम आदि तक पहुंचाना, भारत की नागरिकों को जानकारी साझा करना और जागरूकता बढ़ाने और निजी फिटनेस कहानियों को साझा करना और प्रोत्साहित करने हेतु एक मंच प्रस्तुत करना। और दोस्तों, जैसे कि हमने आपको बताया कि ये जो फिटनेस फिट इंडिया अभियान जो था, जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 29 अगस्त 2019 को ये शुरू किया गया था, और युवा साथियों, इसमें हम सभी का योगदान बहुत ज़रूरी है। हम भी आओ संकल्प लें कि फिट इंडिया

जी हाँ युवा साथियों, ये तो आज के इस अंक की कुछ बातें आपसे हमने साझा किया और साथ में आपको फिल्मी गीत भी सुनवाए। और बात इतनी सी है कि प्रोग्राम के आखिरी में हम आपको बता दें कि आज के इतिहास में 14 मई 1657 को शिवाजी के ज्येष्ठ पुत्र और उत्तराधिकारी शंभाजी का जन्म हुआ था, और आज के दिन यानी 14 मई 1892 को प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और राजनीतिक कार्यकर्ता

चंद्र गुहा का जन्म हुआ था और 14 मई 1883 में प्रसिद्ध न्यायविद, अधिवक्ता और शिक्षा शास्त्री अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर का जन्म हुआ था और 14 मई 1923 को भारतीय फिल्मों के प्रसिद्ध निर्माता व निर्देशक मृणाल सेन का जन्म हुआ था। 14 मई 1978 को प्रसिद्ध नाटककार जगदीश चंद्र माथुर का निधन हुआ था। 14 मई 2010 को भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत का निधन

नाटककार जगदीश चंद्र माथुर का निधन हुआ था 14 मई 2010 को, भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत का निधन हो गया था, और 14 मई 2016 को तमिल विद्वान और लेखक कंडासामी कुप्पूसामी का निधन हो गया था। खैर युवा साथियों, ये था आज का इतिहास जिसे हमने आपको साझा किया, और हम बात कर रहे हैं युववाणी के आज के इस अंक की, और आज का ये अंक अंतिम पड़ा पर, मगर उससे पहले हम बात कर लेते हैं कल के युववाणी अंक की। तो कल के युववाणी अंक में हम आपको सुनवाएंगे आज की बात, विषय होंगे राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका, ग्रामीण विकास में युवा, अंतरिक्ष में भारत की उपलब्धियां, नेत्रदान महादान और आज का इतिहास, विषय पर ये जानकारी आपको सुनवाई जाएगी कल के युववाणी अंक में। तो युवा साथियों, कार्यक्रम का अंतिम गीत बिल्कुल तैयार है, हम आपको सुनवा देते हैं, और ये गीत हमने लिया है फिल्म सिलसिला से, आवाज़ राहुल शर्मा की।

अभी युवा साथी अपना दैनिक कार्यक्रम युववाणी सुन रहे थे। मीडियम वेव 326.73 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्ज़ पर, डीआरएम चैनल 909 किलोहर्ट्ज़ पर, एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर। आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। संध्या के 6 बज चुके हैं। आइए अब सुने कार्यक्रम विवरण। पहले सुनिए इस सभा के शेष प्रसारणों की जानकारी और उनका प्रसारण समय। संध्या 6:05 पर आप सुनेंगे सैराइकी की कड़ी संख्या 5। चौपाल कार्यक्रम होगा संध्या 7 बजे। इसमें जानकारी का विषय होगा घर पर वर्मी कंपोस्ट बनाए, NPK और सूक्ष्म पोषक तत्व और उपलब्ध रही मौसम और बाजार संबंधी आपको जानकारी भी दी जाएगी। और किसान भाई सुनेंगे राजस्थानी कहानी आम पुच्छ, कवि विनोद स्वामी। फिल्म संगीत संध्या 7:45 पर। रात्रि 8 बजे कार्यक्रम आप सुनेंगे एक ही फिल्म से जानकारी और गीत। सुगम संगीत रात्रि 9:15 पर। रात्रि 9:30 पर आप सुनेंगे काउंट्री वाइड इनसाइट कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। विज्ञान पत्रिका आकाशवाणी जयपुर से अनुप्रसारित होगी रात्रि 10 बजे। और रात्रि 10:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत। श्रोताओ अभी आप सुन रहे थे इस सभा के शेष कार्यक्रमों की जानकारी। आइए अब सुने कल प्रसारित होने वाले मुख्य मुख्य कार्यक्रमों की जानकारी। सवेरे 6:10 पर आप सुनेंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना चिंतन। सुबह 6:45 पर इसमें विषय रहेगा मानवता और वाचक स्वर स्वामी धर्मेंद्र नंद की। कार्यक्रम विवरण सवेरे 6:50 पर। खेती और आवास्ते कार्यक्रम में जानकारी का विषय होगा सवेरे 7:10 पर कृषि जल में संरक्षण। इसके अलावा आप सुनेंगे राजस्थानी लोक भजन। मानस गान की कड़ी संख्या 244 सुनवाई जाएगी सवेरे 7:20 पर। सुप्रभात कार्यक्रम होगा सवेरे 7:30 पर। इसमें जानकारी के विषय होंगे योग और व्यायाम के लाभ, क्रोध मनुष्य का शत्रु, जल्दबाजी कितनी घातक। ये सभी जानकारी हम आपको सुप्रभात कार्यक्रम में सवेरे 7:30 पर देंगे। सुगम संगीत कार्यक्रम में आप भजन सुनेंगे सवेरे 8:45 पर। राजस्थान लोक संगीत के कार्यक्रम मरुमंगल में सवेरे 9:10 पर कलाकार होंगी मीनाक्षी शर्मा। डुएट सॉन्ग फिल्म संगीत में आप सुनेंगे सवेरे 9:30 पर। गा मेरे मन गा ये थीम बेस्ड फिल्म संगीत कार्यक्रम आधारित होगा सवेरे 10 बजे। गीतमाला कार्यक्रम आप सुनेंगे फरमाइशी का फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सवेरे 11 बजे। कार्यक्रम विवरण दोपहर 12 बजे। दोपहर 12:05 पर फौजी भाई कार्यक्रम सुनेंगे सैनिकों के लिए। दोपहर 12:30 पर कार्यक्रम होगा सुगम संगीत। दोपहर 12:50 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम खेत खलियान। जानकारी का विषय होगा बुआई से पहले करें खेत तैयारी। घर आंगन कार्यक्रम आप सुनेंगे दिन में 1:05 पर। इसमें महिलाएं जानकारी सुनेंगी अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस, गर्मी में पौधों की देखभाल, पौष्टिक नाश्ते से घटाए वजन और आम से बनाए बेहतरीन व्यंजन। फिल्म संगीत आप सुनेंगे दिन में 2:30 पर। दिन में 3 बजे आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से उर्दू सर्विस। इस प्रसारण को केवल न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर और FM पर आपको सुनने को मिलेगा और रखरखाव के चलते मीडियम वेव प्रसारण बंद रहेगा। युववाणी कार्यक्रम में युवा साथी सुनेंगे जानकारी राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका, ग्रामीण विकास में युवा, अंतरिक्ष में भारत की उपलब्धियां, नेत्रदान महादान और आज का इतिहास विषय पर जानकारी। सैराइकी की कड़ी संख्या 6 सुनेंगे।

0: ਨਫੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਚ ਉਮਰ ਲੰਘ ਗਈ ਸਾਰੀ, ਪਤਾ ਹੁਣ ਤੀਕ ਵੀ ਨਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮਿਲਿਆ ਕਿਆ ਹੈ। ਸਾਵੇਂ ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਪਿਆਵੇ ਸਈ ਸਲੀਮ ਇਕਬਾਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚ ਸਈ ਬੇਦਲ ਸਰਹੱਦੀ ਦੀ ਇੱਕ ਗਜ਼ਲ। ਸਾਵੇਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਤਮ ਥੀਂਦਾ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਕੂ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜੋ। ਸਾਡਾ ਪਤਾ ਨੋਟ ਕਰ ਗਿਨੋ, ਜੋਕ ਮਾਹੀ ਦੀ ਮਾਰਫਤ ਸਟੇਸ਼ਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੇਡੀਓ ਜਲੰਧਰ। ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਧਾ ਸਾਕੂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਸੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਵੇਲੇ ਵੱਤ ਮਿਲਸੂ। ਹੁਣ ਡੀ ਐਸ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਖੁਦਾ ਹਾਫਿਜ਼।
1: ਸ਼ਰਧਾ ਅਭੀ ਆਪ ਸੁਣ ਰਹੇ ਥੇ ਸਰਾਇਕੀ ਕੀ ਕੜੀ ਸੰਖਿਆ ਪਾਂਚਵੀਂ। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी जयपुर से हिंदी में प्रादेशिक समाचार।
2: जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, आतंकवाद को लेकर भारत का रुख एकदम कड़ा और स्पष्ट। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने ईंधन बचाने के लिए निजी वाहनों का उपयोग कम करने और सार्वजनिक परिवहन को प्राथमिकता देने की अपील की। निर्वाचन आयोग ने 16 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों में SIR के तीसरे चरण की घोषणा की और प्रदेश में अगले 2 दिन में एक नए पश्चिमी विक्षोभ के असर से तापमान में मामूली गिरावट की संभावना। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। और अब समाचार विस्तार से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत का रुख आतंकवाद के खिलाफ कड़ा और स्पष्ट है। उन्होंने कहा कि देश की सुरक्षा को लेकर सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। वे आज नागौर के मेड़ता में राव दूदा प्रतिमा अनावरण समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि भारत आतंकवाद का साथ देने वालों को मुंह तोड़ जवाब देने की ताकत रखता है। श्री सिंह ने कहा कि देश अब रक्षा उपकरणों के मामले में आत्मनिर्भर बनता जा रहा है। उन्होंने राजस्थान की धरती को वीर भूमि बताते हुए कहा कि देश की रक्षा में यहां के सपूतों का बड़ा योगदान है।
3: राजस्थान के युवाओं को तो वैसे भी सेना से बहुत गहरा रिश्ता है। जब भी मैं कहीं जाता हूं सेवाओं के ऊपर, कोई ना कोई राजस्थान का ऐसा बहादुर नौजवान अथवा अधिकारी कोई हमको मिल जाता है। यहां के घर घर से फौजी निकलते हैं। आज भी हमारी सेनाओं में शामिल होकर नागौर के युवा पूरी निष्ठा के साथ भारत की सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं। सरकार भी योजनाओं के मामले में उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही है। पिछले 10 वर्षों में भारत ने अपनी सुरक्षा नीति में ऐतिहासिक बदलाव किया।
2: समारोह में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार महापुरुषों की याद में पैनोरमा बनवाकर नई पीढ़ी को इतिहास से जोड़ने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार युवा, महिला, गरीब और किसानों के उत्थान के लिए लगातार काम कर रही है।
4: कहते हैं कि हमारे 4 जातियां हैं, किसान, मजदूर, युवा, महिला। अगर इनका उत्थान होगा तो हमारे देश का उत्थान होगा, हमारे प्रदेश का उत्थान होगा। इस ऐतिहासिक आयोजन में प्रदेश के हजारों किसान और पशुपालक उसमें भाग लेंगे। कृषि विशेषज्ञ, वैज्ञानिक, तकनीकी जानकार, कृषि पंजीकरण उद्योगपति सभी उसमें आने वाले हैं। हम चाहते हैं कि हमारे हर किसान का भला हो, हमारी माता बहनें भी आगे बढ़े। इसके लिए लगातार हमारी सरकार नवाचार करते हुए हम काम कर रहे हैं। हमारी केंद्र और राज्य सरकार की योजना है, उनका आपको लाभ लेना है, क्योंकि बहुत सारी योजना हमारी केंद्र और राज्य सरकार की है, उनका लाभ जन जन तक कैसे पहुंचे, इसके लिए हम काम करते हैं।
2: इसके बाद रक्षा मंत्री ने जोधपुर में पूर्व उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत की प्रतिमा का अनावरण किया। रातानाड़ा सर्किल पर हुए इस समारोह में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी मौजूद रहे। रक्षा मंत्री ने पूर्व उपराष्ट्रपति श्री शेखावत को भारतीय लोकतंत्र का चलता फिरता विश्वविद्यालय बताते हुए कहा कि उनका जीवन जनसेवा और सादगी का अद्वितीय उदाहरण है। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने ईंधन बचाने की कवायद करते हुए अपने आधिकारिक काफिले में वाहनों की संख्या घटाने का फैसला किया है। राज्यपाल ने आज इस पर अमल करते हुए जयपुर में एयरपोर्ट जाते समय पायलट कार, एम्बुलेंस और दमकल जैसे वाहनों का उपयोग नहीं किया। श्री बागड़े ने आम जनता से भी अपील की है कि वे निजी वाहनों का कम उपयोग करें और सार्वजनिक परिवहन

0: को प्राथमिकता दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊर्जा संरक्षण की अपील के बाद राज्य में ईंधन बचाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसी सिलसिले में कल अलवर जिले में विभिन्न विकास परियोजनाओं का वर्चुअल माध्यम से लोकार्पण किया जाएगा। इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और अश्विनी वैष्णव वर्चुअली जुड़ेंगे। वे भिवाड़ी में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का शुभारंभ करेंगे। साथ ही सरे खुर्द पाइपलाइन और टपूकड़ा के सरकारी स्कूल में नए शैक्षणिक ब्लॉक का भी उद्घाटन किया जाएगा। उधर प्रशासन स्तर पर भी ईंधन बचाने को लेकर व्यापक जागरूकता देखी जा रही है। इसी कड़ी में पाली में जिला कलेक्टर रविंद्र गोस्वामी और पुलिस अधीक्षक मोनिका सेन आज पैदल चलकर कार्यालय पहुंचे। केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज गुजरात के सासन गिर में लायन स्पीशीज स्पॉटलाइट कार्यक्रम का उद्घाटन किया। यह आयोजन अगले महीने नई दिल्ली में होने वाले इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA शिखर सम्मेलन की तैयारियों के तहत किया गया। श्री यादव ने बताया कि आगामी 1 और 2 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में पहला IBCA सम्मेलन आयोजित होगा। इसमें 95 देशों के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। इसका मुख्य उद्देश्य बाघ, शेर, तेंदुए, चीता और जगुआर जैसी 7 बड़ी बिल्ली प्रजातियों का संरक्षण करना है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने आज बीकानेर के सुजान देसर में 40 सरकारी विद्यालयों को स्मार्ट बोर्ड और फर्नीचर वितरित किए। हुडको की ओर से 25 करोड़ रुपए की लागत से उपलब्ध कराए गए इन संसाधनों से 15,000 से अधिक विद्यार्थी लाभान्वित होंगे। श्री मेघवाल ने पावर ग्रिड कॉरपोरेशन द्वारा निर्मित नए कमरों और लाइब्रेरी का भी लोकार्पण किया। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने कहा है कि राज्य सरकार प्रदेश के हर घर तक नल से स्वच्छ पेयजल पहुंचाने के लिए पूरी गंभीरता के साथ काम कर रही है। श्री चौधरी ने आज भीलवाड़ा के मांडल में विभिन्न पेयजल परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण कार्यक्रम के अवसर पर ये बात कही। उन्होंने कहा कि पीने के पानी की व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के लिए व्यापक स्तर पर काम किए जा रहे हैं। श्री चौधरी ने अधिकारियों को भीषण गर्मी को देखते हुए पेयजल संकट वाले क्षेत्रों में टैंकरों से नियमित जलापूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। निर्वाचन आयोग ने आज विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के तीसरे चरण की घोषणा की है। इसे 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में चरणबद्ध तरीके से चलाया जाएगा। इनमें आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, सिक्किम, त्रिपुरा, तेलंगाना और उत्तराखंड शामिल हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव शामिल हैं। ये मतदाता सूची संशोधन प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसका पूरा उद्देश्य पूरे देश में अपडेटेड और सटीक मतदाता सूची सुनिश्चित करना है। प्रदेश भर में जनगणना 2027 के तहत डिजिटल स्वगणना का काम तेजी से चल रहा है। इसी कड़ी में पाली जिले का तीखी गांव 100% स्वगणना पूरा करने वाला पहला गांव बन गया है। अतिरिक्त जिला कलेक्टर डॉक्टर बजरंग सिंह ने बताया कि ग्रामीणों ने मोबाइल के माध्यम से स्वयं अपना पंजीकरण कर इस प्रक्रिया को पूरा किया है। इस गाँव की ये उपलब्धि अन्य गाँवों के लिए मिसाल बन रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF ने पिछले 2 दशक में देश के 140 करोड़ नागरिकों का विश्वास जीता है। श्री शाह ने आज गाजियाबाद में NDRF के राष्ट्रपति ध्वज समारोह को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि देश में आपदा के समय लोग NDRF की मौजूदगी से सुरक्षित महसूस करते हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी सशस्त्र बल को राष्ट्रपति ध्वज सम्मान मिलना गर्व की बात है।
1: NDRF को राष्ट्रपति निशान का सम्मान दिया गया, वो हम सब के लिए गौरव और प्रतिष्ठा की बात है। ये सम्मान NDRF के समस्त बल के सेवा, साहस, शौर्य और समर्पण के संचित गुणों का सम्मान है। 20 साल के कम अंतराल के अंदर आपदा बचाव के क्षेत्र में भारत को वैश्विक नक्शे पर रखने का काम NDMA

0: और एनडीआरएफ ने किया है।
1: और अब मौसम। प्रदेश में अगले दो दिन में एक नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से तापमान में मामूली गिरावट आने की संभावना है। इस दौरान आज और कल बीकानेर, जयपुर और भरतपुर संभाग के साथ साथ शेखावाटी अंचल में तेज हवाएं चलने और कहीं कहीं हल्की बरसात की संभावना है। 17 मई से एक बार फिर पश्चिमी राजस्थान में तापमान में बढ़ोतरी होगी। वहीं प्रदेश के दक्षिणी पूर्वी इलाकों में भी अधिकतम तापमान 44 से 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। इस बीच 24 घंटों में प्रदेश में मौसम के कई रंग देखने को मिले, जहां राज्य के कुछ हिस्सों में मेघ गर्जन और आंधी के साथ बारिश हुई। वहीं अधिकांश स्थानों पर तेज गर्मी और लू का दौर चला। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार पिछले 24 घंटों में राज्य में सबसे अधिक तापमान फलौदी में रहा, जहां पारा 45.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं राज्य के ज्यादातर स्थानों पर दिन का पारा 42 से 44 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया। श्रीगंगानगर जिले के जैतसर में आज करीब 50 बच्चे दूषित भोजन खाने से बीमार हो गए। निजी स्कूल के ये बच्चे पिकनिक मनाने वाटर पार्क गए थे, जहां खाना खाने के बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई। सभी बच्चों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधिकारी सुखपाल बराड़ ने बताया कि बच्चों का इलाज जारी है और स्थिति नियंत्रण में है। भारतीय सेना में भर्ती के लिए ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम CEE 1 जून से 12 जून तक आयोजित किया जाएगा। राज्य के 11 शहरों के 32 केंद्रों पर होने वाली इस परीक्षा के प्रवेश पत्र कल से आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड किए जा सकते हैं। रक्षा जनसंपर्क अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल निखिल धवन ने बताया कि इस दौरान अग्निवीर, सिपाही, फार्मा और धार्मिक शिक्षक सहित विभिन्न श्रेणियों के लिए परीक्षा ली जाएगी। अभ्यर्थी भर्ती से जुड़ी सभी जानकारियां विभाग की वेबसाइट पर देख सकते हैं। किसी भी सहायता के लिए नजदीकी सेना भर्ती कार्यालय से भी संपर्क किया जा सकता है। भरतपुर में केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र की ओर से आज किसानों के लिए प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया। इसमें किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड के बारे में जानकारी दी गई। अनुसंधान निदेशालय के निदेशक डॉक्टर विजय सिंह वीर ने बताया कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड के जरिए किसान अपने खेत की मिट्टी में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाश और जैविक कार्बन जैसे तत्वों की सही स्थिति जान सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, आतंकवाद को लेकर भारत का रुख एकदम कड़ा और स्पष्ट है। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने ईंधन बचाने के लिए निजी वाहनों का उपयोग कम करने और सार्वजनिक परिवहन को प्राथमिकता देने की अपील की। निर्वाचन आयोग ने 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में SIR के तीसरे चरण की घोषणा की और प्रदेश में अगले दो दिन में एक नए पश्चिमी विक्षोभ के असर से तापमान में मामूली गिरावट की संभावना। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप रितिका गुप्ता से बाड़मेर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसके लेखक हैं जसवंत सिंह डूडी। बाड़मेर देश और दुनिया में थार नगरी के नाम से विख्यात है। सरहदी जिले बाड़मेर में इन दिनों रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही है। जबरदस्त उछाल के साथ जिले में दिन का पारा 48 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया। इस सीजन में 48.3 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ बाड़मेर देश में सबसे गर्म स्थान रहा। जिले में प्रचंड गर्मी के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त है। चिलचिलाती धूप और झुलसाने वाली लू के थपेड़ों के कारण लोग बेहाल हैं। दिन के अलावा रात में भी गर्मी से राहत नहीं मिल पा रही है। पंखे और कूलर बेअसर साबित हो रहे हैं। भीषण गर्मी के चलते वन्य जीव भी व्याकुल है। अंतर्राष्ट्रीय सरहद पर मुस्तैद बीएसएफ के जवानों को प्रचंड गर्मी के कारण भारी परेशानी हो रही है। गर्मी से बचाव के लिए लोग ठंडे पेय पदार्थों का सेवन करने सहित कई जतन कर रहे हैं। विभिन्न सामाजिक संगठनों की ओर से पक्षियों के लिए परिंडे लगाए जा रहे हैं। भीषण गर्मी के मद्देनजर जिले के सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों तथा आंगनबाड़ी केंद्रों में विद्यार्थियों के समय में बदलाव किया गया है। स्कूलों में कक्षा 8वीं तक के विद्यार्थियों और आंगनबाड़ी केंद्रों के विद्यार्थियों के लिए समय सुबह 7:30 बजे से 11:30 बजे तक निर्धारित किया गया है।

0: जिले के प्रभारी सचिव डॉक्टर रोहित गुप्ता बीते दिनों जिले के दौरे पर रहे। इस दौरान वे विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल हुए। उन्होंने कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में पीने के पानी, बिजली, एलपीजी आपूर्ति, हीट वेव से बचाव और विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि गर्मी के मौसम को देखते हुए आमजन को राहत पहुंचाने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं समय पर सुनिश्चित की जाए। उन्होंने सरकारी जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल में उपलब्ध चिकित्सा सुविधाओं, दवा वितरण व्यवस्था और मरीजों को दी जा रही सेवाओं का जायजा लिया। प्रभारी सचिव ने ग्राम पंचायत रामसर का कुआं में विकास कार्यों का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने ग्रेवल सड़क निर्माण कार्य और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत चल रहे कामों का जायजा लिया। श्री गुप्ता ने लाभार्थियों से संवाद करते हुए ग्रामीण विकास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी चिन्मयी गोपाल ने पिछले दिनों बाड़मेर की नई जिला कलेक्टर के रूप में पदभार संभाला। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कार्यभार ग्रहण करने के बाद विभिन्न विकास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के अवसर पर बाड़मेर में जसदीर तालाब स्थित शिव शक्ति धाम में जिला स्तरीय कार्यक्रम रखा गया। इस दौरान गुजरात के सोमनाथ मंदिर में आयोजित मुख्य समारोह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन का सजीव प्रसारण किया गया। इस बीच विभिन्न प्रस्तुतियों के माध्यम से देशभक्ति, सामाजिक समरसता और सांस्कृतिक एकता का संदेश दिया गया। इस अवसर पर उद्योग और वाणिज्य राज्य मंत्री के विश्नोई, चौहटन विधायक आदुराम मेघवाल और जिला कलेक्टर सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। बीते दिनों रेल मंत्रालय की ओर से बाड़मेर को विशेष रेल सेवा की सौगात दी गई। ये रेल सेवा बाड़मेर और हरिद्वार के बीच शुरू की गई है। इसके संचालन से हरिद्वार की धार्मिक यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं को सुगम और सुविधाजनक यात्रा का फायदा मिलेगा। ये रेल सप्ताह में दो दिन बाड़मेर से प्रत्येक सोमवार और गुरुवार और हरिद्वार से प्रत्येक मंगलवार और शुक्रवार को संचालित होगी। रेल सेवा की सौगात मिलने पर स्थानीय सांसद उम्मेदाराम बेनीवाल ने लोगों को बधाई दी। जिले में इन दिनों ग्राम रथ अभियान चलाया जा रहा है। राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए चलाए जा रहे ग्राम रथ अभियान में आमजन की सक्रिय भागीदारी देखने को मिल रही है। इसी कड़ी में अलग अलग ग्राम पंचायतों में जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आधुनिक तकनीक से सुसज्जित एलईडी ग्राम रथों के साथ कला जत्थे आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। लोकगीतों, नुक्कड़ नाटकों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए आमजन को सरल तरीके से सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। जिले में पिछले दिनों हाली अमावस परंपरागत रूप से मनाई गई। इस पर्व को लेकर किसानों में खासा उत्साह देखने को मिला। हर साल वैशाख महीने की अमावस्या हाली अमावस के रूप में मनाई जाती है। ये किसानों का मुख्य पर्व है। इस अवसर पर किसानों द्वारा सांकेतिक रूप से खेतों की जुताई करते हुए सुकाल की कामना की गई। इस मौके पर हर घर में बाजरे का खींच और गुड़ की गलवोणी बनाई गई। इस बीच पारंपरिक खेल औंधल घेटों की धूम रही। इसके साथ ही बाड़मेर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर हूं, पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कहो आतंकवाद रा बारा माय भारत रो रुख एकदम साफ अर करडो। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ईंधन बचावन सारू जनताओं खुदरी गाड़ियां काम ले उनो कम कर अर सार्वजनिक परिवहन न बधावो देवन बाबत कहो। चुनाव आयोग वोटर लिस्टा रा पुनरीक्षण रा काम SIR रा तीजा दौर रो ऐलान कीनो। अर प्रदेश माय आवता दिना पारो थोड़ो उतरन रा आसार। समाचारां सागे मैं सुदर्शन नाहर। अरब समाचार विगतवार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कहो है कि आतंकवाद रे खिलाफ भारत रो रुख एकदम साफ है। वे आज नागौर जिला रा मेड़ता माय राव दूदारी मूरत रा अनावरण जलसा माय बोल रहा है। रक्षा मंत्री कहो कि भारत आतंकवाद रा सगान मुंह तोड़ जवाब देवन रो बूतो रखे है। वह कहो कि देश अब सरहद री हिफाजत तू जुड़िया साजो सामान रा मामला

राज्यमाय पड़ रही जोरदार गर्मी बीच जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री कन्हैया लाल चौधरी अहलकारा ने पानी री परेशानी वाला हलका माय टैंकरां रे जरिए लगातार पानी री पूर्ति तय करावन रा हुकम दीना है। वे आज भीलवाड़ा कने मंडल विधानसभा हलका माय पीवन रा पानी जुड़ी करोड़ा रुपया रा खर्च वाली न्यारी न्यारी परियोजनावां रा काम री नींव रखी और पूरा व्या काम जनता ने सौंपया। इ मौके वे कहो के प्रदेश माय पानी री व्यवस्था ने चोखी बनावन सारू सगला जरूरी जतन कर्या जा रहा है। समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो। निर्वाचन आयोग आज वोटर लिस्टां रा विशेष गहन पुनरीक्षण SIR रा तीजा दौर रो ऐलान कर दिनो। 16 राज्यां और केंद्र रा राज वाला 3 प्रदेशां माय ओ अभियान चलायो जावेला। प्रदेश माय जनगणना 2027 रा तहत डिजिटल स्वगणना रो काम चल रियो है। पाली जिला माय देसुरी ब्लॉक रो तिखी गांव स्वगणना पूरी

0: ना विशेष गहन पुनरीक्षण SIR राती जा दौर रो ऐलान कर दिनो। 16 राज्यां और केंद्र रा राज वाला 3 प्रदेशां माए वो अभियान चलायो चावेला। प्रदेश माए जनगणना 2027 रा तेत डिजिटल स्वगणना रो काम चाल रियो है। पाली जिला माए देसुरी ब्लॉक रो तिखी गांव स्वगणना पूरी करण वालों पहलो गांव बन गयो है। अतिरिक्त जिला कलेक्टर डॉक्टर बजरंग सिंह आ जानकारी दीनी। वे बतायो के गांव वाला शिक्षक उमेश कुमार मेवाड़ा का न्यू तकनीकी जानकारी हासिल कर मोबाइल जरिए खुद पंजीकरण कीना। गृह मंत्री अमित शाह कहो है कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF 20 साल रा कम बगत माई जनता रो भरोसो जीत लिनो है। वह आज गाजियाबाद माए NDRF रा राष्ट्रपति ध्वज समारोह माए बोल रहा है। गृहमंत्री कहो कि देश माए कणी ठौड़ आपदारी सूरत माए NDRF री मौजूदगी लोग सुरक्षित महसूस करे है। वह कहो कि किणी सशस्त्र बल ने राष्ट्रपति ध्वज नवाजनो वांसारू माथो ऊंचो करण री बात वे है।
1: NDRF को राष्ट्रपति निशान का सम्मान दिया गया वो हम सब के लिए गौरव और प्रतिष्ठा की बात। ये सम्मान NDRF के समस्त बल के सेवा साहस शौर्य और समर्पण के संचित गुणों का सम्मान है। 20 साल के कम अंतराल के अंदर आपदा बचाव के क्षेत्र में भारत को वैश्विक नक्शे पर रखने का काम NDMA और NDRF ने किया है।
0: अरे बे मौसम, प्रदेश में पारो थोड़ो उतरन रा आसार है। आज और कल बीकानेर जयपुर और भरतपुर संभाग और शेखावाटी हल्का माए जोरदार बायरो बजन सागे कठे कठे हल्की बरसात री संभावना है। इपाछे 17 मई राजरा आतुणी हल्का माए पारो ओजू चढ़बारा आसार है। प्रदेश लंकाऊ उगनी हल्का माए तापमान 44-45 डिग्री सेल्सियस रे आरसार रेवन री संभावना है। इबीचे लाडला 24 घंटा माए राज्य माए कठे कठे बादलां री गाज और आंधी सागे बारिश हुई। मौसम केंद्र जयपुर रे मुजब लाडला 24 घंटा माए सबु बत्तो तापमान फलौदी माए 45.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज करीचियो। फौज माए भर्ती सारू ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम CEE 12 जून ताई फैला। प्रदेश रा 11 शहरां रा 32 केंद्रां माते वेवन वाली ई परीक्षा रा एडमिट कार्ड कालू आधिकारिक वेबसाइट नू डाउनलोड करिया जा सकेला। रक्षा जनसंपर्क अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल निखिल धवन आ जानकारी दीनी। वे बतायो के अजमेर अलवर बीकानेर जयपुर और जोधपुर समेत प्रदेश रा न्यारा न्यारा केंद्रां माते अग्निवीर सिपाही फार्मा और धार्मिक शिक्षक सरीखा न्यारा न्यारा ओहदा सारू आ परीक्षा ली जावेला। भरतपुर रा केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र री ओरू सिखावन शिविर लगार किसाना ने मृदा स्वास्थ्य कार्ड रे बारा माय जानकारी दीरी जी। अनुसंधान निदेशालय रा निदेशक डॉक्टर विजय वीर सिंह बतायो के मृदा स्वास्थ्य कार्ड रे जरिए किसान खेत री मिट्टी माय नाइट्रोजन फास्फोरस पोटाश और जैविक कार्बन सरीखी चीजा री ठाक कर सके है। शिविर माय किसाना ने सरसों री उन्नत किस्मा मिट्टी री जांच जैविक खेती और बागवानी प्रबंधन रे बारा माई विगतवार जानकारी दीरी जी। बुनकराओं जुड़ियो जयपुर ग्रामीण दफ्तर हथकरघा बुनकरा ने जिला स्तर रो नकद इनाम देवन सारू अर्जियां मांगी है। लाडला 3 साल हथकरघा बुनाई रो काम करन वाला बुनकर इनाम सारू अर्जी दे सके है। अर्जियां काल ताई जिला उद्योग केंद्र माए जमा कराई जा सके है। आखिर माए खास समाचार एकर फेर सुन ले रहो। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कहो आतंकवाद रा बारा माए भारत रो एकदम साफ और करड़ो रुख। राज्यपाल हरिभाव बागड़े ईंधन बचावन सारू जनताओं खुदरी गाड़ियां काम लेवनो कम कर और सार्वजनिक परिवहन ने बधावो देवन बाबत कहो। चुनाव आयोग वोटर लिस्टाना पुनरीक्षण रा काम SIR रा तीजा दौर रो ऐलान कीनो। और प्रदेश माए आवता दिना पारो थोड़ो उतरन रा आसार। इसागे प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो फियो। मानो आगलो समाचार बुलेटिन काल सवारे 9 बजा हिंदी माय प्रसारित करियो जावेला। नमस्कार।

मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्स पर, डीआरएम चैनल 909 किलोहर्ट्स पर, एफएम 100.1 मेगाहर्ट्स पर, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर पर। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। संध्या के 7:01 हो चुके हैं। अब ग्रामीण परिवार अपना दैनिक कार्यक्रम सुने। चौपाल।

चौपाल सुनिए सगळ्या श्रोतावाने, सुनील बायगी वरसू मोकळी मोकळी राम राम सगळ्याने राजी राखे राम जी। श्रोताओं, आज के प्रोग्राम की शुरुआत आई लाइनंग सागे के कड़वी बेल की कड़वी तूंबड़ी अड़सठ तीर्थ नाई गंगा नाई गोमती नाई मिट्टी नहीं कड़वाई मिट्टी नहीं कड़वाई। श्रोताओं, आपनों जो को भारत देश है गाँव वांग में निवास करे एर चौपाल जकी है गाँव की चौपाल है बा अठेगी आत्मा है सामाजिक व्यवस्था को केंद्र है। इन आपा गाँव को जिया अंग्रेजी भाषा में क्यों तो लिविंग रूम खुल्लो लिविंग रूम केस का खुली संसद केस का जकी चौपाल ही श्रोताओं आपने गावांगी बिंगा बहुत ही फायदा। आज आ चौपाल धीरे धीरे ख़त्म होने लाग रही है क्योंकि आदमी जो को की है भाग दौड़ की जिंदगी में फंस रही हो कि टेम ही कौन ही और टेम है तो वो किए मोबाइल गमा ख़त्म कर दिए। चौपाल का फायदा की बात करा तो एक तो आके ही कह देखो सामाजिक एकताई एर मिलाप हो बिंगो केंद्र हो अठे कोई भी जाति कोई भी धर्म का जका लोग हा बेकिए भेदभाव भुला गए एर आपस में बैठता बत्तल करता हताई करता एक दुख एक दूसरे गए सुख दुख में समझाता और कई जगह कोई समस्या होती तो मान ले अठ जगह बडेरा बैठता बांगन की वो अनुभव को खजानो बांगा जगह बाढ़ आ बेकिए धूड़ में दौड़ा को नहीं उड़ा धूप तो वे आप गए अनुभव छू वहाँ समस्याओं को समाधान करता और सागे आके सूचना को केंद्र ही और जागरूकता कृषि और मौसम की जानकारी मिलती बूढ़ी आपका बडेरा जका भी आपका अनुभव साझा करता एर जक आदमी जका के गाँव में किए ज़्यादातर खेती को काम ही हुए तो सामने के जब बेला होता तो सुख दुख की बातें करता और मनोरंजन भी बैठे होन तो अच्छा कोई कहानी किस्सा बडेरा सुनाता तो चौपाल कुल मिला गए के ही गाँव की आत्मा ही बिंगुई मनोरंजन को साधन हो पर आ साधन जिकी अब की है मान लो धीरे धीरे ख़त्म होने लाग रही है। तो सारों निवेदन वही है कि जितो हो सके ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे से जुड़ो मेल मुलाप करो एर गाँव की गुआड़ में बैठ के तय करो बात आप और भी कर सा पहला सुनाओ लोक भजन।

0: श्रोताओं सुनियो गीत लोक भजन। श्रोताओं आपनी मायड़ बोली ने अब आपने देश की सारू मोटी पंचायत आपना जगह सरकारी स्कूल है और स्कूल है वहाँ में मान्यता दी है तो आपने खतर बहुत ही अर्क की बात है। तो आपने जगह ऊपर लिखो गांव है बटेगा भाई विनोद स्वामी बहुत ही मानी जेड़ा कहानीकार है तो बांगी कहानी सुनावा था ना आम पुछ लो इंगो आनंद।
1: तो दोस्तों आज एक राजस्थानी कहानी सुना रहा और बिंगो शीर्षक है आम बच्चांगी अस्टाइल है। एक छोटो छोटो कोई टाबर मोड़ा चढ़ावे तो कोई टाबर जी कोई आंख्यों कोई इशारो करे तो बी ही टाइटल ने आपां दियो है आम। घरां बढ़ते रे साथ ही आपरा जरींट लागेड़ा हाथ दूर खड़ी आपरी दादी का नहीं कर दिया बीरे।

दोनों आत्माएं एक छोटो सो नीम रो बूंटो माटी माए पग रोप्या मुड़कण लाग रो। बी बूंटे ने इं लागे हो जाने बण इन नाने से टाबर साथे सवार होर दुनिया री सेंग सू मजेदार यात्रा करिए। कुणी आत ना लगा दियो ना ठीक को नहीं रहसी, बहुत दोरो चिगड़ा के लिया हूं, ए देखो कांटा माए आत पाट गया, वो लगो लग बोल तो बगाओ। खेड़े री बाड़ माए काल स्कूल जाऊंती बरिया सेंग सू पहली मैं देखियो और जदी इं बूंटे ने रुका लियो। बिन बाड़ रो ओ छोटे से नीम रो बूंटो स्कूल से पाछो खींचर लियावा, वो जाने वो खुद नहीं पूछो क्यों जाऊं मैं स्कूल, स्कूल जाऊनो क्यों जरूरी है। बिने स्कूल से ज़्यादा जरूरी इन नीम ने चिगड़ार ले जाऊनो लागो, पण मार से डरतो आ बात सोचतो सोचतो स्कूल रे गेट माई बढ़ गयो। घंटीरा बाजता डंका बिने सावचेत कर दियो। वो रोजिना री बांथ प्रार्थना माए हाथ जोड़ियां खड़ियो, बिने आज ठाई नहीं लाग्यो के प्रार्थना खत्म कदमा खरोगी। गुरुजी जद हाजरी बोलन लाग्या तो यस सर या हाजर हूँ री ठोड़ बेरो कोनी किया बिरे मुंडे छू निकड़ गयो नीम जी और आखी क्लास री आँख बी माथे गड़गी। गुरुजी टोक्यो पढ़ती पढ़ती रहगी, क्लास माए बैठ्यो तो बिने ना हिंदी अच्छी लागे ना गणित ना सामाजिक ज्ञान माए बीरो ध्यान जावे ना विज्ञान माए, बिने तो लागे जाने जोड़ी माए ली सगड़ी पोथ्या दगड़ है भाठा है और बे बाड़ में खड़े नीम माथे पढ़न लाग रे है। जेबो तावड़ो सो उनने चिगड़ार ना लियो तो बीरो कंवड़ो टंवरो टूट जासी। बिने गणित रे मास्टर पूछो दो और दो किता हुए, बीरे मुंडे शू निशर तो रह गयो के नीम जी। आधी छुट्टी माई बो आपरो जोड़ो कोई सागड़दी ने संभार बूंटो घरां ले जावणो चावो, पण कई अब खाइया उणरो राह रोकई। बण मन ही मन में सोचो दादी ने के सफाई देस्या, आथण बाबो बूझ सी जद काई हो सी। जोड़ो क्लास माई देखे गुरुजियां जे पूछ लियो तो तड़के के बीतेगी। बीरा आई फ्याई मचगी जे नीमड़ो कोई और ले दब्यो तो के करांगा। पहल कई बाड़ स्यू टमाटर रो बूंटो चिगड़ायो जद लालिए खोस लियो, मैं पाछो खोसनो चाहो जद माटी जड़न स्यू राम ने जड़ दिखगी, फिर तो काम सरणो ही हो। वो तो ठीक रही के बा दोना बेलियां रे दो दिना सू आसंग कोनी बुखार हो रही है जद स्कूल नहीं आया, नहीं तो बह बेईमान वो नीम मने थोड़ी रुकावण दिया। सारी छुट्टी रो भगत आज ठानी क्यों आगे ही सरकतो बगाओ। बिने इयां लाग्यो जाने स्कूल लागे ने कई साल हो गया और छुट्टी रा कई जुग पड़े। छेकड़ले घंटे माए तो बो आता माए चंपल गालियां जोड़ो तकड़ो कड़रे बांध्या इन बांत कसी जो खड़ियो जाने कोई ओलंपिक रो दावक होवे। अचानचक माठ साहब आया और रोब मार्यो, ओ टाबरो चुप, और उनने लाग्यो जाने घंटी बाजगी। वो बाजन सारू कमरे रे बारणे कन पुग्यो जद होश आयो। गुरुजी एक लप्पड़ मार्यो बीरे चानणो सो गयो। बेरो नी कुणसी पोथी रो कुणसो पाठ खोलर पढ़न लाग्यो, पढ़न तो के लाग्यो मुंडो लको राख्यो। क्लास माई थोड़ी देर पछे फेर खुसर फुसर होण लागी और फेरू टाबरा कमरों सिर माथे चक लियो, पण उनने तो पोथी माए हरेक पाने माए सिर्फ नीम ही मुड़क तो दिखाओ। घरा आयो तो गणो अरख रे साथ है देड़िया स्यू दादी ने लो पाड़ियो, अब काले देख स्यू किया कोनी लगे ओ। वो समझावण री भांत आपरी माँ और दादी ने बताऊता बोलियो, अब काले पानी ऊपर स्यू दार बांध के ना गाल दियो, मैं आप ही गाल स्यू। इरे टमरे का नी इया देख ले दादी, कोई सीधी आंगली ना कर दियो, देखो इया थोलो बनार करनी है। फटाफट भीतरे करने छोटो सो दरड़ो खोद लियो, पानी गालियो और ऊपर गोचारी छतरी और बाड़ लगाई। बाड़ स्यू आयर बाखड़ माए

पौधा ने संतुलित मात्रा में पोषक तत्व प्राप्त हुए, सागे सागे सूक्ष्म जीवाणुओं की जकी क्रियाशीलता बढ़े, भूमि पोली रहे और जका लाभदक जीवाणु है भी सक्रिय बना रही है। तो अपने खेत के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा वर्मी कंपोस्ट को इस्तेमाल करना चाहिए। इन सारू की है विधि थोड़ी। आसान है जो कि आपा जगह कोई जानकारी भाई है भी इशू समझ सका, या अपना जगह कृषि विशेषज्ञ है भाई इशू भी राय ले सका। बात आप और भी करांगा, पहला सुनाओ प्यारो सो गीत।

श्रोताओं सुनियो ओ लोक गीत। श्रोताओं बात करा अब हरी खाद का फायदा के बारे में। तो हरी खाद जो कि अपनी माटी है इनकी संरचना अच्छी बनावे, जल धारण की क्षमता बढ़ावे, मृदा में जो नाइट्रोजन है बिना बढ़ावे, मृदा में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा बढ़ावे, मृदा के अंदर क्षरण यानी कटाव ने कम करे, और भूमि की जो कि ऊपरी परत है भी रक्षा करे, खरपतवारों की रोकथाम हुए, क्षारीय और लवणीय जो कि माटी है बिंगो भी सुधार हुए, क्योंकि हरी खाद गए विघटन शू अनेक अमल पैदा हुए। हरी खाद में पोषक तत्व प्रदान करने की जो कि क्षमता ज़्यादा हुए, तो आ जो का निर्धन किसान है वहाँ खातर भी बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि खर्चो कम लागे, भूमि में जो का सूक्ष्म जीव है आंगी संख्या बढ़े, आंगी क्रियाशीलता बढ़े, और जो का पोषक तत्व है वांगी भी बढ़ोतरी हुए। भूमि में हुमरस है जो कोई भी मात्रा बढ़े, मृदा की भौतिक दशा सुधरे, जिसू वायु को संचार बढ़े, मृदा की जल ग्रहण की जो कि ताकत है वह भी बढ़ोतरी हुए। तो अपन ज़्यादा से ज़्यादा अपने खेत में हरी खाद को भी इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि जो रासायनिक खादों को प्रयोग से अपने नुकसान होने लग रही है वो न हो और अपना मुनाफा बढ़े। तो इन सारू की आप जहाँ हरी खाद है तो इन्हें 45 से 60 दिन भी जद हो जाए तो भूमि में मिला देनी चाहिए, और खेत में पलटते टाइम यानी मिलाते टाइम खेत के अंदर नमी जरूर होनी चाहिए, इन बात को ध्यान रखना चाहिए। सागे की है जहाँ हरी खाद की फसलों में जहाँ हल्की बलुई माटी हुए तो बिना ज़्यादा गहराई पर और भारी माटी हो तो कम गहराई पर दाबना चाहिए, इन बात को किसान भाइयों ने ध्यान रखना चाहिए। मौसम के अनुसार शुष्क मौसम की दशाओं में ज़्यादा गहराई पर और आर्द्र मौसम हो है यानी नमी युक्त हो तो कि है कम गहराई पर ये हरी खाद ने दबाना चाहिए। हरी खाद वाली की फसलों की भूमि में मिलाने से पहला कि जब फूल लावे तो बिंग पहला मिला देना चाहिए, फूल आने के बाद नहीं मिलाना चाहिए, क्योंकि कई बार फसल बीज सक जाए तो बाद दोबारा उगा ले जाए तो वह खरपतवार के रूप में फैल जाए। तो इन तरह की सावधानियाँ हरी खाद ने मिलाने से पहला किसान भाइयों ने रखनी चाहिए। बात आप और भी करशा, पहला सुनाओ प्यारो सो लोकगीत।

श्रोताओं सुनियो हो सीमा मिश्रा की आवाज़ में प्यारो सो लोक गीत। खेतीबाड़ी की बातों में बात करां एनपीके के बारे में। एन यानी नत्रजन, पी यानी फास्फोरस और पी यानी पोटेशियम। ए पौधों के विकास के

लिए सारों महत्वपूर्ण तत्व होवे और प्राथमिक पोषक तत्व भी है। अन्न आप वन्य सूक्ष्म तत्व यानी सूक्ष्म तत्व को इनके वहाँ ये मुख्य पोषक तत्व है, क्योंकि अंग सारा जुदा पौधा ने जरूरत है और अंग बिना देखो पौधो है आपको जीवन चक्र पूरा कौन कर सके, बहुत ही असंभव बात है। तो एनपीके के कार्य की आप जहाँ बात करा जिया एन यानी नाइट्रोजन की बात करा नाइट्रोजन की, तो वो जो है नाइट्रोजन पौधा की वनस्पतिक वृद्धि खातर बहुत ही जरूरी है और वो मुख्य रूप से वनस्पतिक वृद्धि के प्रति जिम्मेदार हुए। इनको कार्य की है भाइयों के वो पत्ता जका है फसल का मन गहरा हरे रंग देवे, पौधा की लंबाई बढ़ावे और इनकी कमी शू की है जो कि पुरानी पत्तियां हैं वे पीली पड़न लाग जे और इनको भूटे को विकास रुक जे। फास्फोरस की बात करा तो वो जो कि पौधे की जड़ है यानी फसल की जो कि जड़ा है मन की शक्ति देवे ताकत देवे। इनको कार्य है एक तो जो कि बूटे की जड़ है बिंगो तेजी से विकास करनो एर फूलना एर बीजा के बन में मदद करनो। इनकी कमी से किसान भाइयों जड़ कमजोर रह जाए एर पत्तियाँ बैंगनी रंगी हो जाए या गहरे तांबे जिसी होने लग जाए। पोटेशियम की बात करा तो वो रोग प्रतिरोधक क्षमता ने बढ़ावे फसल के अंदर वो पौधे को सुरक्षा कवच मान्यो जावे। इनको कार्य वही है कि पौधा ने बीमारियाँ छू बचाणु कीटा छू और सूखे छू लड़न की ताकत देनी, फलों की जो कि गुणवत्ता है बन बढ़ानी चमक बढ़ानी। इनकी कमी छू पत्तियाँ गज का किनारा है बे बलियड़ा सा दिखन लग जाए और भूरे रंगा हो जाए। तो एनपीके को आपन की है आमतौर पर संतुलित उपयोग करना चाहिए और फिर

कि जी मट्टी की अपन जांच करा लेनी चाहिए तो जांच के आधार पर जी आवे बीन साक्ष देनी चाहिए। सामान्य अनुपात यही है 4:2:1, यानी 4 हिस्सा नाइट्रोजन, 2 हिस्सा फास्फोरस और 1 हिस्सा पोटेशियम। जे आप घर के बगीचे या गमला में एनपीके का उपयोग करना चाहवा तो एनपीके 19:19:19 या 20:20:20 ये सारों संतुलित विकल्प है। तो आंगो आप घर गुज को बगीचो है या कोई बूटो है भी मैं आप प्रयोग कर सका। और बाकी जो है अपना जो विशेषज्ञ होए ग्राम स्तर पर भी होए तहसील स्तर पर भी होए जगह जगह कृषि विभाग का दफ्तर भी खुलेड़ा है मीटिंग भी होए और भी घना ही योजना आवे तो बठूँ अपन ज़्यादा जानकारी लेनी चाहिए और एनपीके को हमेशा ही संतुलित प्रयोग करना चाहिए। बातें आप और भी करशा पहला सुनाओ प्यारो सो लोकगीत।

श्रोताओं सुनियो प्यारो सो लोक गीत सीमा मिश्रा की आवाज़ में। अब थोड़ी बात है, आपने बाजार भाव और मौसम की कर लिया, तो मौसम में जहाँ अगले 48 घंटा में राज्य के कई भागों में कम एर ज़्यादा तापमान रहने की संभावना है। 17 मई ने गिरावट होने की संभावना है और दक्षिणी पूर्वी भागों में आगामी दिनों में अधिकतम तापमान 44 से 45 डिग्री के मध्य रहने की संभावना है। 14 और 15 मई ने बीकानेर संभाग, शेखावाटी क्षेत्र, जयपुर और भरतपुर संभाग के उत्तरी भागों में घटी घटी के मेघ गर्जन के साथ आंधी आने की भी संभावना है। तो आज मौसम की जानकारी और अब थारे तई बाजार भाव भी पुख्ता कर दिया। सूरतगढ़ में कणक बिकी 2761 रुपया कुंटल, जोगाठ है भाव रहा 1901 से 2090 रुपया कुंटल, सरसों का भाव उगड़िया 6494 से 6890 रुपया कुंटल और गवार का भाव रहा 5781 से 5531 रुपया प्रति कुंटल। जैतसर मंडी की बात करें तो जैतसर में सरसों बिकी 5700 ले गए 6905 रुपया कुंटल, कणक का भाव उगड़िया 2430 से 2595 रुपया कुंटल और सरसों का भाव आया 6300 से 6700 रुपया कुंटल और गवार बिकी उठे 5457 रुपया कुंटल। तो ये आज का बाजार भाव। और अब आपने कार्यक्रम को समय जो पूरा होने लग रही है, तो तार सुनील भाई ने दियो आ गया राम राम सा राम राम।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे हमारा ग्रामीण दैनिक कार्यक्रम चौपाल। मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलो हर्ट्स पर, DRM चैनल 909 किलो हर्ट्स पर, FM 100.1 मेगा हर्ट्स पर, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर। आकाशवाणी का ये कॉर्डन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। रात्रि के, क्षमा कीजिए, संध्या के 7:45 हो चुके हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम के आरंभ में सुनिए साहिब बीबी और गुलाम फिल्म से आशा भोंसले की आवाज़ में ये गीत। गीत शकील बदानू का, संगीत हेमंत कुमार का।

श्रोता, अभी आप सुन रहे हैं साहिब बीबी और गुलाम फिल्म से आशा भोंसले को। इस गीत को लिखा था शकील ने और संगीतबद्ध किया था हेमंत कुमार ने। श्रोता, कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति में सुनिए गाइड फिल्म से ये गीत, आवाज लता मंगेशकर की, गीत शैलेंद्र का, संगीत सचिन देव बर्मन का।

श्रोता, अभी आपने गाइड फिल्म से ये गीत सुना। आवाज थी लता मंगेशकर की। इस गीत को लिखा था शैलेंद्र ने और संगीतबद्ध किया था सचिन देव बर्मन ने। फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से। आइए अब सुने रेशमा और शेरा फिल्म से ये फिल्म संगीत का आखिरी गीत, जिसे स्वर दिया है लता मंगेशकर ने और धुन जयदेव की। आइए सुनते हैं रेशमा और शेरा फिल्म का ये गीत।

श्रोता, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम फिल्म संगीत। मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलो हर्ट्स पर, DRM चैनल 909 किलो हर्ट्स पर, FM 100.1 मेगा हर्ट्स पर, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर। आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। रात्रि की 8 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम एक ही फिल्म से जानकारी और गीत।

नमस्कार दोस्तों, आज जसवीर सिंह की तरफ से आकाशवाणी के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज इस कार्यक्रम में हम लेकर आए हैं हिंदी सिनेमा की एक ऐसी फिल्म, या यूं कहें दोस्तों, अमर फिल्म की कहानी, जिसमें रहस्य, प्रेम और पुनर्जन्म जैसे विषयों को बड़ी खूबसूरत अंदाज से पर्दे पर उतारा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वर्ष 1968 में रिलीज हुई फिल्म नीलकमल की। और इसमें हम बात करें भूमिका की, तो मुख्य रूप से वहीदा रहमान, राजकुमार, मनोज कुमार, ललिता पर पवार, बलराज साहनी, महमूद, शशिकला, इन्होंने इस फिल्म के लिए भूमिका निभाई। और दोस्तों कहानी शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है कि खूबसूरत और समझदार युवती सीता से, जिसका किरदार निभाया है वहीदा रहमान ने। सीता एक संपन्न परिवार की बेटी है। बचपन से ही वह बेहद शांत स्वभाव की होती है, लेकिन उसके जीवन में एक अजीब रहस्य छिपा हुआ है। सीता को अक्सर रात के समय नींद में चलने की आदत होती है। कई बार वह आधी रात को घर से बाहर निकल जाती है और सुबह उसे कुछ याद भी नहीं रहता। परिवार वाले इस बात से बहुत परेशान रहते हैं। डॉक्टरों से इलाज कराया जाता है, लेकिन कोई समाधान नहीं निकलता। सीता अक्सर इस आवाज़ को सुनकर नींद से उठकर चल पड़ती है।

गिरफ्तार युवक राम से हो जाती है, राम यानी मनोज कुमार जिसका किरदार निभाया है। राम अपनी पत्नी से बेहद प्रेम करता है और उसे हर परेशानी से बचाना चाहता है। शादी के बाद सीता का जीवन सामान्य दिखाई देता है, लेकिन कुछ ही दिनों में वह रहस्यमय घटनाएं फिर शुरू हो जाती हैं। एक रात सीता नींद में उठकर कहीं चली जाती है। राम उसका पीछा करता है और देखता है कि सीता एक पुराने खंडहर नुमा महल की ओर जा रही है। वहां पहुंचकर वह किसी अनजानी आवाज की ओर खींची चली जाती है। महल के भीतर एक अजीब सन्नाटा पसरा हुआ है। अचानक दूर से किसी के गाने की आवाज सुनाई देती है। आवाज में दर्द और इंतजार साफ महसूस होता है। राम यह सब देखकर हैरान रह जाता है। वह सीता को वापस घर ले आता है, लेकिन उसके मन में कई सवाल उठने लगते हैं। आखिरकार सीता उस महल में क्यों जाती है? कौन है जो उसे अपनी ओर बुलाता है?

श्रोताओं, धीरे धीरे कहानी का रहस्य खुलना शुरू होता है। पता चलता है कि उस पुराने महल में कभी एक राजकुमार चित्रसेन रहा करता था, जिसका किरदार राजकुमार ने निभाया है। चित्रसेन एक प्रतिभाशाली मूर्तिकार था। वह पत्थरों में जान डाल देने वाली अद्भुत कला जानता था। चित्रसेन को एक राजकुमारी से प्रेम हो गया था। दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे और विवाह करना चाहते थे, लेकिन राजपरिवार को ये रिश्ता मंजूर नहीं था। राजकुमारी ने पिता ने इस प्रेम का विरोध किया और चित्रसेन को महल से दूर रहने का आदेश दे दिया। लेकिन प्रेम कहाँ रुकता है? दोनों चोरी छिपे मिलते रहे। एक दिन चित्रसेन ने अपनी प्रेमिका की याद में उसकी एक बेहद सुंदर मूर्ति बनाई। वह चाहता था कि उनका प्रेम अमर हो जाए, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। राजकुमारी की शादी कहीं और तय कर दी गई। ये खबर सुनकर चित्रसेन टूट गया। वह अपनी प्रेमिका को पाने की आस में तड़पता रहा। आखिरकार दुख और अकेलेपन ने उसकी मृत्यु हो गई। मरते समय उसके मन में केवल एक ही इच्छा थी कि अपनी प्रेमिका से को फिर से पाने की।

श्रोताओ, असल में कहानी यहीं से पुनर्जन्म की रहस्य में प्रवेश करती है। सीता वही राजकुमारी होती है जिसने पिछले जन्म में चित्रसेन से प्रेम किया था। उसके मन में पिछले जन्म की यादें कहीं गहराई में दबी हुई थी। यही कारण था कि वह नींद में उस पुराने महल की ओर खिंची चली जाती थी। चित्रसेन की आत्मा अब भी उस महल में भटक रही होती है। वह अपनी अधूरी प्रेम कहानी को पूरा करना चाहता है। धीरे धीरे सीता के व्यवहार में बदलाव आने लगता है। वह कभी कभी अनजानी बातें करने लगती है, मानो उसे अपने पुराने जीवन की झलक दिखाई दे रही हो। राम

अपनी पत्नी को लेकर चिंतित हो जाता है। वह सच जानने की कोशिश करता है और आखिरकार उसे महल तथा चित्रसेन की कहानी का पता चलता है। राम समझ जाता है कि उसकी पत्नी किसी मानसिक बीमारी से नहीं बल्कि पिछले जन्म की यादों से जूझ रही है। लेकिन मुश्किल यही नहीं खत्म होती। चित्रसेन की आत्मा सीता को अपने साथ ले जाना चाहती है। उसे लगता है कि सदियों का उसका इंतजार अब खत्म होना चाहिए। एक रात सीता फिर उसी महल में पहुंच जाती है। वहां उसे ऐसा महसूस होता है जैसे वह अपने पुराने जीवन में लौट आई हो। महल की टूटी दीवारें, पुरानी सीढ़ियां और हवाओं की आवाज उसके मन में बीते जन्म की यादें ताजा कर देती है। चित्रसेन की आत्मा उसके सामने प्रकट होती है। वह सीता को अपनी प्रेमिका मानकर अपने साथ चलने को कहता है। सीता के मन में अजीब संघर्ष शुरू हो जाता है। एक ओर उसका वर्तमान जीवन और पति राम है, दूसरी ओर पिछले जन्म का अधूरा प्रेम। राम भी वहां पहुंच जाता है। वह अपनी पत्नी को बचाने की कोशिश करता है। चित्रसेन की आत्मा और राम के बीच मानो प्रेम और अधिकार की लड़ाई छिड़ जाती है। राम समझाता है कि इंसान को वर्तमान में जीना चाहिए। पिछले जन्म की अधूरी कहानी को दोहराने से किसी को शांति नहीं मिलेगी। चित्रसेन का दर्द बहुत गहरा होता है। वह वर्षों से केवल अपने प्रेम के इंतजार में भटक रहा था, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि सच्चा प्रेम किसी को बांधता नहीं बल्कि उसे खुश देखना चाहता है। आखिरकार चित्रसेन की आत्मा सीता को मुक्त कर देती है। महल में तेज हवाएं चलने लगती हैं। वातावरण में एक अजीब शांति फैल जाती है। ऐसा लगता है जैसे वर्षों पुरानी अधूरी कहानी अब समाप्त हो गई हो। सीता बेहोश होकर गिर पड़ती है, लेकिन जब उसे होश आता है उसके मन में पिछले जन्म की सारी उलझनें मिट चुकी होती हैं। राम और सीता फिर से अपने जीवन की नई शुरुआत करते हैं।

दोस्तों, नीलकमल केवल एक प्रेम कहानी नहीं थी। यह फिल्म इंसानी भावनाओं, अधूरे प्रेम और पुनर्जन्म जैसे विषयों को बहुत संवेदनशीलता से प्रस्तुत करती है। फिल्म का संगीत भी इसकी सबसे बड़ी ताकत बना। इसके गीत आज भी लोगों की जुबान पर है, खास तौर पर बाबुल की दुआएं लेती जा, जैसे गीत भारतीय सिनेमा के सबसे भावुक विदाई गीतों में गिना जाता है। वहीदा रहमान ने सीता के किरदार में मासूमियत और रहस्य दोनों को शानदार ढंग से निभाया। राजकुमार की दमदार आवाज और अभिनय ने चित्रसेन के दर्द को जीवांत कर दिया। वहीं मनोज कुमार ने एक समझदार और संवेदनशील पति की भूमिका को बड़ी खूबसूरती से निभाया। फिल्म की सफलता का एक बड़ा कारण इसका वातावरण भी था। पुराने महलों, रहस्यमयी गलियारों और भावनात्मक दृश्यों के बीच पूरी तरह से बंधा रखा था। नीलकमल उस दौर की उन फिल्मों में शामिल है जिन्होंने ये साबित किया कि हिंदी सिनेमा केवल मनोरंजन ही नहीं बल्कि गहरी भावनाओं और कल्पनाओं की दुनिया को भी खूबसूरती से पर्दे पर उतार सकता है।

तो दोस्तों, ये थी फिल्म नीलकमल की पूरी कहानी। उम्मीद है आपको ये प्रस्तुति पसंद आई होगी। और अब अपने दोस्त जसवीर सिंह को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।

श्रोता, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही फिल्म से जानकारी और गीत। आज आपने सुने फिल्म नील कमल के चंद फिल्मी गीत। मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्ज़ पर, DRM चैनल 909 किलोहर्ट्ज़ पर, FM 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर। ये आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। रात्रि के 8:30 होने वाले हैं। अब आप स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली से सुनेंगे।

0: नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के संस्करण के साथ मैं प्रशांत कुमार आप सभी श्रोताओं को अभिनंदन करता हूं। आज के अंक में खेल जगत की तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल विशेषज्ञ सौमित्र बोस। सौमित्र जी, स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
1: नमस्कार, गुड इवनिंग।
0: आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु और सात्विक चिराग की जोड़ी क्वार्टर फाइनल में पहुंची। एशियाई अंडर 15 बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत ने 9 स्वर्ण, 6 रजत और 12 कांस्य पदक सहित कुल 27 पदक जीते। एशियाई सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में अजीत नारायण ने कांस्य पदक हासिल किया। और आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स के बीच मुकाबला जारी। चर्चा की शुरुआत करते हैं बैडमिंटन से। बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु, सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। चर्चा करते हैं इस पर, लेकिन पहले सुनते हैं इस पर एक रिपोर्ट।
2: पीवी सिंधु और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी तथा चिराग शेट्टी ने आज दूसरी जीत के साथ शानदार प्रदर्शन जारी रखा। सिंधु ने डेनमार्क की अमाली शुल्च को सिर्फ 28 मिनट में 21-13, 21-15 से हराया। इससे पहले सिंधु ने चीनी ताइपे की तुंग स्यूटोंग को हराया था। सिंधु अब क्वार्टर फाइनल में मौजूदा विश्व चैंपियन जापान की अकाने यामागुची से भिड़ेंगी। दूसरी ओर सात्विक और चिराग ने ब्रायन जेरेमी गुनचिंग और मोहम्मद हाइकल को सीधे गेम में 21-12 और 21-19 से हराया। अब वे जापान के ताकुमी नोमुरा और युइची शिमोगामी की जोड़ी से भिड़ेंगे। भारतीय जोड़ी ने पहले मुकाबले में इंडोनेशिया के मुंह पुत्रा एरवियन स्या और बगास मौलाना पर जीत दर्ज की थी। वहीं ओपनिंग राउंड में श्रीकांत ने सिंगापुर के लोहकीन यू को हराया था। देविका ने जापान की एन निदाइरा को, जबकि बंसोड़ ने झांग वेन यू के खिलाफ जीत दर्ज की थी। सर फिरोजी, स्पोर्ट्स कैन।
0: इस टूर्नामेंट में पीवी सिंधु बेहतरीन लय में नजर आ रही है। दो गेम में ही लगातार मुकाबले जीत रही है, और बीच में जो एक गैप सा हो गया था 1.5 साल का, जिसमें उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा था, गेम से बाहर भी रही थी, अब वही पुरानी पीवी सिंधु जो 2 बार ओलंपिक मेडलिस्ट थी वो हमें दिखाई नजर आ रही है खेलती हुई।
1: देखिए, अभी टूर्नामेंट, अभी जो बोल रहे कि अभी कॉम्पिटिशन और मजबूत और टफ होने

0: नेक्स्ट मैच, नेक्स्ट राउंड का मैच जो है क्वार्टर फाइनल नाकानी यामागुची के साथ, वो काफी टक्कर का मैच रहेगा, क्योंकि हालांकि सिंधु का पुराना फॉर्म जो आपने बोला, दो बार मेडल जीत चुकी हैं, उसका उनका जो लीड है 15-12 का हेड टू हेड लीड है
1: जी,
0: मगर आंकड़े कुछ माने नहीं रखता, क्योंकि देखिए सिंधु का जैसे आपने कहा कि कम बैक फ्रॉम इंजरी, इंजरी से वापसी में ये अकानी यामागुची अगर थर्ड सेट तक पहुंच गया, थर्ड गेम तक पहुंच गया, ये मैच बहुत टफ होगा। इसी तरह आपको एक्चुअल टेस्ट सिंधु को कल ही मिलेगा जब वो जापानीज के साथ खेलेंगे।
1: और सात्विक चिराज की भी बात करें तो अच्छा खेल किया, प्रदर्शन दिखाया उन्होंने, ब्रॉन्ज मेडलिस्ट रह चुके हैं इस टूर्नामेंट पे ऑलरेडी, और किसी भी टूर्नामेंट में जब ये जोड़ी जाती है तो उनसे उम्मीदें रहती ही हैं कि वो जीत के आएंगे,
0: और ये खास करके इस टूर्नामेंट वो टॉप सीड है
1: जी,
0: और देखिए वो हमेशा कोई भी टूर्नामेंट खेलते हैं हम और जीतने के लिए कोशिश करते हैं, क्योंकि उसके ऊपर हमारा भारतीय की उम्मीद बहुत ज्यादा है, और देखिए कल क्या होता है, मगर एवरी डे इज ए न्यू डे, और हर एक पेयर जो आता है कभी भी उलट फिर हो सकता है, मगर सात्विक और साची जो हम बोलते हैं साची के ऊपर हमारा काफी उम्मीदें हैं
1: जो टॉप सीड है, और 2019 और 2024 में इन्होंने जीत भी हासिल की थी। चर्चा करते हैं अब बॉक्सिंग पर। ताशकंद में एशियाई अंडर 15 बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत ने 9 स्वर्ण, 6 रजत और 12 कांस्य पदक सहित कुल 27 पदक जीते, और लड़कियों के अंडर 15 वर्ग ने शीर्ष स्थान हासिल किया। अंडर 15 गर्ल्स वर्ग ने 7 स्वर्ण, 2 रजत और 5 कांस्य पदक जीतकर शानदार प्रदर्शन जारी रखा है, जबकि अंडर 15 लड़कों ने 2 स्वर्ण, 4 रजत और 7 कांस्य पदक जीते। 33 किलोग्राम वर्ग में अक्षिता ने रजत पदक जीता, 43 किलोग्राम में तन्वी ने स्वर्ण पदक जीता, वहीं भूमिका ने 61 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। लड़कों के अंडर 15 वर्ग में यश कुमार और मोहम्मद यासर ने अब्दुल्ला स्वर्ण पदक को अपने नाम कर लिया है। बेहतरीन प्रदर्शन रहा है खिलाड़ियों का, और अंडर 15 अभी युवा खिलाड़ी हैं, आगे चलकर उनको और भी मौके मिलेंगे, और ये एक एक्सपोजर जो है काफी उनके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है।
0: हमेशा देखिए कोई भी जो हमारे सारे बॉक्सर्स जो हैं, खास करके जूनियर डिवीजन में भारतवर्ष का हमेशा अच्छा प्रदर्शन रहा है, खास करके ये जो बच्चे हैं ये गवर्नमेंट को सपोर्ट मिलता है, और रोहतक में जो हमारा बॉक्सिंग सेंटर है साई का, उसमें इनका सारा इनका ट्रेनिंग होता है, ईयर राउंड ट्रेनिंग होते हैं, और यहाँ से बहुत सारे जो बॉक्सर्स है जो खेलो इंडिया एथलीट भी हैं, खास करके उनको सपोर्ट मिलता है, और बॉक्सिंग फेडरेशन के साथ जो साई का जो तालमेल जो है ये देखने को मिलता है। अब अगर रोहतक सेंटर में जाएं तो आपको देखने को मिलेगा, खास करके 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स अगर भारतवर्ष में होगा, और ये 2036 लॉस एंजलिस 2036 ओलंपिक्स अगर इंडिया में अगर हो पाएगा, तो ये हमारी इधर फ्यूचर जेनरेशन ऑलरेडी हम बिल्ड कर रहे हैं, मगर ये सब देखिएगा सब लोअर वेट कैटेगरी में है
1: जी,
0: और लोअर वेट कैटेगरी में हमेशा इंडिया हैज ऑलवेज बीन अ वेरी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर
1: जी। बात कर लेते हैं भारोत्तोलन पर। गुजरात में एशियाई सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में आज अजीत नारायण ने कांस्य पदक अपने नाम किया। पुरुषों के 71 किलोग्राम वर्ग के क्लीन एंड जर्क और समग्र दोनों स्पर्धाओं में अजीत ने पदक हासिल किया। प्रतियोगिता में अजीत कोमल कोहर और ज्ञानेश्वरी यादव के बाद पदक जीतने वाले तीसरे भारतीय बन गए हैं। इस वर्ग का स्वर्ण पदक कोरिया के वोन जू री को मिला, जबकि चीन के जियान चेन ने रजत पदक हासिल किया। अजीत चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले तीसरे भारतीय भी बन गए। आज भी उनका बेहतरीन प्रदर्शन रहा, 174 किलोग्राम और कुल 314 किलोग्राम का वजन उठाया उन्होंने, और गुजरात को जो मेजबानी मिली है उस तरह का प्रदर्शन करके भी खिलाड़ी दिखा रहे हैं।
0: खास करके ये जो चैंपियनशिप हो रहा है इसमें हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉम्पिटेंसी इन टर्म्स ऑफ टेक्निकल कॉम्पिटेंसी, और जिस तरह से अरेंजमेंट किया हुआ है वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज है गांधीनगर में, ये वेट लिफ्टिंग के ऊपर तो खास नजर सरकार का भी है, मगर ठीक है ये जो आपने जो अजीत का जो ब्रॉन्ज मेडल बोला है इसका प्रदर्शन तो बहुत बढ़िया रहा, मगर एक चीज आपको देखना पड़ेगा कि ये जो फॉर्म है ये एशियन गेम्स में बरकरार रख पाते कि नहीं, क्योंकि खास करके आप देखिए अगर चाइनीज और कोरियन की जिसकी आपने जिक्र किया उनका जो वेट डिफरेंस है जब वो गोल्ड जीता वो काफी ज्यादा है, तो कम से कम 20 किलो का डिफरेंस है, 20 किलो वेट लिफ्टिंग में बहुत माने रखते हैं, मगर ठीक है आप अप्रिशिएट करना चाहिए कि अजीत का जो प्रदर्शन है और भारतवर्ष में 71 किलोज में जो ये इस तरह से ब्रॉन्ज मेडल आया है ये काफी बेहतरीन है।
1: बात कर लेते हैं हॉकी पर। हॉकी इंडिया ने आज फ्रांस के पूर्व खिलाड़ी फेडरिक सोएज को भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम का कोच नियुक्त किया है। सोएज भारतीय दिग्गज पीआर श्रीजेश की जगह लेंगे, जिनका कॉन्ट्रैक्ट दिसंबर 2025 में खत्म हो गया था। खुद भी

0: बेहतरीन खिलाड़ी रहे हैं सोएज, और काफ़ी लंबा करियर रहा है, 15 साल उन्होंने फुटबॉल हॉकी खेला है, और 1995 से लेकर 2010 तक, और कोचिंग भी किया उन्होंने, टोक्यो ओलंपिक में किया है, फिर रियो में किया, पेरिस में किया, तो अच्छा प्रदर्शन रहा और एक एक्सपीरियंस्ड कोच को लेकर आ रहे हैं।
1: जरूर, आप देखिए हॉकी इंडिया जो भी सिलेक्शन करते हैं, जो कोचेज आपने देखा होगा, ऑस्ट्रेलियन कोचेज, हमने बहुत सारे ऑस्ट्रेलियन कोचेज देखे हैं, ये फ्रेडरिक सोएज है
0: जी,
1: इनके एक्सपीरियंस का तो कोई सवाल पूछ ही नहीं सकता। हालांकि श्रीजेश का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा था, 5 टूर्नामेंट में 5-5 मेडल मिला है, जूनियर वर्ल्ड कप में ब्रॉन्ज मिला है, मगर उसको शायद इमोशनली हम सोचे तो शायद श्रीजेश के ऊपर हम थोड़ा सोच सकते हैं, अरे श्रीजेश क्यों नहीं हुआ। मगर आप लॉन्ग टर्म विजन देखिएगा तो हमें हमेशा देखिएगा कि जब भी हमारे पास फॉरेन कोचेज आए हैं, हमारी जूनियर टीम हमेशा बेहतरीन प्रदर्शन दिया है, और ये जो भी डिसीशंस हॉकी इंडिया लेता है साई के साथ, गवर्नमेंट स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के साथ, ये हमेशा लॉन्ग टर्म विजन के लिए सोचा जाता है, खास करके जो 2036 ओलंपिक्स जो हमने बात की है, जैसे बॉक्सिंग में हमने आपको की है, हॉकी में भी सेम रूल और लॉजिक अप्लाई कर रहा है।
0: महाराष्ट्र सरकार ने बम्बई उच्च न्यायालय को बताया है कि उन्होंने भारत के पहले व्यक्तिगत ओलंपिक पदक विजेता पहलवान खशाबा दादा साहेब जादव को मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार देने का प्रस्ताव पहले ही भेज दिया है। सरकार ने पिछले हफ्ते उच्च न्यायालय की कोल्हापुर पीठ को बताया कि 31 जुलाई को नामांकन की तारीख खत्म होने से काफी पहले पद्म पुरस्कार 2027 के लिए भी एक नया प्रस्ताव भेजा गया। एक बेहतरीन खिलाड़ी रहे हैं और हेलसिंकी 1952 में, याद आता है हेलसिंकी ओलंपिक में कुश्ती में उन्होंने कांस्य पदक भी अपने नाम किया था।
1: जी, इंडिपेंडेंट इंडिया का पहला मेडलिस्ट, इंडिविजुअल मेडलिस्ट दादा साहेब खशाबा जादव
0: जी
1: ये रहे हैं, और शायद एकमात्र जो ओलंपिक मेडलिस्ट है जिसको पद्मा अवार्ड नहीं मिला है। तो ये हमेशा जब भी गवर्नमेंट का अवार्ड आते रहता है ये चर्चा में रहता है, मगर उनको कभी मिला नहीं। तो इस बार कोर्ट के जरिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट कोशिश कर रहे हैं कि शायद सरकार इस बार सुन ले, क्योंकि कोई डिजर्विंग, वो तो पोस्ट्यूमसली उनको अर्जुन अवार्ड भी दिया गया था 2000 साल में, मगर इतना देर तक शायद वेट नहीं करना चाहिए था।
0: बात कर लेते हैं क्रिकेट पर। धर्मशाला में आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक पंजाब ने 14वें ओवर में 5 विकेट पर 127 रन बना लिए हैं। मुंबई ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। वहीं कल हुए बारिश बाधित मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 6 विकेट से हराया। सुनते हैं एक रिपोर्ट।
2: रायपुर में कल टॉस गंवाकर पहले बल्लेबाजी के लिए उतरी कोलकाता ने 48 के स्कोर पर अपने 2 विकेट गंवा दिए। कप्तान अजिंक्य रहाणे ने 19, वहीं फिन एलन ने 18 रन बनाए। अंगकृष्ण ने रिंकू सिंह के साथ 4थे विकेट के लिए 76 रन जुटाकर केकेआर को विशाल स्कोर तक पहुंचाया। रघुवंशी ने ताबड़तोड़ 71, वहीं रिंकू सिंह ने नाबाद 49 रन की पारी खेली। कोलकाता ने 4 विकेट पर 192 रन बनाए। विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी आरसीबी ने धमाकेदार अंदाज में शुरुआत करते हुए महज 20 पर 37 रन जुटाए। इसके बाद कोहली ने देवदत्त पडिक्कल के साथ मिलकर 2रे विकेट के लिए 92 रन की साझेदारी की। विराट कोहली ने एक छोर संभाले रखा और केवल 58 गेंद में अपना शतक पूरा किया। कोहली ने 3 छक्कों और 11 चौकों के साथ 105 रन की नाबाद पारी खेली। बेंगलुरु ने 5 गेंद शेष रहते 193 रन का लक्ष्य हासिल करते हुए अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया। विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। मैच के बाद विराट कोहली ने कहा कि क्रिकेट का ये खेल व्यक्तित्व के विकास में भी सहायक है।
3: Cricket is absolutely something that I truly love and I just give my heart and soul out there on the field whether I'm fielding or batting because it's going to finish one day and I want to make the most of every day that I'm on the field and just enjoy myself and have a lot of fun and look forward to pressured situation, look forward to scenarios where I'm feeling a bit of heat and then I challenge myself to say, you know what, just go for it, and when you cross the line it makes you a better player. So you build your character slowly and surely when you keep performing under pressure, and for me, even after all these years, and it's still the love for the game. I just love hitting the ball in the middle of the bat and that joy is still there and it's all God's grace and I'm very thankful and grateful.
2: इस मैच के दौरान विराट कोहली ने आईपीएल इतिहास में सबसे ज्यादा मुकाबले खेलने का कारनामा भी अपने नाम कर लिया है। जागृति शर्मा, स्पोर्ट्स स्कैन।
0: 14,000 से ज्यादा रन, 9 आईपीएल सेंचुरीज और लगातार 2008 से जो खिलाड़ी खेलता आ रहा है आज तक वैसा ही परफॉर्मेंस करता है। जब ट्रॉफी नहीं थी तब भी इनका प्रदर्शन ऐसा ही था, आज ट्रॉफी है, डिफेंडिंग चैंपियन है तब भी वैसा ही प्रदर्शन, कंसिस्टेंट प्लेयर रहे हैं थ्रू आउट अपने करियर में।
1: सिर्फ कंसिस्टेंट नहीं है, इतने शब्द यूज किया

0: जी,
1: यहाँ विराट कोहली का कैरेक्टर का परिचय है। जो हम जो इनिंग्स जब हम डिस्क्राइब करते हैं, जो हम नहीं बोलते हैं कि हम क्या बोलते हैं कि विराट कोहली 60 बॉल्स में सेंचुरी बनाया, 11 चौका मारा, 3 छक्का मारा, हमने ये नहीं बोलता कि वो 8 डबल लिया
0: जी,
1: कि इनिंग्स को कैसे पेस किया
0: जी,
1: जो वो बहुत जरूरी है कि किसी को पकड़ के, एक ओपनिंग बैट्समैन को पकड़ के इनिंग्स को लेके जाए और बढ़ाया जाए। सिर्फ चौका छक्का तो हमको दिखता है, जो सिंगल्स और डबल्स में खेलता है वही खास बड़े प्लेयर के, जैसे कोहली जैसे प्लेयर को, पेडिग्री वाला जो प्लेयर का, इससे का नमूना है। और यही विराट कोहली दिखाया, खास करके लास्ट 2 मैचेस में आपको याद होगा 0-0 में आउट हुए थे, उसके बाद यही कैरेक्टर का परिचय है।
0: इसी श्रृंखला में एक नया नाम हमें अब जुड़ता दिख रहा है, वैभव सूर्यवंशी का, जिनका सिलेक्शन इंडिया ए के लिए जो श्रीलंका में होना है, जिसकी मेज़बानी अफगानिस्तान, श्रीलंका, भारत कर, उसमें उनका सिलेक्शन हुआ इंडिया ए की टीम में। और जिस तरह का प्रदर्शन वो लगातार करते आ रहे हैं, चाहे वो एशिया कप हो, अंडर 19 विश्व कप हो, अंडर 17 हो, लगातार IPL में भी डोमिनेट करके खेल रहे हैं वैभव।
1: एकदम राइट सिलेक्शन है, और दिस इज द टाइम कि उसको ब्रेक दिया जाए। जितना भी ब्रेक मिलेगा, जितना इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलेगा, खास करके 2 टीम के साथ जो खेलेंगे, श्रीलंका और अफगानिस्तान, और स्पिनिंग ट्रैक में अगर ये प्रदर्शन रन बना सकते हैं वाइट बॉल क्रिकेट में, तो आपको देखिएगा इसका फ्यूचर इज वेरी ब्राइट। और क्या जितना बोले उतनी ही कमी है, मगर फ्यूचर तो उनका बहुत ही ब्राइट है।
0: तो क्या हम कहें कि आयरलैंड और इंग्लैंड में जो होना है अभी श्रृंखला, उसके लिए वैभव तैयार है टीम में सेलेक्ट होने के लिए?
1: देखिए, तैयार तो है, जब तक ना आप उसको एक्सपोज करिएगा वेरियस पिच और वेदर कंडीशंस में, तब तक आपको उसको उसका एग्जैक्ट परिचय नहीं मिलेगा। मगर वाइट बॉल क्रिकेट एक चीज़ है, रेड बॉल क्रिकेट है। तो टोटल आप, हमने कुछ क्षण पहले ही हमने विराट कोहली का बात किया है, कैरेक्टर तो वहीं से पता चलेगा।
0: और श्रोताओं, चलते चलते आपको बता दें कि पंजाब ने 15 ओवर में 5 विकेट पर 135 रन बना लिए। और श्रोताओं, अब समय हो चला आपसे विदा लेने का। सौमित्र जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और तमाम खेल खबरों पर हमारे साथ चर्चा की, इसके लिए आपका धन्यवाद।
1: धन्यवाद,
0: नमस्कार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं आकर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स का लक्ष्य है बहुपक्षीय और समावेशी विश्व व्यवस्था। निर्वाचन आयोग ने 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया SIR के तीसरे चरण की घोषणा की। केरलम में कांग्रेस नेता VD सतीशन ने राज्यपाल से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश किया। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में बारिश, तूफान और बिजली गिरने से 70 से अधिक लोगों की मौत। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के बीच पेइचिंग में वार्ता। होर्मुज जल डमरू मध्य को खोलने पर बल दिया। और गांधीनगर में एशियाई सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में अजित नारायण ने पुरुषों के 71 किलोग्राम वर्ग में दोहरे कांस्य पदक जीते। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स बहुपक्षवाद को सशक्त बनाने, सतत विकास को बढ़ावा देने, आर्थिक लचीलापन बढ़ाने और अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था निर्मित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। आज नई दिल्ली में श्री मोदी से मुलाकात करने आए ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों और प्रतिनिधिमंडल के प्रमुखों के साथ बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बीच सहयोग को आगे बढ़ाने और ग्लोबल साउथ के देशों की आकांक्षाओं को आवाज देने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। ये बैठक नई दिल्ली में जारी ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक से अलग हुई। इससे पहले ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के अपने शुरुआती संबोधन में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है।
3: हमारी चर्चाओं का उद्देश्य एक ऐसा सतत विकास सुनिश्चित करना होना चाहिए जो समानता के सिद्धांतों तथा साझी लेकिन अलग अलग जिम्मेदारी की भावना पर आधारित हो। तकनीकी प्रगति वैश्विक परिदृश्य को बदल रही है, इसका उपयोग सुशासन और समावेशी विकास के लिए प्रभावी रूप से किया जा सकता है। आतंकवाद के खिलाफ सहयोग मजबूत करने पर सभी देशों की गहरी और साझा सहमति है।
2: बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री पारस्परिक हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात

0: नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के 6 दिवसीय दौरे पर रवाना होंगे। 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी कल अबू धाबी के लिए रवाना होंगे, जहां वे व्यापार, निवेश, ऊर्जा सुरक्षा और उभरती प्रौद्योगिकियों पर केंद्रित उच्च स्तरीय चर्चाओं के लिए संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे। ये यात्रा दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों में तीव्र वृद्धि के बीच हो रही है। एक रिपोर्ट।
1: भारत के यूए को एक्सपोर्ट्स अब 36.63 बिलियन डॉलर से अधिक हो गए हैं, जिससे एमिरेट्स भारत का दूसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन बन गया है। प्रमुख एक्सपोर्ट्स में रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, सोना और डायमंड ज्वेलरी, इंजीनियरिंग गुड्स, गारमेंट्स, फार्मास्यूटिकल्स और प्रोसेस्ड फूड शामिल है। इम्पोर्ट्स की बात करें तो यूए से भारत आने वाली सामान में मुख्य रूप से क्रूड ऑयल, सोना और पेट्रोकेमिकल शामिल है। पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़ते हुए अब दोनों देशों के बीच उच्च मूल्य वाले क्षेत्रों में भी सहयोग बढ़ रहा है, जिनमें सेमीकंडक्टर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रिन्यूएबल एनर्जी, फिनटेक, हेल्थ केयर, क्रिटिकल मिनरल्स और सिविल न्यूक्लियर एनर्जी शामिल है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबुधाबी।
0: निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के तीसरे चरण की घोषणा कर दी है। अभियान 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में संचालित किया जाएगा।
2: इस चरण में आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, सिक्किम, त्रिपुरा, तेलंगाना और उत्तराखंड राज्य शामिल हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव शामिल हैं। अभियान के दौरान 3,94,000 से अधिक बूथ स्तरीय अधिकारी 36,73,00,000 मतदाताओं के घर जाकर उनसे संपर्क करेंगे। तीसरे चरण में हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख को छोड़कर पूरे देश में मतदाता सूची संशोधन का कार्य पूरा हो जाएगा। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
0: केरलम में आज तिरुवनंतपुरम में आयोजित कांग्रेस विधायक दल की बैठक में VD सतीशन को औपचारिक रूप से नेता चुना गया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता VD सतीशन ने आज शाम राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर से मुलाकात की और केरलम में नई सरकार बनाने के लिए औपचारिक रूप से अपना दावा पेश किया। कांग्रेस विधायक दल की आज शाम तिरुवनंतपुरम में बैठक हुई और उन्होंने VD सतीशन को अपना नेता चुना। इस बीच निवर्तमान मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन को CPM के विधायक दल के नेता के रूप में चुना गया। तिरुवनंतपुरम से स्मृति की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: तमिलनाडु में ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम AIADMK के महासचिव एडप्पा डी पलनीस्वामी ने आज राज्यपाल विश्वनाथ अरलेकर से मुलाकात कर उन्हें SP वेलुमणि के नेतृत्व वाले AIADMK विधायकों के गुट के संबंध में एक याचिका सौंपी। पूर्व मुख्यमंत्री ने राज्यपाल से इस मुद्दे को अध्यक्ष JCD प्रभाकर के समक्ष उठाने का अनुरोध किया। SP वेलुमणि के नेतृत्व वाले गुट के 25 AIADMK विधायकों ने OS मनियन द्वारा जारी व्हिप की अवहेलना करते हुए TV के सरकार के पक्ष में मतदान किया था। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने कहा है कि देश में कच्चे तेल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए गए हैं। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया के घटनाक्रम पर अंतर मंत्रालयी प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि घरेलू एलपीजी आपूर्ति सुचारू रूप से जारी है।
4: भारत सरकार ने कई इफेक्टिव स्टेप्स लिए हैं, जिसके चलते हमारे पास पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और नेचुरल गैस के पर्याप्त

0: स्टॉक्स अवेलेबल है, हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं और एलपीजी प्रोडक्शन भी इंक्रीज किया जा चुका है। हमारे किसी भी रिटेल आउटलेट पर और एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है, सब जगह पर नॉर्मल ऑपरेशन चल रहे हैं।
1: पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग सचिव मुकेश मंगल ने बताया कि भारतीय व्यापारिक जहाज हाजी अली ओमान के जल क्षेत्र में कल तड़की आग लगने से कथित तौर पर डूब गया।
2: एन इंडियन डो
3: सोमालिया से शारजाह जा रहे भारतीय जहाज हाजी अली पर 13 मई की सुबह ओमान के समुद्री क्षेत्र में हमला हुआ, जिससे जहाज में आग लग गई और वो डूब गया। जहाज पर सवार चालक दल के सभी 14 सदस्यों को ओमान तटरक्षक बल ने सुरक्षित बचा लिया। भारत सरकार ओमान सल्तनत के अधिकारियों, भारतीय मिशन के अधिकारियों और संबंधित समुद्री एजेंसियों के साथ संपर्क में है।
2: इंडियन मिशन ऑफिशियल्स एंड रिलेवेंट मैरिटाइम एजेंसीज।
1: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 7 अपीलों के मद्देनजर अपने संबंधित मंत्रालयों और विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री की अपील के अनुरूप मंत्रालय स्तर पर 1 वर्ष तक सोने की खरीद न करने का निर्णय लिया गया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली सरकार राजधानी में कल से 90 दिनों तक मेरा भारत मेरा योगदान अभियान चलाने की घोषणा की है।
4: दिल्ली सचिवालय में पत्रकारों को संबोधित करते हुए श्रीमती गुप्ता ने कहा कि इस अभियान के अंतर्गत आवश्यक सेवाओं को छोड़कर दिल्ली सरकार के सभी कार्यालय सप्ताह में 2 दिन घर से काम करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार निजी क्षेत्र को भी सलाह जारी करेगी कि जहां भी संभव हो सप्ताह में 2 दिन घर से काम करने की नीति अपनाएं। वहीं सरकारी वाहनों में पेट्रोल डीजल की खपत 20% तक कम करने का लक्ष्य रखा गया है।
5: हर मंडे को हम मेट्रो मंडे के रूप में काम करेंगे, जिसमें हम सभी मंत्री, हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी संभव हो मेट्रो से ऑफिस जाएंगे और वापस आएंगे।
4: इसके अलावा दिल्ली सरकार ने सप्ताह में 1 दिन नो व्हीकल डे मनाने की भी अपील की है। आरजू के साथ आकाशवाणी समाचार के लिए शित कुमार वैद्यान।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है।

0: दिशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने आज बीजिंग में वार्ता की। व्यापार, प्रौद्योगिकी और क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर तनाव के बावजूद दोनों नेताओं ने टकराव के बजाय सहयोग पर बल दिया। व्हाइट हाउस के अनुसार दोनों नेताओं ने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि ऊर्जा का निरंतर प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए होर्मुज जल डमरू मध्य खुला रहना चाहिए। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने टकराव के बजाय सहयोग को बढ़ावा देने पर बल दिया और कहा कि चीन और अमेरिका को प्रतिद्वंद्वी नहीं बल्कि साझेदार होना चाहिए। श्री ट्रंप ने कहा कि अमेरिका चीन के साथ व्यापार और निवेश के अवसरों का विस्तार करने के लिए उत्सुक है।
2: अमेरिका और चीन के लोगों में कई

0: होना चाहिए। श्री ट्रंप ने कहा कि अमेरिका चीन के साथ व्यापार और निवेश के अवसरों का विस्तार करने के लिए उत्सुक है।
1: अमेरिका और चीन के लोगों में कई समानताएं हैं। हम साहस और उपलब्धि को महत्व देते हैं। दोनों देशों के एकजुट होकर काम करने से हमें इन मूल्यों का उपयोग करके इस क्षेत्र और विश्व के लिए अधिक समृद्धि, सहयोग, सुख और शांति से भरे भविष्य का निर्माण करने का अवसर मिलेगा।
0: इस बीच अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने चीन को चेतावनी दी है कि ताइवान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई एक भयानक गलती होगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग की मुलाकात के बाद ताइवान के प्रति अमेरिका की नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। श्री रूबियो ने ताइवान को लेकर चीन की धमकी पर कोई जवाब देने से परहेज किया है। इससे पहले राष्ट्रपति जिनफिंग ने चेतावनी दी थी कि ताइवान मुद्दे पर गलत तरीका अपनाने से चीन और अमेरिका के बीच टकराव और संघर्ष हो सकता है। ये टिप्पणियां दोनों देशों के बीच ईरान संघर्ष, ऊर्जा सुरक्षा और व्यापार जैसे व्यापक मुद्दों पर हुई बातचीत के दौरान आई। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में बारिश, आंधी और बिजली गिरने से 70 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिला मजिस्ट्रेट और संबंधित अधिकारियों को घटनास्थल का तत्काल सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया है। एक रिपोर्ट।
2: मौसम में आए अचानक बदलाव ने राज्य भर में भारी तबाही मचाई है। आंधी, भारी बारिश और बिजली गिरने से कई लोगों की जान चली गई। प्रयागराज में 21, भदोही जिले में 15, मिर्जापुर में 18, फतेहपुर में 9, बदायूं में 5 और बरेली जिले में 4 लोगों की मौत हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की और निर्देश दिया कि मुआवजा राशि, बचाव अभियान समेत अन्य कार्यों को सोशल मीडिया पर अपडेट किया जाए और सभी जिलों को हर 3 घंटे में हालात का अपडेट भेजने के लिए भी कहा गया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: इस बीच मौसम विभाग ने कल अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरलम, माहे, दक्षिणांतरिक कर्नाटक, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारिकाल और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। गुजरात में एशियाई सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में आज अजीत नारायण ने कांस्य पदक अपने नाम किया। पुरुषों के 71 किलोग्राम वर्ग के क्लीन एंड जर्क और समग्र दोनों स्पर्धाओं में अजीत ने पदक हासिल किया। प्रतियोगिता में अजीत कोमल कोहर और ज्ञानेश्वरी यादव के बाद पदक जीतने वाले तीसरे भारतीय बन गए हैं। धर्मशाला में आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स के बीच मुकाबला जारी है। पंजाब ने 17वें ओवर में 7 विकेट पर 140 रन बना लिए हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स का लक्ष्य है बहुपक्षीय और समावेशी विश्व व्यवस्था। निर्वाचन आयोग ने 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया SIR के तीसरे चरण की घोषणा की। केरलम में कांग्रेस नेता VD सतीशन ने राज्यपाल से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश किया। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में बारिश, तूफान और बिजली गिरने से 70 से अधिक लोगों की मौत। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के बीच पेचिंग में वार्ता। और गांधीनगर में एशियाई सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में अजित नारायण ने पुरुषों के 71 किलोग्राम वर्ग में दोहरे कांस्य पदक जीते। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: Good evening, this is Akashvani and I am Abhishek Mukhopadhyay with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says under India's chairmanship this year BRICS to aim for multilateralism and more inclusive world order. Election Commission announces Special Intensive Division Phase 3 to be conducted across 16 states and 3 union territories. In Keralam, Congress leader V.D. Satishan meets governor to stake claim to form government. In Uttar Pradesh, over 70 people killed due to rain, storms and lightning in the last 24 hours. U.S. President Donald Trump and his Chinese counterpart Xi Jinping hold talks in Beijing, stress on opening of Strait of Hormuz. And in Asian Senior Weightlifting Championships, Ajit Narayan clinches double bronze in men's 71 kg at Gandhinagar, Gujarat.

श्रोता, अभी आप गुलाम अली की आवाज़ में सुन रहे थे ये गज़ल। इसी के साथ आज का सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्ज़ पर, DRM चैनल 909 किलोहर्ट्ज़ पर, FM 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर। आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। रात्रि के 9:30 होने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप आकाशवाणी दिल्ली से सुनेंगे कार्यक्रम काउंट्री वाइट इनसाइट।

0: नमस्कार, कार्यक्रम कंट्रीवाइड में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे, मौसम विभाग ने पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित मॉनसून अग्रिम पूर्वानुमान प्रणाली शुरू की है। इस पर हमारे साथ है डॉक्टर शेष कुमार गोरोशी, जो कि मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं। डॉक्टर शेष कुमार, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: नमस्कार
0: डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम बात करेंगे इसी विषय पर कि मौसम विभाग ने पहली बार ये प्रणाली शुरू की है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित मॉनसून अग्रिम पूर्वानुमान प्रणाली। तो पारंपरिक मौसम पूर्वानुमान की जो प्रणालियां हुआ करती थी, उनकी तुलना में ये नई प्रणाली हमारे लिए कितनी बड़ी पहल है?
1: मैं पहले थोड़ा सा ये बताना चाहता हूँ, भारत जो मौसम विभाग है, पहले भी ऑनसेट ऑफ मानसून केरला के ऊपर देता था। उससे पहले जो लंबी अवधि की जो मानसून जो फोरकास्ट देता है, जैसे अप्रैल सेकेंड वीक में देता, अभी इसी साल दिया है अप्रैल 13 तारीख, उसमें बताया गया कि इस बार जो बारिश है पूरे देश में

0: जो सामान्य से नीचे होगा। और फिर इसी का अपडेटेड हम देते हैं मई लास्ट वीक में, तो उसमें बताया जाता है कि इसका अपडेटेड वर्जन देता है कि अभी देश में कितना बारिश होगा, इसी का अपडेटेड। इसके साथ साथ हम लोग ये भी देते हैं कि ऑनसेट ऑफ मानसून कौन से दिन होने वाले केरला में, ये हर साल हम देते थे, इस साल हमने क्या किए हैं। और एक AI बेस्ड एक मॉडल लाए हैं जो ब्लेंडेड अप्रोच हम इसको कहते हैं, इसमें जो IMD का डेटा लेके फिर इसको दो मॉडल जो प्रोसेस है उसको ब्लेंड करके, उसको IFS कहते हैं, IITM का ERF कहते हैं, तो इसके साथ स्टैटिस्टिकल मॉडल लेके इसको ब्लेंड किया गया है। और उसका जो मेन एब्सोल्यूट एरर हम कहते हैं प्लस और माइनस 4 दिन है, उसमें मोस्ट जो वाइडली यूज दो क्राइटेरिया हमने यूज किया है, जो फर्स्ट डे ऑफ 5 डे वेट स्पेल, और सेकेंड ये है कि 5 डे वेट स्पेल है उसके बाद सब्सिक्वेंटली ड्राइड स्पेल नहीं होना चाहिए 10 डेज, ये पूरा 30 दिन में इस क्राइटेरिया को फॉलो करते हुए है। और AI बेस्ड ये मॉडल हमने डेवलप किया है, अभी फिलहाल हमने इसको देंगे 3196 जो ब्लॉक्स है इंडिया में, ये करता है कि 15 स्टेट और 1 UT में। अब इसके बाद भी हम कोशिश कर रहे हैं कि बाकी जो ब्लॉक थे भी हम डेवलप करेंगे इसको। रिसेंटली इस प्रोडक्ट को मिनिस्टर ऑफ स्टेट है जितेंद्र सिंह जी और हमारे सेक्रेटरी DG मिलके इसको लॉन्च किया गया प्रोडक्ट। ये किसानों के लिए बहुत लाभदायक है और इसके साथ भी अलग सेक्टर्स भी है जो एग्रीकल्चर रिलेटेड है, इसके लिए महत्वपूर्ण कहता है, इसलिए है कि जो किसानों को लैंड प्रिपरेशन हो, सीड परचेज करना हो, और इसका जो स्ट्रेटेजिकली शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स लेना हो, लॉन्ग ड्यूरेशन का क्रॉप्स लेना हो, ये प्रॉपरली वो प्लान कर सकते हैं। इस फोरकास्ट को हम प्रोबेबिलिटी फोरकास्ट हम कहते हैं, इसको 4 हफ्ते पहले हम देते ताकि उनको काफी टाइम मिले प्रिपरेशन करें। पहले हम प्रोग्रेस देते थे हर दिन, बट ये ब्लॉक स्पेसिफिक होगा, हर ब्लॉक में आपका ब्लॉक में ऑनसेट कब होगी बारिश, इसके हिसाब से जितना भी ब्लॉक में किसान है वो अपना प्रॉपरली प्लान कर सकते हैं।
1: वैसे ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित ये जो पूर्वानुमान प्रणाली तैयार की जा रही है, इनमें स्वदेशी तकनीक की किस तरह की भूमिका है, खासतौर जब हम सैटेलाइट्स की बात करते हैं या और भी इस तरह के जो उपकरण होते हैं, तो ये कितने हमारे लिए फायदेमंद है या कितने विश्वसनीय होते हैं हमारे लिए?
0: इसमें जो बेसिक डेटा यूज किया है कि IMD का डेटा है, जो इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का जो डेटा है ऑलरेडी हमारा सरफेस इंस्ट्रूमेंटेशन है, जैसे आपका ARG ऑटोमेटिक रेन गॉज है और उसके AWS ऑटोमेटिक रेन गॉज है, उसमें रडार भी है, उसमें सैटेलाइट डेटा भी है, इसको हम पहले तैयार किए हैं। उसके बाद 3 जो प्रोसेसेस है, जैसे मैंने बताया AIFS है, देन IITM का जो ERP है, देन स्टैटिस्टिकल मॉडल है, इसको ब्लेंड किया है हमने। उसके बाद AI जो मॉडल्स है इसको यूज करके फिर हम प्रोबेबिलिटी निकाले हैं इस ब्लॉक में कब ये ऑनसेट होगी। इसमें पूरा इंडिया का भी रोल है, जो बेसिक डेटा जा रहा है और इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का जो इंडिया का डेटा है, और जो मॉडल्स बनाए IITM है, जो MOES का इंस्टीट्यूट है, उन्होंने ये पूरा प्रोसेस को प्रणाली को तैयार किया है, और इसका डिसिमिनेशन भी किसानों तक पहुंचेगी, अलग अलग जो मिनिस्ट्रीज है इसको किसानों तक पहुंचाने की काम करेगी।
1: डॉक्टर साहब, अभी आपने बताया कि 15 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश के 3196 से अधिक उप जिलों तक इस तरह की प्रणालियों को पहुंचाने का काम किया जा रहा है, कोई संदेह नहीं कि इसे करने में काफी सारी मेहनत भी लगी होगी, कुछ चुनौतियां भी सामने आएंगी, तो उनके बारे में कुछ बताएंगे।
0: एक्चुअली जो पूरे इंडिया का डेटा है, हम इनिशियली इस रीजन को इसलिए कन्फाइन किया, हमारे पास बहुत डेंस डेटा है, सरफेस इंस्ट्रूमेंटेशन डेटा हो जो वैलिडेशन के लिए हमें चाहिए, और बाकी रीजन के लिए भी हम करेंगे। अभी इस बार जो किया है इसको हम टेस्ट करेंगे, और नेक्स्ट ये है कि इसका डिसेमिनेशन पार्ट है, हम ऑलरेडी इसका डेटा आ गया, इसको किसानों तक कैसे पहुंचाना वो एक काम है, हम अलग अलग मिनिस्ट्रियों के साथ जो कोलैबोरेशन कर रहे हैं, और IMD अपना एक टीम है जो किसानों तक कनेक्टेड है, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज से भी हम कनेक्ट करेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट से भी हम कनेक्ट करेंगे, जिसका देशों में नेटवर्क है, जैसे कृषि सखी पशु सखी का नेटवर्क है, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज का नेटवर्क है, जिसका हमने उसी के साथ मिलकर एक पोर्टल बनाया पंचायत मौसम सेवा, उसके थ्रू भी हम इन्फॉर्मेशन दे देंगे। हमारा एम है कि सब किसानों को पहुंचना चाहिए ताकि उनको काफी टाइम मिले प्लानिंग करने के लिए।
1: यानी ये कह सकते हैं कि किसानों को ध्यान में रख करके फार्मर ओरिएंटेड चीजों को डेवलप करने पर काम हो रहा है, किसानों की अधिक से अधिक मदद की जा सके ताकि वो अपनी फसल को बेहतर कर सकें और अपनी आमदनी बढ़ा सकें।
0: ऑलरेडी IMD और बहुत स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज और बहुत सारे ICR सेंटर्स हैं और बहुत IITs के साथ मिलकर एक अच्छा प्रोग्राम देते हैं, जहां पे IMD वेदर फोरकास्ट देते हैं नेक्स्ट 7 डेज के लिए, और उसके साथ साथ एवरी ट्यूजडे एंड फ्राइडे एक कॉम्प्रेंसिव एडवाइजरी बनाते हैं हर क्रॉप के लिए, हॉर्टिकल्चर क्रॉप के लिए, लाइफ स्टॉक के लिए, पॉलिटी के लिए, फिशरी के भी, कि अगले 7 दिनों में आपका क्या मौसम रहेगा, उसके हिसाब से आपका क्रॉप को क्या इम्पैक्ट होगी, उसका आपको एडवाइजरी, क्या आपको एक्शन लेनी है। उसके साथ साथ इनके ऑनसेट भी हम देंगे, जो उनका प्रोबेबिलिटी की जो ऑनसेट डेट है नेक्स्ट 4 वीक्स के लिए, उनको काफी मदद मिलेगा और ये प्रॉपर प्लान भी करेगा और इनके क्रॉप में तो नुकसान भी कम होगा।

0: डॉक्टर शेष, अभी जो हमारी बात हुई इसमें हमने देखा कि उत्तर प्रदेश के लिए खासतौर पर 1 किलोमीटर रेजोल्यूशन पर वर्षा पूर्वानुमान की पायलट प्रोजेक्ट को शुरू किया गया है, तो इसे पूरे देश में लागू करने की भी योजना है।
1: अभी हम दूसरा प्रोडक्ट जो माननीय मंत्री जी है जितेंद्र सिंह जी कल लॉन्च किया है, ये 1 किलोमीटर स्पेशल रेजोल्यूशन का रेनफॉल प्रोडक्ट है, अभी हमने उत्तर प्रदेश स्टेट के लिए बनाए गए हैं। इसलिए है कि वहाँ पे एक विंस प्रोग्राम है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का, उन्होंने काफी ARG है AWS इंस्टॉल किया है, काफी इन्फॉर्मेशन अभी ऑलरेडी हमारे पास आ रहा है। उसके साथ साथ हमने रेडार डेटा भी यूज किया है, AWS डेटा भी यूज किया है, यूज करके एक मॉडल ऑलरेडी हमारा ग्लोबल मॉडल है जो फोरकास्ट देता है 12.5 किलोमीटर, और एक रीजनल जो मॉडल है जो INCMRWF का है उसके पास 3 से लेकर 4 किलोमीटर का जो स्पेशल रेजोल्यूशन पे हर घंटे में अपडेट होता है। इसी को AI जो मॉडल्स है उसको यूज करके हम लोग डाउन स्केलिंग किया, 12 किलोमीटर को 4 किलोमीटर के, 4 किलोमीटर को फिर 1 किलोमीटर किया। ये हर घंटे में अपडेट होता है नेक्स्ट 10 डेज के लिए, एक बार रन किया तो 240 आवर्स के लिए जो रन होता है जो नेक्स्ट 10 डेज के लिए। ये एग्रीकल्चर के अलावा भी बाकी सेक्टरों के लिए, जैसे ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर है, जैसे एविएशन सेक्टर के लिए ये मदद होगा। और ये जो प्रोग्राम है अब इनिशियली हम इसको पायलट सर्विस हम कह रहे हैं, बाकी देशों में भी हमने इसको शुरू किया काम करने के लिए। एक बार हो सकता है कि ग्रेजुअली हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं हर एक साल के लिए, और ये हम साथ साथ इसका वेरिफिकेशन भी कर रहे हैं, वैलिडेशन भी कर रहे हैं, जो वहाँ पे AWS डेटा है, ARG डेटा है, जो इंस्ट्रूमेंट से जो डेटा आता है उसके साथ साथ कंपेयर करके इसका एरर भी बताते हैं कि एक्यूरेट कितना है प्रोडक्ट, उसको कहाँ कहाँ यूज करते हैं, उसको API के थ्रू हम भेज भी रहे हैं। जो ये दोनों प्रोडक्ट है जो कल लॉन्च किया है, ये हम लोग API के थ्रू सभी एजेंसीज को जो रेनफॉल या वेदर इन्फॉर्मेशन चाहिए इसको ऑलरेडी शेयर करना हमने शुरू कर दिया। तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर जो किसानों के लिए काम करता है और उसका साथ साथ भी MNCA जो यील्ड फोरकास्ट करता है, उनके लिए उनका मॉडल के लिए बहुत जरूरी है जो रेनफॉल डेटा वेदर डेटा है, वो हर फार्म लेवल का भी क्रॉप यील्ड एस्टिमेशन करना चाहते हैं, उसके लिए हाई रेजोल्यूशन बहुत ही जरूरी है, इसलिए ये प्रोडक्ट बनाया गया है।
0: डॉक्टर शेष, अभी अपने ट्रांसपोर्टेशन का जिक्र किया तो ट्रांसपोर्टेशन की बात आती तो भारत जैसा देश जहां पर कृषि भी बड़े पैमाने पर होती है, ट्रांसपोर्टेशन भी बहुत बड़े पैमाने पर होता है, एविएशन की हम बात करें या फिर एनर्जी सेक्टर की बात करें तो यहां पर भी इस तरह के फोरकास्ट की इम्पोर्टेंस काफी ज्यादा बढ़ जाती है। जैसे UP में पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया, कुछ स्पेसिफिक इनके लिए भी किया जा रहा है?
1: जी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो हम रेनफॉल के दे रहे हैं, इसके अलावा भी ऑलरेडी IMD सभी सेक्टर्स के लिए सर्विसेज दे रहा है, जैसे इंक्लूडिंग हेल्थ सेक्टर है, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, एविएशन हो गया, ऐसे कोई सेक्टर है जो IMD वेदर फोरकास्ट नहीं देता। हम देखे तो जो नौकास्ट हम कहते हैं अगले 3 घंटे में फोरकास्ट देते हैं हम लोग, और मीडियम रेंज शॉर्ट रेंज कहते हैं नेक्स्ट 3 दिन में वेदर फोरकास्ट देते हैं, और नेक्स्ट मीडियम रेंज नेक्स्ट 7 दिन के लिए, और उसके बाद एक ERFS होते हैं एक्सटेंडेड रेंज फोरकास्ट जो अगला 15 दिन में, उसके बाद हर महीने का भी देते हैं और 4 महीने का भी देते हैं, उसको हम कहते हैं सीमलेस वेदर फोरकास्ट सिस्टम फॉर इंडिया। तो इसमें हर तरीके से फोरकास्ट है, इसको हर सेक्टर्स को हम देते हैं, वो ऑलरेडी हम API के थ्रू दे रहे हैं, उनका सेक्टर्स के साथ इंटीग्रेट भी किया, इनकेस उनका पोर्टल्स भी है, उस पोर्टल के साथ भी हम इंटीग्रेट किया, उसके लिए अलग अलग डेडिकेटेड हम पोर्टल्स भी बनाए कि ताकि वहां से डायरेक्टली एक्सेस करें लोग, उस इन्फॉर्मेशन को यूज करें।
0: किसानों के बारे में अगर मैं मौसम विभाग के जो भी प्रयास किए जा रहे हैं, तो अभी हाल के दिनों में काफी बदलाव देखने को मिले हैं पिछले 1 दशक के मुकाबले, तो प्रेजेंट टाइम में क्या खास है किसानों के लिए मौसम विभाग की तरफ से जिसका वो अधिकतम लाभ उठा सकें?
1: जैसे मैं कहा कि स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, ICAR सेंटर्स है, IITs है, काफी इम्पैक्ट जो NGOs भी है उनके साथ कोलैबोरेशन करके IMD एक स्कीम इंप्लीमेंट करते हैं, उसको कहते हैं ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, जो रूरल एग्रीकल्चर जो है उसी के लिए एक डेडिकेटेड स्कीम बनाया गया है। इसमें बहुत सारे देशों में बहुत सारे सेंट्रल इंस्टीट्यूट है, स्टेट इंस्टीट्यूट सब इन्वॉल्व है। इसमें हम लोग वेदर फोरकास्ट देते हैं अगले 7 दिन के लिए और ये हर दिन जाता है, और इसी मौसम का आधारित एडवाइजरी भी देता है कि आपका अगले 7 दिन में कैसे मौसम रहेगा, और इनकेस इस तरह मौसम है तो क्या नुकसान होगी, और उस नुकसान को बचाव करने के लिए आपको क्या क्या करनी पड़ेगी, एक्शन लेनी पड़ेगी। ये हमारा एक नेटवर्क है, उसको हम कहते हैं कि 130 नेटवर्क बनाया है, 130 जो डिस्ट्रिक्ट लेवल नेटवर्क बनाया है। हमारा जो मौसम विभाग से फोरकास्ट उनको जाता है, वहाँ के जो साइंटिस्ट बैठे हैं स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, वो एंटोमोलॉजिस्ट है, पैथोलॉजिस्ट, एग्रोनॉमिस्ट है, वो क्रॉप रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेके एक कॉम्प्रिहेंसिव बुलेटिन बनाता है, उस बुलेटिन को वेदर इन्फॉर्मेशन के साथ हम डिसिमिनेट करते हैं, और डिसिमिनेट करने के लिए भी बहुत सारे कोलैबोरेशन हमने किए हैं, जैसे पंचायत मौसम सेवा, वहाँ पे हर पंचायत मेंबर को व्हाट्सएप के थ्रू डायरेक्टली जाता है, और वो पंचायत जो सरपंच है, वार्ड मेंबर या सेक्रेटरी है, फर्दर वो उनका गांव का जो लोग है जो किसान उनको फर्दर डिसिमिनेट करते हैं। और रिसेंटली फिर हम मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के साथ कोलैबोरेशन किए, उनके साथ एक अच्छा नेटवर्क है जो पशु सखी है, कृषि सखी है, जो उनका नेटवर्क हम

0: ब्रॉडकास्ट उनको देते हैं, वो फर्दर वहाँ पे कृषि से की फसल के फिर उसका गांव में जो डिसमिनेट करते हैं। लगभग अभी आप देखेंगे तो हर बार 4 करोड़ के आसपास किसानों को इस वेदर इन्फॉर्मेशन पहुंचाने का हम कोशिश कर रहे हैं। उसके हिसाब से हम एक इम्पैक्ट असेसमेंट भी किया था, कितना इससे आपको लाभ मिल रहा है। फीडबैक भी हम कलेक्ट करते हैं कि इम्पैक्ट असेसमेंट इन केस कोई भी किसान है जो रेनफेड रीजन में है, सोइंग से लेकर हार्वेस्टिंग तक वेदर इन्फॉर्मेशन या इस एडवाइजर को यूज करेंगे तो उनको लगभग 12,500 का एडिशनल इनकम मिल जाती है। तो इसी को पूरे इंडिया में जहाँ पे रेनफेड एग्रीकल्चर है जिसका खेती है बिलो पॉवर्टी लाइन है, जो लेस देन 2 हेक्टेयर है, वो इन केस इम्प्लीमेंट करे लगभग देश में 13,500 करोड़ जो बचा सकते या एडिशनल इनकम हम कर सकते हैं इस एडवाइजर के या वेदर इन्फॉर्मेशन के थ्रू।
1: डॉक्टर शेज, बहुत ही ग्राउंड लेवल का सवाल है ये, एक आम किसान अगर इस तरह की सुविधाओं का लाभ उठाना चाहता है तो उसे किन बातों पर ध्यान देना चाहिए, उसे किस तरह के प्रयास करना चाहिए, उसे क्या करना चाहिए कि उस तक मौसम की सटीक जानकारी पहुंचे?
0: जैसे मैंने बोला, कोलैबोरेशन के साथ बहुत सारे हमने स्टेट एग्रीकल्चर कोलैबोरेशन की है। हम लोग फार्मर्स अवेयरनेस प्रोग्राम भी करते हैं, जो हमारे ऑफिसर्स है तो हर जिले में जाके फार्मर्स अवेयरनेस प्रोग्राम में जाते हैं, उसमें वो पार्टिसिपेट करना चाहिए और हर न्यूज़पेपर में भी देते हैं और रेडियो में भी पार्टिसिपेट करते हैं कि मौसम का जानकारी के लिए और एडवाइजरी भी क्या करना चाहिए उस पर्टिकुलर क्रॉप के लिए। किसानों को उसमें जोड़ के रहना पड़ेगा कि आज का वेदर फोरकास्ट क्या है, और फार्मर्स अवेयरनेस प्रोग्राम में जरूर ज्वाइन करनी चाहिए। और हमारे एक डेडिकेटेड मोबाइल एप्स भी हैं जो रीजनल लैंग्वेज में देते हैं, इनकेस कोई पंजाबी है तो पंजाबी लैंग्वेज में हम वेदर फोरकास्ट देते हैं और एडवाइजरी भी उसी लैंग्वेज में होता है। वो एक मेघदूत ऐप है और एक मौसम ऐप है, और इसके अलावा भी एक दामिनी ऐप है जिसमें लाइटनिंग इन्फॉर्मेशन आता है। तो इसके अलावा भी किसान बहुत सारे लोग हैं जो बाहर जाते हैं, जैसे हैवी रेनफॉल है वहाँ पे थंडरस्टॉर्म है, लाइटनिंग है, वहाँ पे भी जाते हैं, उसमें भी नुकसान होने का बहुत चांसेस रहता है। उस केस में जो दामिनी का इन्फॉर्मेशन मौसम ऐप में भी इन्फॉर्मेशन, उसको देखने चाहिए, ओरिजिनल लैंग्वेज में है और अवेयरनेस प्रोग्राम में जरूर ज्वाइन करना चाहिए। इसके अलावा भी हर स्टेट में मौसम विभाग का एक ऑफिस है तो उस ऑफिस के साथ भी कनेक्टेड रहना चाहिए, उस ऑफिस वाले भी इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं। इसके वजह से हर किसान को लाभ मिल सकता है, वेदर इन्फॉर्मेशन मिल सकता है।
1: डॉक्टर शीश, एक अंतिम प्रश्न आपसे पूछना चाहूंगा, जलवायु परिवर्तन के कारण अभी मौसम की अनिश्चितता काफी बढ़ रही, जैसा कि हम अभी हाल में ही देख रहे हैं, तो ऐसे में जो चुनौतियां मौसम विभाग के सामने आ रही हैं उनको टैकल करने के लिए या उनसे आगे बढ़ने के लिए या फिर इस तरह की चुनौतियों के बाद भी मौसम का फोरकास्ट करने के लिए किस तरह से आगे बढ़ा जा रहा है?
0: इसी के हिसाब से रिसेंटली माननीय प्रधानमंत्री जी एक स्कीम लॉन्च किया था, हम मिशन मौसम कहते हैं। इस मिशन मौसम में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स लाइक आपने रडार देख लीजिए और आपका AWS देख लीजिए, एक एग्रीकल्चर स्पेसिफिक एग्रो AWS कह रहे हैं, उसका नेटवर्किंग बढ़ा रहे हैं और सैटेलाइट के भी इन्फॉर्मेशन जो अवेलेबल है उसको भी हम बढ़ा रहे हैं। इसके हिसाब से इसका जो इनपुट्स जाता है मॉडल्स में, उसको भी मॉडल्स को भी हम रोबोस्ट बना रहे हैं ताकि विथ एक्यूरेसी एक वेदर इन्फॉर्मेशन को वो फोरकास्ट करे, प्रिडिक्ट करे, फर्दर इसको हम जानकारी जो रिलेटेड सेक्टर को हम प्रोवाइड करें।
1: डॉक्टर शीष, इस चर्चा में भाग लेने के लिए, तमाम प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कंट्री वाइड, जिसमें हमने बात की पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित मॉनसून अग्रिम पूर्वानुमान प्रणाली पर, जिसमें हमने चर्चा की डॉक्टर शीष कुमार गोरोशी से, जो कि मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं। इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
2: Countrywide.

0: समाचार के साथ मैं प्रशांत।
1: हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। रात्रि के 10 बज चुके हैं। अब आप थोड़ी ही देर में आकाशवाणी जयपुर से सुनेंगे विज्ञान पत्रिका।

श्रोताओ, हमें खेद है, किसी कारणवश आप पूर्व निर्धारित प्रोग्राम विज्ञान पत्रिका आकाशवाणी जयपुर से नहीं सुन पाए। मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलो हर्ट्स पर, DRM चैनल 909 किलो हर्ट्स पर, FM 100.1 मेगा हर्ट्स पर और न्यूज़ ऑन AIR पर। आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। रात्रि के 10 बज चुके हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम के आरंभ में सुनिए मेरा साया फिल्म से मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में ये गीत। गीत राजा मेहदी अली खां का, संगीत मदन मोहन का। आइए सुने मेरा साया फिल्म का ये गीत।

फिल्म संगीत की अगली प्रस्तुति में सुनिए लता मंगेशकर की आवाजों में ये गीत। फिल्म का नाम वो कौन थी।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत शैलेंद्र का लिखा, संगीतबद्ध शंकर जयकिशन ने किया। इस गीत को स्वर दिया है मोहम्मद रफ़ी ने और फिल्म का नाम है दिल एक मंदिर।

श्रोताओं, अभी आपने दिल एक मंदिर फिल्म से गीत सुना जिसे स्वर दिया था मोहम्मद रफ़ी ने। इस गीत को लिखा था शैलेंद्र ने और संगीतबद्ध किया था शंकर जयकिशन ने। फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से। आइए अब सुने मुकेश को मर्यादा फिल्म में, शब्द रचना आनंद बख्शी की और धुन कल्याण जी आनंद जी की।

ब्रह्मचारी। इस फिल्म में इस गीत के लिए स्वर दिए हैं मोहम्मद रफ़ी और साथियों ने, शब्द रचना हसरत जयपुरी की और धुन शंकर जयकिशन की।

श्रोताओ, अभी आपने ब्रह्मचारी फिल्म से ये गीत सुना। गायक स्वर थे मोहम्मद रफ़ी और साथियों की। गीत लिखा था हसरत जयपुरी ने और संगीतबद्ध किया था शंकर जयकिशन ने। श्रोताओ, कार्यक्रम का आखिरी गीत हम लेकर आए हैं किशोर कुमार की आवाज़ों में। फिल्म का नाम चोर मचाए शोर, गीत और संगीत रविंद्र जैन का।

श्रोताओं, चोर मचाए शोर फिल्म की इस गीत के साथ आज का फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्स पर, डीआरएम चैनल 909 किलोहर्ट्स पर, एफएम 100.1 मेगाहर्ट्स पर, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर, ये आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। रात्रि की 10:30 हो चुके हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत। आज इस कार्यक्रम में सुनिए उस्ताद बिस्मिल्ला खां का शहनाई पर बजाया राग मियां की तोड़ी, विलंबित एक ताल में और द्रुत तीन ताल में निबद्ध है। आइए सुने उस्ताद बिस्मिल्ला खां का शहनाई पर बजाया राग मियां की तोड़ी।

0: अभी आप शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम में उस्ताद बिस्मिल्ला खां का शहनाई पर बजाय राग मियाँ की तोड़ी सुन रहे थे। विलंबित रचना एक ताल में निबद्ध थी और द्रुत रचना तीन ताल में निबद्ध थी। इसी के साथ आज का शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्ज़ पर, DRM चैनल 909 किलोहर्ट्ज़ पर, FM 100.1 MHz पर, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर। यह आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। रात्रि के 11 बजने वाले हैं। अब आप थोड़ी देर में आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी में समाचार सुनेंगे।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स बहुपक्षवाद को सशक्त बनाने, सतत विकास को बढ़ावा देने, आर्थिक लचीलापन बढ़ाने और अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था निर्मित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बीच सहयोग को आगे बढ़ाने और ग्लोबल साउथ के देशों की आकांक्षाओं को आवाज देने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। यह बैठक दिल्ली में जारी ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक से अलग हुई। इससे पहले ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के अपने शुरुआती संबोधन में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है।
2: हमारी चर्चाओं का उद्देश्य एक ऐसा सतत विकास सुनिश्चित करना होना चाहिए जो समानता के सिद्धांतों तथा साझी लेकिन अलग अलग जिम्मेदारी की भावना पर आधारित हो। तकनीकी प्रगति वैश्विक परिदृश्य को बदल रही है। इसका उपयोग सुशासन और समावेशी विकास के लिए प्रभावी रूप से किया जा सकता है। आतंकवाद के खिलाफ सहयोग मजबूत करने पर सभी देशों की गहरी और साझा सहमति है।
1: प्रधानमंत्री मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के 6 दिवसीय दौरे पर रवाना होंगे। 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी के लिए रवाना होंगे, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता व्यापार, निवेश, ऊर्जा सुरक्षा और उभरती प्रौद्योगिकियों पर केंद्रित उच्च स्तरीय चर्चा करेंगे। यह यात्रा दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों में तीव्र वृद्धि के बीच हो रहा है। सरकार ने कहा है कि देश में कच्चे तेल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए गए हैं। नई दिल्ली में पश्चिम एशिया के घटनाक्रम पर अंतर मंत्रालयी प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि घरेलू एलपीजी आपूर्ति सुचारू रूप से जारी है।

0: निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के तीसरे चरण की घोषणा कर दी है। अभियान 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में संचालित किया जाएगा। केरलम में आज तिरुवनंतपुरम में आयोजित कांग्रेस विधायक दल की बैठक में VD सतीशन को औपचारिक रूप से नेता चुना गया। विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता VD सतीशन ने आज शाम राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर से मुलाकात की और केरलम में नई सरकार बनाने के लिए औपचारिक रूप से अपना दावा पेश किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने आज पेइचिंग में वार्ता की। व्यापार, प्रौद्योगिकी और क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर तनाव के बावजूद दोनों नेताओं ने टकराव के बजाय सहयोग पर बल दिया। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने टकराव के बजाय सहयोग को बढ़ावा देने पर बल देते हुए कहा कि चीन और अमरीका को प्रतिद्वंदी नहीं बल्कि साझेदार होना चाहिए। श्री ट्रंप ने कहा कि अमरीका चीन के साथ व्यापार और निवेश के अवसरों का विस्तार करने के लिए उत्सुक है। इस बीच अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने चीन को चेतावनी दी है कि ताइवान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई एक भयानक गलती होगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग की मुलाकात के बाद ताइवान के प्रति अमेरिका की नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इससे पहले राष्ट्रपति जिनफिंग ने चेतावनी दी थी कि ताइवान मुद्दे पर गलत तरीका अपनाने से चीन और अमरीका के बीच टकराव हो सकता है। मौसम विभाग ने कल अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरलम, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। मौसम में आए अचानक बदलाव ने उधर उत्तर प्रदेश में भी भारी तबाही मचाई। आंधी, भारी बारिश और बिजली गिरने से कई लोगों की जान चली गई। प्रयागराज में 21, भदोही जिले में 15, मिर्जापुर में 18, फतेहपुर में 9, बदायूं में 5 और बरेली जिले में 4 लोगों की मौत हो गई। और खेलों में गुजरात में एशियाई सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में आज अजीत नारायण ने कांस्य पदक अपने नाम किए। पुरुषों के 71 किलोग्राम भार वर्ग के क्लीन एंड जर्क और समग्र दोनों स्पर्धाओं में अजीत ने पदक हासिल किया। प्रतियोगिता में अजीत, कोमल कोहर और ज्ञानेश्वरी यादव के बाद पदक जीतने वाले तीसरे भारतीय बन गए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Renuka. Prime Minister Narendra Modi has said that under India's chairmanship this year, BRICS will work together to strengthen multilateralism, promote sustainable development, enhance economic resilience, and build a more inclusive world order. Interacting with foreign ministers and heads of delegation of BRICS countries who called on Mr. Modi in New Delhi today, Mr. Modi said BRICS has emerged as an important platform for advancing cooperation among emerging economies and giving voice to the aspirations of the Global South. The meetings took place on the sidelines of the BRICS foreign ministers' meeting, which is being held in New Delhi. Earlier, in his opening remarks at the BRICS Foreign Ministers' meeting, External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar said that peace and security remain central to the global order.
2: Our discussions must advance sustainable development while upholding principles of equity and common but differentiated responsibilities. Technological advancements are reshaping the global landscape. It can be leveraged for good governance and inclusive growth. Peace and security remain central to the global order. Recent conflicts only underline the importance of dialogue and diplomacy. There is also a deeply shared interest in strengthening cooperation against terrorism.
1: The theme of the event is Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability. It draws inspiration from Prime Minister Narendra Modi's Humanity First and People-Centric Vision for BRICS. In this session themed on BRICS at 20, External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar highlighted that BRICS has expanded its agenda and membership in response to changing global realities while remaining focused on people-centric development and practical cooperation. The minister said BRICS is strong because it is independent and includes diverse countries. He said the group supports change and reforms, reflects a multipolar world, helps countries reduce the risks by expanding partnerships, and believes in mutual respect and equal rights for all nations. Prime Minister Narendra Modi will arrive in United Arab Emirates capital

मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्ज़ पर, एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, डीआरएम चैनल 909 किलोहर्ट्ज़ पर, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर पर। ये आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। रात्रि के 11:10 हो चुके हैं। अब हमारी रात्रिकालीन सभा यहीं संपन्न होती है। हमारी प्रातःकालीन सभा प्रातः 5:50 पर आरंभ होगी। तब तक हमें अनुमति दीजिए। शुभ रात्रि। जय हिंद।